सुप्रभात। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और एफएम 100.5 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आज रविवार है। सक्संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 31वीं तिथि, तदनुसार सन 2026 के जून महीने की 21 तारीख। इस समय प्रातः के 5:58 हुए हैं। उपस्थित हैं हम आज के सभा के कार्यक्रमों के साथ। इस सभा में आप सबका स्वागत है।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने को है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का प्रसारण किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: कर रहे थे रामकुमार शर्मा। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, 6 बजने को है, थोड़ी देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में। इसके बाद आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। तो आइए पहले सुनते हैं देश दुनिया के समाचार।
1: कार्यक्रम सुबह 7:30 सदर इलाके के गैरिसन ग्राउंड में होगा। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वीं दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति आज कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जनजातीय समुदाय चीतों की देखभाल करने वाले कर्मियों और उद्यान कर्मचारियों से मुलाकात भी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रे तटीय रक्षा के लिए टारपीडो, रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा है कि इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हो रही है। परीक्षा अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से

0: कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। श्री वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले तीन टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की अनुचित टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। फीफा विश्व कप फुटबॉल में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज़ रेड बाय शगुन चोपड़ा।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं खेती किसानी कार्यक्रम में वर्मी कंपोस्ट के बारे में। वाचन अनीता तिर्की का है।
1: केचुओं के द्वारा बनाए खाद को केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें केचुए सूखे पत्ते, डंठल, जलकुंभी, गोबर या अन्य कार्बनिक पदार्थ को खाकर अपने पाचन के बाद जो अपचित पदार्थ है मल के रूप में बाहर निकालते हैं, इसे ही केचुआ खाद कहते हैं। यह केचुआ खाद बनाने हेतु इसिनिडिया फिटिडा तथा यूड्रिलस यूजुनो का प्रयोग होता है। यह केचुआ की प्रजाति है। केचुआ खाद में साधारण मिट्टी की अपेक्षा 5 गुना नाइट्रोजन, 11 गुना फास्फोरस, 7 गुना पोटास और 3 गुना मैग्नीशियम होता है। यदि खाद बनाते समय कार्बनिक पदार्थ में अजोला, एक जैविक खाद है, इसे मिला दिया जाए तब उसमें नाइट्रोजन व फास्फोरस की मात्रा बढ़ाई जा सकती है, जिसमें राख मिलाने से पोटाश की मात्रा बढ़ेगी और अम्लीय मिश्रण समायोजित रहेगा। केचुओं से कंपोस्ट बनाने की विधि इस तरह से है। केचुए से कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले सुरक्षित छायादार जगह का चुनाव करना है। सुरक्षित स्थान का मतलब है वो स्थान जहां कीड़े मकोड़े या चिड़ियां ना आए, क्योंकि ये केचुए का भोजन करते हैं। छायादार स्थान इसलिए क्योंकि केचुओं की बढ़ोतरी 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर अच्छी तरह से होती है। कंपोस्ट के लिए 5 मीटर चौड़ी और 12 मीटर लंबी झोपड़ी नुमा छत बना दें। स्थान के चयन के बाद जमीन को साफ करके उसमें पानी से नम कर ले। 4 से 5 फीट चौड़ा और 10 से 15 फीट लंबी डंठल, सूखे पत्ते, गोबर व मिट्टी को आकार दे दे, शैया का आकार दे दे। शैया के लिए सर्वप्रथम सूखे पत्ते, डंठल, नारियल की पत्ती आदि की लगभग 15 सेंटीमीटर ऊंचाई सतह जो होगी 15 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है 1 मीटर और लंबाई करीब 10 मीटर वैसे बिछा दें। सूखे पत्ते डंठलों के सतह के ऊपर लगभग 5 सेंटीमीटर मोटाई तक, उसके बाद गोबर की खाद को बराबर मात्रा में मिला देना है, बिछा देना है। पानी से पत्ते की तरह नम करके 48 घंटे तक इसे छोड़ दें। अब इसमें केचुओं को उसके ऊपर समान रूप से 1000 से 1500 तक की संख्या में डाल दें। केचुए के स्तर के बाद फिर 15 सेंटीमीटर मोटी सतह के रूप में भुरभुरी मिट्टी को डाल देते हैं। इस मिट्टी के ऊपर गोबर की सलरी का फिर एक सतह डाल देते हैं। उसके बाद सबसे ऊपर में भूसा, सूखे पत्तल, डंठल, उसकी एक सतह बिछा देते हैं। अब इस तैयार सैया को सुतली यानी जूट का बोरा से ढक दें और रोज सुबह शाम इस पर पानी डालें ताकि बोरा हर समय नम रहे। सभी सतह को 15 से 20 दिन के बाद पलट दें तथा फिर बोरा से ढक दें और पानी से बोरा को नम कर दें। ये सब चीज़ें 60 से 70 दिनों में आपको करनी है और 60 से 70 दिनों के बाद खाद तैयार हो जाती है, उसे ही वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ का खाद कहते हैं। इसको बनाते समय कुछ सावधानियां भी रखनी है। सैया के किनारे पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो केचुए जो है निकलकर बाहर भागने लग जाएंगे। और हमेशा गोबर के साथ साथ खरपतवार अवश्य दें ताकि खरपतवार मिट्टी में आर्द्रता बनाए रखे, साथ ही साथ तापमान को नियंत्रित भी करके रखे। नमी 25 से 40 प्रतिशत तक बनाए रखना है। गोबर हमेशा 8 से 10 दिन पुराना या बायोगैस सैलरी का ही उपयोग करना है।
0: खेती किसानी कार्यक्रम में अभी आप जानकारी ले रहे थे वर्मी कंपोस्ट के बारे में और इस विषय पर जानकारी दे रही थी अनीता तिर्की। आइए सुनते हैं आज का चिंतन। संकलन एवं वाचन दिनेश कुमार लाल का है।

योग जो प्राचीन ग्रंथों से लिया गया, कई प्राचीन ग्रंथों में योग का जिक्र है। योग का सबसे बड़ा और सबसे जो बेहतर जानकारी लोगों को मिला है वह है पुराण से, उपनिषद से, भगवत गीता से और भी प्राचीन ग्रंथों में इसका जिक्र है। जब हम आधुनिक जीवन में जीते हैं, एक व्यस्तता भरा जीवन, तनाव भरा जीवन, अव्यवस्थित दिनचर्या और मन का भटकाव जब हमारे पर प्रभाव डालता है तो निश्चित तौर पे हम भटकाव के दृष्टिकोण में आते हैं, तब योग का महत्व बहुत ही बढ़ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, पूरे विश्व में 197 देश इस योग दिवस को मनाने जा रहा है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव दिया था कि योग दिवस क्यों नहीं पूरे विश्व एक दिन में मनाए, और बहुत ही गर्व का विषय है कि संयुक्त राष्ट्र सभा में यह प्रस्ताव पारित हुआ, और पारित होने के बाद 11 सितंबर को ही संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव को पारित कर 21 जून को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह समय निर्धारित किया था, इसके पीछे का राज यही है कि पूरे 365 दिन में साल का सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है, और उनका मानना है कि अगर सबसे लंबी दिन में अगर हम योग का प्रारंभ करें या योग करें तो हमारी जीवन भी लंबी होगी। निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी का जो सोच है वह सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने राज्य और अपने देश के लिए नहीं, बल्कि पूरा विश्व के लिए वो चाहते हैं कि पूरा विश्व निरोग काया से रहे, पॉल्यूशन रहित रहे, और जब हम निरोग काया रहेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा जो शरीर है, हमारा मन है, और हम पॉजिटिव एनर्जी ग्रहण करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। क्रोधमय जीवन, चिंतामय जिंदगी, साइट्रिक से प्रॉब्लम, मानसिक रोग, मधुमेह, बीपी, वजन का बढ़ना, पेट का दर्द से परेशान होना, इन सारे

0: समस्याओं का हल अगर कुछ है तो वह है सवेरे सूर्योदय के पहले किसी पार्क में, किसी खुले मैदान में अगर आप योग करते हैं तो उस योग का ध्यान पूरा ईश्वरीय ध्यान होता है। वह समय प्रातः काल ईश्वर का समय होता है और यह ना तो कोई धर्म से जुड़ा है ना ही कोई अलग इसका संप्रदाय है। यह अगर है तो सिर्फ और सिर्फ आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। आपका मन सही रहेगा, अगर आपका स्वास्थ्य सही रहेगा तो निश्चित तौर पे आप योग के माध्यम से अपने शरीर को, अपने मन को स्थिर कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाह रहा हूं कि आज के आधुनिक जीवन में चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो बच्चे हों, सभी के लिए योग करना निश्चित तौर पे आपके लिए बेहतर है, आपके जीवन शैली के लिए बेहतर है। बच्चों की जहां पढ़ाई की एकाग्रता बढ़ेगी, वहीं महिलाओं का कई ऐसे हार्मोन परिवर्तन के कारण उनके जो रोग हो जाते हैं उसमें उनको शांति मिलती है और उससे उनका बचाव होता है। मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि आप अगर प्रातः काल सवेरे सवेरे जो ईश्वरीय वंदना के साथ अपने मन को, अपने शरीर को स्थिर करके अगर आप अंतर्राष्ट्रीय योग में शामिल होते हैं, साथ ही साथ इसको आप कंटिन्यूटी में रहते हैं, तो योग के कारण आपका मन, आपका शरीर, आपका चित्त और सब मिलाकर आपका जब निरोग काया बनेगा तो निश्चित तौर पे आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। इसलिए मित्रों, आप योग करें और निरोग रहें।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, संकलन एवं वाचन दिनेश कुमार लाल का था। अब सुनते हैं भक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम आराधना। सबसे पहले सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे लीडर फिल्म से ये देशभक्ति गीत मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। आइए अब सुनते हैं भक्ति रचनाएं। भक्ति वे अनमोल मार्ग है जो मनुष्य को उसके अहंकार से मुक्त कर ईश्वर से जोड़ती है। ये केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि प्रेम, समर्पण और निस्वार्थ भाव का दूसरा नाम है। और प्रभु श्री राम की भक्ति मन को शांति, धैर्य और नैतिकता प्रदान करती है।

सच्ची भक्ति वही है जो निस्वार्थ हो और जिसमें अहंकार का कोई स्थान ना हो। जब आप खुद को पूर्णतः ईश्वर को सौंप देते हैं, तब जीवन की हर चिंता समाप्त हो जाती है।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 6:30 होने को है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का प्रसारण किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: रेड रोड कोलकाता पश्चिम बंगाल लिए चलते हैं, जहां से आप 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित सामूहिक योग प्रदर्शन का आंखों देखा हाल सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं नीलम बलकानिया हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। आमंत्रित विशेषज्ञ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुराजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आइए आपको योग दिवस कार्यक्रम में ले चलते हैं।
1: नमस्कार, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी खेल प्रेमियों को, स्वास्थ्य प्रेमियों को और योग प्रेमियों को बहुत सारी शुभकामनाएं और इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत। आज पूरा विश्व 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक पूरी मानवता आज एक सुर, एक ताल और एक श्वास में बंधी नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में रेड रोड पर विशेष आयोजन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में यहां सामूहिक योग प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी स्वयं योगाभ्यास कर पूरे देश का नेतृत्व करेंगे। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कॉमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में अपने दो विशेषज्ञों का भी स्वागत कर रही हूं। हमारे साथ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार।
3: थैंक यू, नमस्ते। एंड वी कैन सी दैट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री रविंद्र नारायण रवि एंड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी हैव अराइव्ड एट द आइकॉनिक रेड रोड एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल बी लीडिंग द नेशन टुडे एंड ही विल personally be performing asanas at the iconic Red Road on the occasion of the 12th International Day of Yoga. And the Red Road is chock-a-block with people from all walks of life, and it is indeed, Neelam, a very momentous day for all the people who have assembled here at Red Road to be performing asanas to be led by the Honorable Prime Minister. And there's a huge crowd we can see from the one end of Red Road till the Eden Gardens. It is chock-a-block with people. And the theme of this year's International Day of

0: yoga is healthy aging, and we can see that everyone is assembled here and they're looking forward to join the Honorable Prime Minister and perform asanas.
1: 21 जून 2026 की इस सुहानी और अलौकिक सुबह में कोलकाता की इस ऐतिहासिक भूमि पर हुगली नदी के पावन तटों की गवाही में भव्य तैयारियां की गई हैं आज के आयोजन के लिए. यहां से माननीय प्रधानमंत्री जी इस वैश्विक उत्सव का नेतृत्व करेंगे. इस बार की थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग. बढ़ती उम्र में भी ऊर्जावान और गतिशील बने रह सकते हैं हम, योग के साथ स्वस्थ रह सकते हैं. और आपको बताएं कि बहुत विशाल मंच एक यहां पर बनाया गया है जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी और साथ ही अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति है. पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, साथ ही माननीय गवर्नर साहब हैं और यहां पर अब संबोधन हो रहा है.
0: श्री प्रताप राव जाधव, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष.
1: विशाल जनसमूह इस संबोधन को सुनता हुआ.
2: जिन्होंने योग को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाया ऐसे हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री आर्यन रवि जी, पश्चिम बंगाल के ओजस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी, आदरणीय सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित गणमान्य जन, योग प्रेमियों, मीडिया के मित्रों एवं लाइव टेलीकास्ट के द्वारा हमारे साथ पूरे दुनिया से जुड़े हुए करोड़ों देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार. आप सभी को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं. हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित करवाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो अभूतपूर्व कार्य शुरू किया वह अब 180 से अधिक देशों में मनाए जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य जन आंदोलन बन गया है. इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संस्करण की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग है, जिसमें हमने योग 365 जैसा एक अनोखा अभियान शुरू किया है, जिसमें नागरिकों के लिए योग केवल एक दिन का उत्सव न रहकर योग को पूरे वर्ष अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने को प्रेरित करता है. इस वर्ष के योग दिवस के सेलिब्रेशन के लिए आयुष मंत्रालय ने काफी नए इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें हमने YouTube पर योग लाइव स्ट्रीम करके सबसे अधिक लोगों की सहभागिता का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया. हवाई यात्रा में योग के लिए एक नया प्रोटोकॉल विकसित किया गया. 13 जून से 20 जून तक माँ गंगा के तट पर गंगोत्री से गंगा सागर तक 8 अलग अलग घाटों पर योगाभ्यास करके योग श्रृंखला का आयोजन किया गया. कोलकाता में दौड़ से ध्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया और कोलकाता में ही ड्रोन और लाइट शो का भी भव्य आयोजन किया गया. आज बहुत समय के बाद बंगाल की इस धरती से योग की गूंज पूरे विश्व भर में सुनाई दे रही है. आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा आयुष मंत्रालय भारत की प्राचीन विरासत वाली पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का विस्तार करने के लिए कटिबद्ध है. इसके लिए इस वर्ष के केंद्रीय बजट में आयुष मंत्रालय को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, जिसमें 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की घोषणा भी शामिल है, जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं. मैं विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस वर्ष के योग दिवस के अभूतपूर्व आयोजन के लिए अपने नेतृत्व में प्रशासन के साथ अपना पूरा योगदान दिया. अंत में मैं यह विश्वास व्यक्त करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी व्यक्तित्व और उनके गतिशील नेतृत्व में योग और आयुष की पताका

0: That was the Honourable Chief Minister of West Bengal, Sri Shubhendu Adhikari, addressing the gathering on the occasion of the International Day of Yoga. And every yoga enthusiast, and we can see that the Honourable Minister for Municipal Affairs, Srimati Agnimitra Paul of the Government of West Bengal, is also among the lakhs of yoga enthusiasts who have assembled at the iconic Red Road. And the Honourable Chief Minister of West Bengal mentioned that more than 2,57,000 registrations have taken place for today's main ceremony here at the Red Road, and more than a crore yoga enthusiasts will join, especially in the state of West Bengal, from Darjeeling to Digha and from Kuchbihar to Kagdweep. And now we can see that the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi is walking towards the dais where he will be performing the asanas and leading the nation today in performing yoga. And as we know that yoga for healthy aging is the theme of
1: Rajpal Sri R.N. Ravi ji, Urjavan Mukhyamantri Shubhendu Adhikari ji, केंद्र में मेरे सहयोगी प्रताप राव जाधव जी, अन्य सभी महानुभाव, यहां कोलकाता में जुटे सभी प्रतिभागी, देश विदेश में योग से जुड़ रहे सभी साथी और मेरे प्यारे देशवासियों, 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में, यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक

बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे, हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या ना हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है। योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव जीवन के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, व्हेन वी स्पीक ऑफ योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इट मींस दैट वी कैन वर्क टू एंश्योर दैट एज डज नॉट रिड्यूस ह्यूमन पोटेंशियल। योग कैन हेल्प ह्यूमन लाइफ टू एस्पायर फॉर कॉन्स्टेंट ग्रोथ। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर फ्लेक्सिबल एट 40 देन वी वेर एट 20। आवर टारगेट मस्ट बी to be more energetic at 50 than we were at 30. Our target must be to be more resistant to lifestyle disease at 70 than we were at 50. This is where योगा कैन हेल्प अस। इट हेल्प अस ट्यून अवर बॉडीज टू बी फ्लेक्सिबल

our energy level high. It also helps us maintain a calm, stress-free life and help to keep lifestyle disease away. Moreover, with regular practice, yoga teaches us to remain lifelong learners of our own bodies and minds. The more we know about ourselves, the better we can manage ourselves. That is why yoga for healthy aging, this theme must be seen as one for people of all ages, not just for the elderly. Sathiyo, Gita mein भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुखः। अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रियाओं और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं। बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको। योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू या डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं, तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है। यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध, ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है। इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है, इतना ही नहीं है। योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं। लेकिन आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए हम संकल्प लें योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे। योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं

0: रखेंगे। हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, इसी दिशा में इस वर्ष योग 365 योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अभूतपूर्व जनभागीदारी देखी गई है। 130 देशों के 30 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। साथियों, जब समाज स्वस्थ होगा तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं इसके लिए मैं सबके लिए कामना करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: That was the Honourable Prime Minister Sri Narendra Modi addressing the gathering at Red Road, Calcutta, on the occasion of the International Day of Yoga 2026. And lakhs of yoga enthusiasts have assembled here at the Red Road, Neelam, and everyone is looking forward to the Honourable Prime Minister, who will lead in the day's yoga आसना सेलिब्रेशंस हियर टुडे।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी विशाल जन समूह को संबोधित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता से स्वागत का उल्लेख किया, साथ ही महर्षि अरविंद को भी याद किया। और महर्षि अरविंद ने कहा था, हमारा पूरा जीवन योग है, हमें इसका बोध हो या ना हो, ये हमें फिर से याद दिलाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योग से हम ऊर्जावान रह सकते हैं, योग सबको जोड़ता है और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता है। योग से विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। हम आपको बताएं, ये जो विशाल जन समूह है, जहां जहां तक रेड रोड पर नजर जा रही है वहां योग साधक बैठे हैं और योग के प्रिंट वाली टी शर्ट्स पहनकर पूरी तरह से तैयार हैं, रंग बिरंगे मैट्स पर बैठे हैं अनुशासित रूप से। माननीय प्रधानमंत्री जी अब स्वयं योग कर पूरे देश का और इस वैश्विक आयोजन का नेतृत्व करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी योग वाली टी शर्ट पहनी है और साथ ही आपने बाटिक प्रिंट वाला एक स्टोल भी धारण किया है, जिस पर कमल का फूल दमक रहा है। और योग साधक बेहद उत्साहित इस समय नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी को वो योगाभ्यास करते हुए देखेंगे और सामूहिक योगाभ्यास का क्रम यहां पर शुरू होगा। एक एक कर आसन किए जाएंगे और हम सभी जानते हैं कि योग के जो आसन है वो न केवल शारीरिक रूप से हमें लाभ पहुंचाते हैं, बल्कि वो मानसिक रूप से भी हमें बेहद शांत करते हैं, संतुलित करते हैं और आत्मिक रूप से भी हमें प्रकृति के साथ जोड़ते हैं। योग यानी शरीर का मन से जुड़ना और मन का आत्मा से, फिर आत्मा का प्रकृति से जुड़ना।
1: Yes, and the Honorable Prime Minister will be shortly arriving at the venue where he will be leading the countrymen in performing the yoga asanas here at the iconic Red Road. And as you rightly mentioned, Neelam, that the Honorable Prime Minister today made us all remember about the uniqueness of yoga.
2: Ji, aur is samay यहाँ पर सामूहिक प्रार्थना की जा रही है। ये हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रार्थना के साथ किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। इस वक्त जितने भी योग साधक हैं सभी अपने अपने स्थान पर सुखासन में बैठे हुए हैं, नमस्कार मुद्रा में सभी के हाथ जुड़े हुए हैं और प्रार्थना इस समय यहां पर की जा रही है।

0: हमारी संस्कृति जिसमें विश्व शांति की कामना है, साथ ही हम जड़ चेतन की शांति की कामना भी करते हैं, प्राकृतिक तत्वों की शांति की कामना करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम सब एक ही हैं।
1: धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलिए, आस्ते आस्ते दोनों चौके खुलून, दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए, दोनों हाथ के स्वाभाविक अवस्था ले आसुन, जिस स्थान पर आप बैठे उस स्थान पे खड़े हो जाइए, निजर जाएगा।
0: मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं हम सब, और योग साधक उन निर्देशों का पालन करते हुए अपने अपने स्थान पर योगाभ्यास शुरू कर रहे हैं। पंक्तिबद्ध तरीके से मैट्स बिछाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन अब हो रहा है योग साधकों के बीच।
2: एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज जस्ट अराइव्ड एंड ही विल बी गोइंग टू द डेजिग्नेटेड एरिया एंड ही हैज जस्ट अराइव्ड देयर एंड ही विल बी परफॉर्मिंग द आसनास फ्रॉम हियर. And he is flanked by ordinary people from all walks of life here at the Red Road. And we can see that the officials are now ready for the International Day of Yoga 2026 main celebrations at Red Road, Kolkata.
0: माँ काली का आशीर्वाद लिए स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसी विभूतियों का दर्शन इस भूमि में है। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विरासत है ये हमारे योगियों की, हमारे मुनियों की। विशेष तैयारियों के साथ आज यहाँ योगाभ्यास किया जा रहा है और इस समय ग्रीवा चालन का अभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है। और जब हमारे यहाँ पर योग साधक सभी इस कॉमन प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, तो मैं प्रतिमा जी आपसे जानना चाहूंगी, ग्रीवा चालन इस समय हो रहा है, आप हमें इसका लाभ बताएं।
3: जी, ग्रीवा चालन जो है वो मानसिक लाभ भी देता है और साथ ही शारीरिक लाभ भी देता है। मानसिक लाभों की बात की जाए तो वर्तमान समय में जो तनाव से सभी लोग गुजर रहे हैं उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है
0: जी।
3: साथ ही जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उसको भी प्रिवेंट करता है और साथ में इसको के थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स भी हैं। और जितने भी ये आसन ग्रीवा संचालन में किए जा रहे हैं ये सभी के सभी हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करते हैं
0: जी।
3: और इसके अलावा जो और भी बेनिफिट्स हैं वो हमारे पूरे संपूर्ण जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि सारी जो भी क्रियाकलाप है हमारे दैनिक वो हम अपने ब्रेन के कारण ही संपन्न कर पाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। साथ ही हमारे जो हेड का, सिर का वेट है उससे रिलेटेड जो हमारी मसल्स, आपने देखा होगा जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी गर्दन हिलना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए भी ये प्रिवेंट करता है, मसल्स को स्ट्रेंथन करता है
0: जी। यानी हम नॉर्मल एक्सरसाइज करते हुए जिसे एक हल्का फुल्का वार्म अप मानते हैं उसके बहुत सारे लाभ हैं, ये हमें आपने अभी बताया। हम श्रोताओं को बताएं कि गर्दन को धीरे धीरे दाएं बाएं करना, ऊपर नीचे करना, ये ग्रीवा संचालन में आता है। ग्रीवा चालन इस आसन का नाम है और सूक्ष्म व्यायाम इन्हें कहा जाता है,
3: सूक्ष्म यौगिक अभ्यासों में से
0: जी। और यहाँ पर सभी निर्देशों का पालन करते हुए हम देख पा रहे हैं कि जो योग साधक हैं उनके बीच माननीय मंत्रीगण तो है ही, गणमान्य अतिथि हैं, और साथ ही भारत में इस समय जो विदेशी मौजूद हैं हमारे वो अतिथि भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने हैं।
2: Guruji, Munish Naji, we'd also like to know from you about the importance of the beginning of this asana.
4: Yes, actually, asan ko hum is tarah se samjhe ki seat of awareness. हमारी चेतना हमारे शरीर को फॉलो करती है, हम चित्त से काया की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो ग्रीवासन है इसमें हम क्या होता है कि हमारी जो चेतना है, हमारी जो शरीर को चलाती है सूक्ष्म रूप से, ये जागृत होती है और उसकी आसन वहां पे अवेलेबल हो जाती है। मतलब उसकी इंटेंशन, उसकी पहुंच, उसकी सेंसेशन आत्मा की और चेतना की, ये यहाँ से शुरू होती है और ये बहुत ही रियली बहुत ही फायदेमंद है जब हम आसन

0: शुरू करते हैं तो
1: जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी मुनेश सिन्हा जी कि एक आध्यात्मिक गुरु के दृष्टिकोण से आप हमें बताएं योग का वास्तविक और गहरा अर्थ क्या है अध्यात्म में।
0: योग पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्म, पूरा विश्व, पूरा जगत एक यौगिक स्थिति को जी रहा होता है, बस जानता नहीं है, है ना। अगर हम कहते हैं जब हम अपने अंदर के असूक्ष्म जो हमारी जो अव्यक्त स्वरूप है उससे जब हम जुड़ जाते हैं तो हम व्यक्त हो जाते हैं, इसीलिए व्यक्ति कहा जाता है, है ना। जितने लोग हैं उनको व्यक्ति कहा जाता है, इसलिए व्यक्ति कहा जाता है कि वो अव्यक्त को व्यक्त कर रहे हैं। तो अव्यक्त को व्यक्त करने की जो प्रोसेस है, आप जब भी हम योग करते हैं अपने स्वयं से जुड़ते हैं, किससे जुड़ रहे होते हैं, जोड़ कौन रहा होता है, हमारी चेतना, हमारी चेतना हमारी तीनों शरीर को अलाइन कर रहा होता है, हमारा स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा कारण शरीर। जब हम इन तीनों को अलाइन करते हैं, जब हम तीनों के साथ जुड़ जाते हैं, तो अवेयरर ऑफ द अवेयरनेस, एक्सपीरियंसर ऑफ द एक्सपीरियंस, ये हमें जो हमारी अव्यक्त स्वरूप है वो जागृत होनी शुरू हो जाती है। फिर उसका प्रेजेंस हमारी टोटैलिटी पे रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है। आप चलते फिरते उठते बैठते आप यौगिक एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, इससे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस रेज होती है, प्रकृति की जागृति होती है। और आज इस पूरे विश्व में जिस भी हम संघर्ष से जुड़ रहे हैं, इसका मतलब ही है कि हम योग से बहुत दूर हो गए हैं, हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हमसे बहुत दूर हो गई है। आज इस पूरे समाज को, इस पूरी जगत को, इस पूरे वातावरण को योग की बहुत बहुत बहुत जरूरत है।
1: जी, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आज विश्व की आवश्यकता है योग, तो इस समय यहाँ पर स्कंध चालन का अभ्यास किया जा रहा है। प्रतिमा जी आपसे जानना चाहेंगे इसके लाभ क्या हैं।
2: स्कंध चालन जो है ये पूरा थोरेसिक कैविटी पर काम करता है, और थोरेसिक कैविटी जो है उसके अंदर हम सभी को पता है कि लंग्स सिचुएटेड होते हैं, और जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं उधर काम हो रहा होता है, और लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी काम करता है, और बहुत सारे अन्य बेनिफिट्स भी इसके होते हैं।
1: जी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर उम्र के योग साधक उपस्थित हैं, युवा भी हैं तो प्रौढ़ भी नजर आ रहे हैं इस विशाल जनसमूह में। और यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो कि योग को एक विषय के रूप में पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि योग जो है अगर हम कहते हैं कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए तो योग में करियर भी है। और ये हम प्रतिमा जी को देखकर यहाँ समझ सकते हैं कि आपने अलग अलग संस्थानों में कार्य किया है, योग को बढ़ाया है, विभिन्न पदों पर आप रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी प्रतिमा जी, योग में जो करियर है उसके क्या ऑप्शंस हैं हमारे युवाओं के लिए, आप बताएं।
2: योग में करियर के ऐसे जो ऑप्शंस हैं वो डिग्रीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसमें कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो हमारे यहाँ से भी चलाए जाते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, एमएससी है, एमए है और पीएचडी है
1: जी।
2: तो इसमें जिस तरह की आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी उस तरह से आपका करियर आप डिसाइड कर सकते हैं, वेलनेस इंस्ट्रक्टर के रूप में और योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, योगा थेरेपिस्ट के रूप में, वेलनेस कोच के रूप में, योगासन कोच के रूप में आदि
1: जी। मैं गुरु मुनेश सिन्हा जी आपसे जानना चाहूंगी, युवाओं में आजकल तनाव, अवसाद और अकेलापन बहुत बढ़ गया है, जीवन शैली का हिस्सा होता जा रहा है अकेले रहना, योग और ध्यान उनके इस आंतरिक खालीपन को भरने में कैसे मदद कर सकता है।
0: बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या है कि जैसे जैसे हम सत्य से दूर हो जाते हैं
1: जी,
0: तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। जैसे कि आप अपने घर से जब दूर हो जाते हैं तो आप घर वापस आने की सोचते हैं, जितने हम घर से दूर चले जाएंगे हम उतने स्ट्रेस में रहना शुरू करेंगे
1: जी।
0: तो आज पूरी दुनिया की ये जो हालत है, हम अपने ही मूल स्वरूप से, अपने ही सोर्स से, अपने ही घर से, अपने ही कहते हैं अस्तित्व से इतने दूर चले आए हैं कि इतने दूर चले आए हैं कि अब हमें वापस आने के लिए भी एक लंबी दूरी की तय करनी पड़ेगी। कहते हैं जब यू टर्न होता है, यू टर्न आप लेना चाहते हैं, आपकी जीवन की स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि आप यू टर्न लेते लेते भी कई किलोमीटर आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए आज के युवा को खास करके ये मानना होगा, जानना होगा कि उसकी सच्चाई क्या है, उसके व्यक्तित्व की सच्चाई क्या है, उसके अस्तित्व की सच्चाई क्या है। जब हम अपने सत्य से जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे सोल की तरफ, हमारे टोटालिटी की तरफ जुड़ जाता है। आज देखना कि सत्य और सत्य में फर्क है। सत्य सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन पूरे विश्व का सत्य एक ही होता है।
1: जी yes, और इस समय यहाँ पर ताड़ासन का अभ्यास किया जा रहा है। दोनों हथेलियों को आपस में मिलाकर ऊपर की ओर दोनों हाथ उठाए गए और अपने पंजों पर सभी सीधे खड़े हुए। संतुलन में तो ये आसन मदद करता ही है, लेकिन साथ ही हमारी जो मेरुदंड है उसे भी एकदम सीधा कर देता है। और ताड़ के पेड़ की तरह हम सीधे खड़े हों तो ताड़ासन कहा जाता है, और बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए ये बेहद फायदेमंद है। प्रतिमा जी सही कहा मैंने?
2: बिल्कुल 100% आप सही कह रहे हैं
1: जी।
2: एडोलेसेंट स्टेज वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये आसन।
3: Yes, and as you were mentioning, Neelam, that today is the International Day of Yoga, and the theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for Healthy Aging. And the Honorable Prime Minister also mentioned in his speech that in the 1920s, Paramhamsa Yoganand set up the yoga center in Kolkata and also at other places. And today, the popularity of yoga has spread far and wide. In the 132nd episode of Mann Ki Baat, the Honorable Prime Minister has said that the attraction of yoga is rising across the world. And he also highlighted the work of Mr. Almis in popularizing yoga in Djibouti, Africa, through his Arvind Yoga Center. Similarly, there are many such yoga centers now even in South America. So the popularity of this gift of India, this gift of healthy life for everyone, is indeed a gift for humanity by India to the world.
1: जी, यहां पर अभी पादहस्तासन का अभ्यास किया गया और उसके बाद अर्धचक्रासन का अभ्यास अभी किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि जमीन पर जब पीठ के बल लेटकर हम पैर और हाथों के बल अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाते हैं तो चक्रासन होता है, लेकिन जब खड़े होकर हम केवल थोड़ा सा झुकते हैं पीछे की तरफ तो अर्धचक्रासन है, हमारे मेरुदंड को लचीला बनाने के लिए। और जैसा कि अभी कौशिक जी ने कहा कि ये भारत का एक अनुपम उपहार है विश्व को। हम अब तक गर्व करते हैं कि हमने दुनिया को शून्य दिया है, हमारा दर्शन विश्व में अलग अलग देशों को आगे बढ़ने में प्रेरणा देता रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, उनके नेतृत्व से और उनकी प्रेरणा से अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने दुनिया को योग भी दिया है और अब ये कागजों में भी दर्ज हो चुका है, जिसे कि यूनेस्को और यूएन ने भी माना है। यहां पर अभी त्रिकोणासन का अभ्यास होता हुआ त्रिकोण जैसी आकृति बनाई जा रही है शरीर से। प्रतिमा जी, त्रिकोणासन के लाभ क्या क्या हैं?
2: ये खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यासों में शामिल है। ये घुटने और थाई मसल्स और साइड का जो फैट होता है और मसल्स होते हैं वहाँ काम करता है, साइड फैट को भी रिड्यूस करता है। साथ में जो स्पाइन है, स्पाइन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, और जो गर्दन की नर्व्स हैं उनको भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है, मसल्स को भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है। और ये इवन आईज के लिए भी बेनिफिशियल आसन कहा जाता है।
1: ये मेरे लिए भी चौंकने वाली बात है कि त्रिकोणासन से आंखों को लाभ होता है, क्योंकि मैं भी बचपन से योगाभ्यास करती आ रही हूँ, लेकिन नई जानकारी ये मुझे आपसे मिली है।
2: और ये साइटिका वाले लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल आसन होता है।
1: जी, और हम यहाँ देख रहे हैं कि बेहद मनोयोग से सभी योग साधक जो हैं वो निर्देशों का पालन करते हुए एक के बाद एक आसन कर रहे हैं। यहाँ मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति इन योग साधकों के बीच है, सबसे बड़ी प्रेरणा यही है। और गुरु मुनेश जी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि जो साधक माननीय प्रधानमंत्री जी के नजदीक बैठकर योग कर रहे हैं, जीवन भर की एक सुखद स्मृति उनके पास है, और अब भला कोई योग से दूर कैसे हो सकता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रेरित करें। और इस समय सभी योग साधकों के बीच आत्मीय भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी चलते हुए और सभी के नजदीक से होकर गुजर रहे हैं, सबको देख रहे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं। और अभ्यर्थी भी हम देख रहे हैं कि बेहद उत्साहित दंडासन में

0: इस समय सभी बैठे हैं, मेरुदंड को एकदम सीधा करके और अब दंडासन से भद्रासन में सभी योग साधक.
1: And we can also see Neelam, and the Honorable Prime Minister is going to many enthusiasts and volunteers who have come here, and he is interacting with them, and he is just pepping them up. This shows Ji. That how much he cares for the well-being of the common people of this country. And this is, as you rightly mentioned, indeed a moment that everyone will cherish, and every person with whom the Honorable Prime Minister is interacting will carry this memory with him or with her forever in their lifetime.
0: Ji, bilkul. Aur ye jo aasan hai, इनके अगर हम लाभ की बात करें तो हर आसन का विशेष लाभ है. वैसे तो कहा जाता है कि योग में अगर आप सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो सर से लेकर पांव तक हमें लाभ उसके प्राप्त होते हैं, लेकिन फिर भी शरीर के विभिन्न अंगों के लिए अलग अलग आसन हैं. और यहां हम देख रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत से भी प्रतिनिधि उपस्थित हैं, आमंत्रित अतिथि उपस्थित हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए, और सभी अपने अपने स्थान पर, निर्दिष्ट स्थान पर बैठकर योग कर रहे हैं निर्देशों का पालन करते हुए. अब धीरे धीरे वज्रासन की स्थिति में सभी आए हैं, एक ऐसा आसन जो हमारे पाचन तंत्र को बेहद तेज कर देता है और कहा जाता है कि हमारे पेट को वज्र के समान मजबूत कर देता है, यानी हम जो भी खाएं वो पच जाए. और प्रतिमा जी, जहां तक मेरी जानकारी है, ये एक इकलौता आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं.
2: बिल्कुल 100% ये ही एक ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद करते हैं, और ये हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एब्डोमिनल रीजन में इंक्रीज करता है, इसलिए वो डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करता है. और जो हमारी पंचवायु कही गई है, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, इन वायुओं में से जो समान वायु है उस पर विशेष रूप से काम करता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम डेफिनेटली इंप्रूव होता है. साथ में हमारी जो स्पाइन है वो स्पाइन अलाइंड होती है
0: जी. और अब वज्रासन के बाद अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास यहां पर किया जा रहा है. माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सभी अभ्यर्थियों के बीच से वो जा भी रहे हैं, और अभी हमने देखा कि किस प्रकार से एक योग साधक की उन्होंने मदद की है, उसकी जो स्थिति है उसे ठीक किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हाथों की स्थिति को ठीक किया है, और सभी को प्रेरित करते हुए स्वयं उनके बीच में यहां पर ये बोलना गलत नहीं होगा कि जैसे हम अपने गुरु के निर्देश का पालन करते हैं, उनके सामने योगाभ्यास करते हैं, जैसे हमारे ट्रेनर्स होते हैं या हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग हमें कुछ सिखाते हैं, उसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे परिजनों की तरह एक शिक्षक की नजर से सभी को देखते हुए और सभी को वो सही तरीके से कैसे हमें आसन करना है ये भी बताते हुए बेहद सुंदर ये भाव, बेहद सुंदर ये दृश्य. कौशिक जी,
1: यस एब्सोल्युटली, एंड एज वी मेंशनड अर्लियर आल्सो, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टेकिंग कीन इंटरेस्ट स्पेशली अमंग द teenagers and youngsters who are present here and just guiding them how to do the asanas in the correct manner. And this is just as you rightly mentioned, how an elder of the family takes care of the youngsters. The Honorable Prime Minister is doing absolutely just that.
0: जी, और अब यहाँ अभ्यास किया जा रहा है शशक आसन का. खरगोश की स्थिति में हम आते हैं जब हम शशक आसन करते हैं, और यहाँ पर जब भी बैक बेंडिंग के आसन किए जाते हैं उसके बाद शशक आसन करने के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग करके तुरंत बैलेंस किया जाता है, और यही है योग की बेहद सुंदर अनुभूति कि हमें वो संतुलन सिखाता है. और अब यहाँ पर उत्तान मंडुकासन का अभ्यास किया जाएगा सभी इस आसन की मुद्रा में आते हुए. उत्तान मंडुकासन, प्रतिमा जी इस आसन के बारे में आप हमें बताएं.
2: जैसे कि अभी आपने कहा कि शशांक आसन जो किया जाता है, शशांक आसन भी बोलते हैं उसको, उसके बाद उत्तान मंडुकासन. शशांक आसन जो है वो स्ट्रेस को रिमूव करने का काम करता है, और इस पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं. उसके जस्ट बाद जो काउंटर पोस्चर किया जाता है वो बैठकर किया जाने वाला उत्तान मंडुकासन, ये स्पेशली लेडीज के लिए, फीमेल्स के लोअर बॉडी पार्ट्स के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बेनिफिशियल

0: होता है, साथ में आप देख रहे हैं कि जो बॉडी अलाइनमेंट है वो ऊपर की तरफ एल्बोज का डायरेक्शन रहता है, तो ये थोरेसिक कैविटी पर भी काम करता है, साथ में मन को भी शांत करता है और हमारे घुटनों के लिए और जो बटक्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होता है। एंड नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं, साथ में मन को भी शांत करने वाला आसन है ये।
1: जी, और अगर हम अपने शरीर को थोड़ा समझने का प्रयास करें तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी तनाव होता है, हम किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं जो हमारे लिए जटिल है, हमारे लिए कठिन है, तो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में स्ट्रेस जो है वो इकट्ठा हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता और बाद में किसी ना किसी बीमारी के रूप में वो सामने आता है। तो योग एक ऐसी स्थिति जिसमें पूरे शरीर का तनाव जो है वो दूर किया जाता है और साथ ही मानसिक तनाव भी दूर किया जाता है।
2: And now I think the enthusiasts are performing Vakrasan.
1: जी बिल्कुल, वक्र यानी तिरछा, तो थोड़े टेढ़े होकर हम ये आसन करते हैं जो हमें बिल्कुल सीधा कर देता है। प्रतिमा जी
0: बिल्कुल सही है कि हमें सीधा कर देता है, क्योंकि इस आसन को जो हमारा डायबिटीज है, शुगर जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल आसन है। ये मोड़ कर किए जाने वाले आसनों में से आप देखेंगे तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड से किया जाता है ये, और हमारे जो पैंक्रियाज है और लीवर दोनों के लिए पर प्रेशर क्रिएट करता है। तो ये पूरे हमारे जितने भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद है, इसीलिए इसको डायबिटीज वालों के लिए रामबाण कहा जाता है। साथ में ये आंखों के लिए भी बेनिफिशियल है, गर्दन भी इसमें ट्विस्ट होती है तो पूरी स्पाइन की ट्विस्टिंग करता है ये आसन।
1: और महिलाओं का बहुत इसमें इंटरेस्ट रहता है कि हमारा कटी प्रदेश जो है, हाँ, कमर वाला हिस्सा जो है वो लचीला रहे, पतला रहे, तो ये आसन उसमें बेहद लाभदायक होता है, क्योंकि हमें कॉलेज में बहुत करवाया गया ये आसन
0: और साइड फैट को भी रिड्यूस करता है।
1: जी, और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि हमने कहा कि एक शिक्षक की नजर से सभी को देखते हुए और परखते हुए यहाँ पर एक अभ्यर्थी जो है, योग साधक जो है, उनसे जब ठीक से आसन नहीं हुआ तो
2: जस्ट गाइडिंग देम टू डू द आसन,
1: उन्हें बिल्कुल गाइड कर रहे हैं
2: परफेक्ट मैनर। एंड नाउ प्रतिमा जी, अबाउट दिस पर्टिकुलर आसना, इफ यू कैन शेयर विद आवर लिसनर्स।
0: मकरासन, ये पेट कर किए जाने वाले आसनों का शिथिलीकरण आसन है, और ये इसमें देखेंगे आप, जब हम जनरली पीठ के बल लेटते हैं इसमें पेट के बल लेटना होता है, और ये हमारी पूरी जो स्पाइन, अभी तक किए जाने वाले आसनों में जो स्ट्रेच हुई है उसके बेनिफिट को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला आसन है, और साथ में जो हमारा लेफ्ट और राइट बॉडी जो पार्ट्स हैं और लोअर लिम और अपर लिम है, इसमें आप देखेंगे हील्स अंदर की तरफ हैं, टोज बाहर की तरफ है, तो ये पूरे बॉडी को एक तरह से ट्विस्ट भी कर रहा है और अलाइन भी कर रहा है।
1: जी,
0: तो इस आसन के और भी बहुत बेनिफिट्स हैं, साथ में ये जो सर्वाइकल जिन लोगों को होता है उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद होता है, साथ में जो तनाव मुक्त है वो भी करता है ये।
1: जी, और बेहद खूबसूरत बात यह है कि हम जिन आसनों के नाम ले रहे हैं, अर्ध उष्ट्रासन हो या मकर आसन हो जो अभी हो रहा है, ये हम अपने जीव जंतुओं से प्रेरणा लेते हुए ये आसन हमने अपनाए हैं। अगर हम वज्रासन की बात करें तो हमने पत्थर से भी प्रेरणा ली है, हम बात कर रहे हैं वृक्षासन की, ताड़ासन की, तो प्रकृति से प्रेरणा ली है, तो किस तरह से योग ने समाहित किया है अपने आप में पूरे ब्रह्मांड को और प्रेरित किया है हमें कि हम जिसमें जो अच्छाई है उसे लेकर उसका अनुसरण करके स्वयं को बेहतर करते चले। मकर आसन, मकर यानी मगरमच्छ जिस तरह स्थिति में होता है बिल्कुल सीधा, उस तरह की स्थिति में रहते हुए हम आसन का अभ्यास करते हैं, और अब हम वो आसन कर रहे हैं जिसका नाम है भुजंगासन। यहां पर योग साधक भुजंगासन कर रहे हैं। भुजंग यानी सर्प से तो वैसे ही डरा जाता है, लेकिन हमने उससे भी सीख लिया है कि स्वयं को किस तरह से लचीला रखना है। इसके लाभ डॉक्टर प्रतिमा,
0: भुजंगासन और सर्पासन दो नाम सुने होंगे, ये भुजंगासन, भुजंग मतलब कोबरा पोज, और ये हमारे स्पेशली जो स्पाइन है उस पर काम करता है, और ये कुंडलिनी जागरण से संबंधित आसन है जो ग्रंथों में कहा गया है। साथ ही जो फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल आसन है, स्पाइन भी फ्लेक्सिबल करता है, शोल्डर्स को भी स्ट्रेंथन करता है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल्स को पर भी काम होता है।
1: जी,
0: ये कहा जाए कि ये पूरे शरीर पर अगर काम करता है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। सर्वाइकल वालों के लिए भी आसन बेनिफिशियल कहा जाता है, और सर्पासन अलग है, भुजंगासन अलग है। यहाँ पर भुजंगासन किया गया है क्योंकि भुजंगासन के बहुत सारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ हैं।
1: जी गुरु मुनीश सेना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम योग के लाभों के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि इस तरह के आसन है जिन्हें हर उम्र के साधक आसानी से कर रहे हैं, आपका क्या विचार है? क्या योग को हमारे स्कूली शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए जिसमें आध्यात्मिक पक्ष भी शामिल हो?
2: जरूर जरूर। एक्चुअली जब तक हम अपने रूट से नहीं जुड़ेंगे ना, तब तक हमारी पूर्ण विकास नहीं हो सकती। अगर हम बच्चे से ही, बहुत छोटे कॉन्सियसनेस से ही जब हम योग बताना शुरू करते हैं, योग से उनको जोड़ते हैं, तो हम पूरी पृथ्वी पे एक अच्छे नागरिक को पाते हैं, एक अच्छे इंसान को बनाते हैं, और इससे बहुत पूरी पृथ्वी का भला होने वाला है, पूरी जगत का भला होने वाला है। और मैं तो ये बहुत खुश हूँ कि अपने प्रधानमंत्री जी की जो वो आज एक इंस्ट्रक्टर की तरह हर रो में घूम घूम के सबके पॉस्चर्स ठीक कर रहे हैं, इससे यही योग की जो नेचर है, योग का जो नेचर लव है, यही दिखाता है, जॉय ऑफ गिविंग है, यही दिखाता है। आज वो अपने व्यवहार से, अपने एक्शन से जॉय ऑफ गिविंग, सेल्फ लव और लव फॉर ऑल वो दिखा रहे हैं। तो ये मतलब इतनी रोमांचक जगह है, इतनी इतनी अच्छी हो रही है, मतलब कह नहीं सकता हूं मैं, बहुत ही सुंदर
1: जी। और यहाँ पर हम अद्भुत अनुशासन भी देख रहे हैं जो कि योग भी हमें सिखाता है, प्राणों के साथ जुड़ना। और सेतु बंध आसन का यहाँ पर अभ्यास किया जा रहा है। सेतु यानी पुल, तो शरीर से पुल जैसी आकृति बनाना सेतु बंध आसन, इसके लाभ हमें डॉक्टर प्रतिमा बताएंगी।
0: ये आसन जो है वो जैसा कि नाम है वैसा काम, बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है। साथ में ये जो हमारा एब्डोमिनल रीजन है, आप देख रहे हैं इसमें स्पाइन ऊपर की तरफ जाती है और पेट ऊपर की तरफ जाता है, तो स्पाइन पर भी काम करता है, एब्डोमेन पर भी काम करता है, शोल्डर्स पर भी काम करता है, थाई मसल्स पर भी काम करता है
1: जी।
0: और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आसन है हमारे थेरेपी एस्पेक्ट से। और इसको जब किया जाता है तो हमारी काफ मसल्स पर भी, जो गैस्ट्रोनियस मसल्स होती हैं, उनके उन पर भी काम होता है सेतु बंधासन।
1: जी सेतु बंधासन। और हम यहाँ देख रहे हैं कि लगातार अपनी अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आसन सभी कर रहे हैं। योग के बारे में एक अच्छी बात यह भी है कि जितनी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, बढ़ती उम्र के साथ हमें कहा जाता है कि या तो वो कम कर दीजिए या ध्यान से कीजिए, लेकिन योग एक इस तरह की क्रिया है शारीरिक, कि अगर हम लगातार करते रहते हैं तो बढ़ती उम्र, एक तो उसका बढ़ना धीमा हो जाता है, यानी एजिंग के जो असर हैं वो धीरे धीरे आते हैं, और दूसरा ये भी होता है कि हम सहज भाव से वो आसन कर पाते हैं। और यहाँ पर अब हम देख पा रहे हैं अर्ध हल आसन शायद यहाँ पर किया जा रहा है, और हल जैसी आकृति शरीर से बनाते हैं तो पांव पीछे की तरफ ले जाकर, सर के पीछे की तरफ ले जाकर जमीन को छूते हैं, लेकिन ये उसका आधा हिस्सा ही किया जा रहा है सभी, ताकि सहज भाव से कर सके। अर्ध हल आसन, पांव सीधे किए गए जमीन पर लेटकर, और अब पवन मुक्त आसन का अभ्यास सभी कर रहे हैं। शरीर की वो वायु जो हमें कष्ट दे सकती है उससे शरीर को मुक्ति देना, पवन मुक्त आसन। डॉक्टर प्रतिमा,
0: पवन मुक्त आसन जो है, आप देख रहे हैं कि लेटकर सुपाइन पोस्चर है ये
1: जी।
0: और पवन मुक्त जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये पवन मुक्त आसन समूह के आसनों में से किया जाने वाला आसन है। और क्यों? क्योंकि शरीर में 80 प्रकार के जो रोग हैं वो वायु विकार के कारण होते हैं, वायु विकार से संबंधित होते हैं। तो ये हमारे शरीर में जितनी भी प्रकार की वायु है उन सभी पर काम करता है, इसीलिए इसको पवन मुक्तासन नाम दिया गया है। वायु विकार के कारण हमारा हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इवन सारे जितने भी हमारे सिस्टम हैं उन सभी सिस्टम से रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो वायु के कारण होती हैं। तो ये पवन मुक्तासन ग्रुप का किए जाने वाला आसन है पवन मुक्तासन, जिसके कि वायु को व्यवस्थित करने का काम ये हमारे शरीर में करता है।
1: जी गुरु मुनेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका क्योंकि ऐसा अनुभव रहा है कि आप हमारे सशस्त्र बलों को भी और अर्धसैन्य बलों को भी

0: योगाभ्यास करवाते रहे हैं, मेडिटेशन की क्लासेस आप लेते हैं, मुझे आप ये बताएं कि किस प्रकार से हमारा मेडिटेशन जो है, ध्यान जो है, वो मदद करता है हमारी।
1: एक्चुअली क्या है, योगा में उसकी जो डेफिनेशन है, योगा चित्त वृत्ति निरोध है।
0: जी,
1: हमारी चित्त की वृत्तियां अगर जब तक कंट्रोल नहीं होती हैं, तब तक हम अपने जीवन को ढंग से जी नहीं पाते हैं। आप कितना भी सशक्त हो जाएं, अगर आपकी वृत्तियां ही आपके अंडर कंट्रोल नहीं है, आपकी वृत्तियां ही आपको हर वक्त ऐसे कार्यों में लगाती हैं जो नहीं करना चाहिए, आपकी वृत्तियों से आपका जीवन पूरा चारों तरफ बिखर जाता है। तो सबसे बड़ी जरूरत है कि आज योग करके अपनी वृत्तियों को कंट्रोल करें। इसीलिए आसन को सीट ऑफ अवेयरनेस कहा गया है, हमारी वृत्तियों को कैसे कंट्रोल किया जाए। और खास करके मेडिटेशन और खास करके योग और ये सारी चीजें उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, वो दुनिया के लिए अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, हमारे जितने सैनिक हैं, हमारे भारत के जितने फोर्स हैं, जितने भी आर्म फोर्स में काम कर रहे हैं, उनकी जीवन में एक बहुत स्ट्रेस होता है, वो घर से बाहर होते हैं, तो उनके लिए योग करना, ध्यान करना, अपनी वृत्तियों पे काम करना, सो दैट अपने देश की रक्षा, अपनी देश की सुरक्षा उनका 100% वो डाल पाए, ये बहुत जरूरी है कि ध्यान करके अपनी चित्त को कंट्रोल किया जाए, उसमें समाया जाए और उसको उसी की जिंदगी जिया जाए, है ना। योग योग में सबसे पहली बात मैंने देखा है जीवन में, जिनकी चित्त की कंट्रोल नहीं है, जो जो अपने कॉन्शसनेस से कनेक्टेड नहीं है, तो उनकी प्रॉब्लम।
2: डॉक्टर प्रतिमा, नाउ आई थिंक वी आर सीइंग द कपालभाति, सो यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट।
0: कपालभाति षट क्रियाओं में से एक क्रिया है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कपालभाति। कपाल मतलब मस्तिष्क प्रदेश, ब्रेन रीजन, और भाति मतलब वो जो आपने लोहार देखा होगा, उसको जो धोकनी चलाता है, उस तरह से हमें फोर्सफुली एक्टिव एक्सहेलेशन और पैसिव इनहेलेशन कपालभाति में करना होता है। और जो हमारे ग्रंथ हैं वो इसको विशेष रूप से ये कहते हैं कि कफ दोष नाशनी, हमारे शरीर में जो कफ विकार है वो इसको करने से संतुलित होता है। और योग एज सच, जितने भी हमारे विकार हैं, बात विकार हो, कफ से संबंधित हो, पित्त से संबंधित हो, जो भी बीमारियां हैं वो इन्हीं के असंतुलन के कारण होती हैं, और उन्हीं को संतुलन करने का काम योग करता है। तो कपालभाति मस्तिष्क को चमकाने के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा तो आपके सभी काम अच्छे होंगे। और यहां मैं एक बात कहना नहीं भूलूंगी कि जो योग है अपने आप में, वो मैंने जो समझा वो यूथफुलनेस ऑर्गेनाइजिंग ऑल द सिस्टम ऑफ द बॉडी, गारंटी फॉर हेल्थ, हैप्पीनेस एंड हार्मोनी, A stand for analysis for self and society. तो योग करने से हमारा जो मस्तिष्क है वो तो अच्छे से काम करेगा ही, जब वो अच्छे से काम करेगा तो आपका एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा, और जब एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा तो सोसाइटी में हम इंटरैक्ट पॉजिटिव वे में करेंगे।
3: जी, और अब यहाँ पर नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है। योग साधक जो हैं वो पद्मासन में बैठे हैं, ज्ञान मुद्रा में हाथ हैं, एक हाथ से नाड़ी शोधन प्रक्रिया आप कर रहे हैं, और कुछ साधक जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो सहज आसन में, सुखासन में बैठे हैं और नाड़ी शोधन किया जा रहा है। तो नाड़ियों की शुद्धि इससे होती है डॉक्टर प्रतिमा?
0: हाँ, 72,000 नाड़ियों के विषय में योग ग्रंथों में कहा गया है, उन सभी नाड़ियों की शुद्धि इससे प्राणायाम से होती है। प्राण और आयाम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हम प्राण ऊर्जा के कारण ही संपूर्ण जीवन की क्रियाकलाप संपन्न कर पाते हैं। तो ये प्राणों को भी लंबा करता है, आयाम मीन्स लॉन्ग करना, लंबा करना। और ऐसा कहते हैं कि हम गिनी चुनी श्वासें ईश्वर से लेकर आए हैं, तो हम कॉन्शियसली अपनी लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं। और जैसा कि ग्रंथ कहते हैं, प्राणायामिन युक्तिन सर्व रोग क्षयो भवित, अयुक्ताभ्यास योगिन सर्व रोग समुद्भवा। मतलब इसका यह है कि प्राणायाम अगर सही ढंग से किया जाए तो सभी रोगों का नाश करता है, लेकिन यहाँ पर योग शब्द है अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भव, मतलब यदि गलत ढंग से योग अभ्यास या प्राणायाम का अभ्यास किया जाए तो सभी प्रकार के

0: रोग हो सकते हैं। इसीलिए प्राणायाम को हमें या योग अभ्यास को हमें बहुत सावधानी पूर्वक कहा गया है। ये भी कहा गया है युक्तम युक्तम त्यजेत वायु युक्तम युक्तम च पूरयेत, मतलब धीरे धीरे श्वास को लेना है, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। और प्राणायाम जैसे कि कई प्रकार के हैं
1: जी, और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर अब शीतली प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है, गर्मी में भी शीतलता का आभास देने वाला, जो कि कहा जाता है कि स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन को ग्लोइंग कर देता है। और चेहरे पर अगर किसी भी प्रकार के किशोर अवस्था में आमतौर पर किशोर जो है वो मुहासे और पिंपल्स का सामना करते हैं तो उन्हें भी ठीक करता है। डॉक्टर प्रतिमा,
0: जैसा कि आपने कहा कि शीतलता देने वाला प्राणायाम है, निश्चित रूप से ये हमारे शरीर को शीतल प्रदान करता है, साथ ही भूख और प्यास पर भी नियंत्रण लाता है ये। और जो हमारी अग्नि है वात सॉरी पित्त जो है हमारा, उसको व्यवस्थित करने का काम करता है। और अगर पित्त सही होगा, आग सही जल रही होगी, तो निश्चित रूप से चमक आएगी ही।
1: जी, जठराग्नि को पूरी तरह से व्यवस्थित कर देता है जी। और अब भ्रामरी प्राणायाम किया जा रहा है,
0: भ्रामरी प्राणायाम के तो इतने फायदे हैं जिसकी की कोई हद, क्योंकि ये हमिंग भी जैसे आवाज निकालना होता है इसमें, और षणमुखी मुद्रा में किया जाने वाला अभ्यास है, डिफरेंट वे में भी किया जा सकता है ये
1: जी।
0: और इसमें आप देख रहे हैं कि आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, और बाकी की जो फिंगर्स हैं वो अलग अलग मर्म स्थानों पर रखी हुई हैं। इसमें सांस लेते हैं और आवाज के साथ सांस को छोड़ते हैं। उस समय हमारे जो आवाज निकलती है वो गले से निकलती है, और जो वाइब्रेशंस जो होते हैं वो हमारे ब्रेन से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, चाहे वो सेरोटोनिन हो, डोपामाइन हो, इनका सीक्रेशन प्रॉपर करता है, ऑक्सीटोसिन हो, तो ये ब्रेन और ब्रेन की फंक्शनिंग को बहुत फायदा करता है। और जैसा कि योग है वो पेट और पीठ दोनों पर काम करके ब्रेन पर अल्टीमेटली काम करता है, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन हाँ, इसको किसे नहीं करना चाहिए या लाउडर पिच में इसको नहीं करना चाहिए, वो हार्मफुल हो सकता है। जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत लाउडर पिच पर नहीं करना चाहिए।
1: यानी शरीर के जो अंदर सॉफ्ट टिश्यूज है, कंपन से हम उन्हें एक्टिव करते हैं और इस तरह से उन्हें मजबूत करते हैं। और ये हाथ इसलिए रखे जाते हैं द्वार पर कि जो कंपन से जो हवा है वो बाहर नहीं निकले, शरीर के अंदर जब वो रहेगी तो हमारे टिश्यूज को हेल्दी करेगी जी। भ्रमर जैसी आवाज हम इसमें,
0: और बाहर से कनेक्शन कट भी करना होता है
1: जी।
0: हम अपने आप में, योग अपने आप में जुड़ना सिखाता है
1: जी,
0: तो हम अपने आप से जुड़ पाए,
1: स्वयं से ही हम जुड़ते हैं, अपने भीतर हम जाते हैं जी।
2: नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द आसनास, दैट इज ध्यान और मेडिटेशन, व्हिच इज अ टाइम फॉर आवर सेल्फ असेसमेंट एंड becoming one with the universe. Dr. Pratima,
0: meditation is not just meditation, it is medication of body as well as mind.
1: जी,
0: क्योंकि मैंने कुछ ध्यान के जो लोग हैं उनको से जुड़ी हुई हूँ, देखा है मैंने कि ध्यान से उन्होंने अपनी बीमारियों को ठीक कर लिया। तो मेडिटेशन केवल मेडिटेशन नहीं है, बैठ गए आंख बंद करके और मन कहीं और भटक रहा है, वो नहीं है। मेडिटेशन है श्वास को देखना, जो प्राण का आवागमन है हमारे शरीर में जो हो रहा है उसको देखना, उससे अलाइन होना। तो इसीलिए ये कई प्रकार के रोगों को भी ठीक करता है
1: जी। और गुरु मुनेश सेना जी, आप तो आध्यात्मिक जगत से जुड़े हैं, आप ध्यान करवाते हैं और स्वयं भी ध्यान में रहे हैं, तो अपना अनुभव आप हमारे साथ साझा करें, किस प्रकार की दिव्य अनुभूति ध्यान से हमें हो सकती है।
3: मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर आपके जीवन में कुछ काम नहीं बन रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है आप कहां जाना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ अगर स्टक हो गई है, आप बिल्कुल जैसे मानो कि अंधेरी कोठरी में आपकी जीवन बिल्कुल सिमट गई है, आपको लग रहा पता नहीं चल रहा आप क्या करें, आप ध्यान करना शुरू करें। मैंने अपने जीवन में न जाने हजारों लोगों को ध्यान करवाया है, और कई लोग ध्यान के सिर्फ वो शरीर में ही नहीं, आपके पूरे जीवन के हर क्षेत्र के रास्ते को खोल देता है। सारी अपॉर्चुनिटी इंफॉर्मेशन जो भी वेव्स में अभी तरंगित हैं, द मोमेंट आप ध्यान करते हो, द मोमेंट आप साइलेंस में जाते हो, द मोमेंट आप अव्यक्त स्वरूप में जाते हो, इमीडिएटली आपका सोर्स बहुत पावरफुल होना शुरू हो जाता है, और आपके लिए बनी जो भी इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटीज पूरी दुनिया में है आप स्वयं उसको अट्रैक्ट करने लगते हो। सारी चीजें, मेरी खुद की लाइफ बताऊं कि मेरी स्पाइन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी, वो मैं किसी की हील कर रहा था और वो एम्स के डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं हो सकते।

0: जाता है हमारा ध्यान। और यहाँ पर अब प्रार्थना
1: शांति
0: मंत्र का पाठ किया जा रहा है।
1: दोनों हथेलियों को घर्षण कीजिए, कोमलता से दोनों हथेलियों को चेहरे और आंखों पर।
0: और जैसा कि हमने कहा कि हमारी संस्कृति जो है
1: और धीरे
0: इसकी
1: धीरे
0: ये अद्भुत बात है, ये विशेषता है कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रकृति की शांति की कामना करते हैं। और मैं गुरु जी आपकी बात जब सुन रही थी तो ये भाव मन में आया कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, हम नेचर के साथ अलाइनमेंट की बात करते हैं, हम पंच तत्वों की बात करते हैं और साथ ही हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात भी करते हैं। तो आपने जैसा कि बताया कि ध्यान हमें खुद से जोड़ता है और कहीं ना कहीं ध्यान में मैं ये सब पा रही हूँ जो आपने कहा कि हमारे बहुत सारे जो अनसुलझे सवाल होते हैं उनके जवाब हमें अपने आप मिलने लगते हैं और आप एक नेट की तरह हो जाते हैं। आपने कहा कि विश्व में जो कुछ भी हमारे लिए निर्धारित है वो स्वयं हम तक पहुंचने लगता है। तो बहुत ही अद्भुत बात आपने ये कही ध्यान से जुड़ी हुई।
2: एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज नाउ मेकिंग हिज वे टुवर्ड्स द एग्जिट ऑफ द रेड रोड एंड एवरीवन हु वर प्रेजेंट हियर एंड हु वर लेड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन द ओकेजन ऑफ द 12th International Day of Yoga really felt touched when the Prime Minister himself went to every enthusiast and guided them in doing the asanas in the correct manner. This was indeed a great celebration at the iconic Red Road in Kolkata, where more than 3 lakh people had assembled to perform the yogasanas and were led by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi.
0: Ji, jal, thal, nabh, sabhi योग में होंगे। हम जानते हैं कि भारत में तो सूर्योदय जब हो रहा है तो हमने नमस्कार किया है और साथ ही योग अभ्यास किया है। दुनिया के ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनमें जहां जहां भारतीय दूतावास है उनकी ओर से विशेष आयोजन होंगे। और अब क्योंकि बहुत सारे देश दुनिया के योग को अपना चुके हैं, पहले से योग प्रचलित रहा है, कभी हम इसे जिम में होता देखते हैं, कभी वेलनेस सेंटर में देखते हैं और इंजर्ड होने के बाद फिजियोथेरेपिस्ट में जिस तरह की एक्सरसाइज बताता है वो हमारे योगासनों से ही प्रेरित होती है। तो योग हमारे जीवन का हिस्सा रहा है लेकिन अब ये पूरी दुनिया मान चुकी है कि भारत ने दुनिया को योग दिया है और आधिकारिक तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए प्रयास किए और यूएन यूनेस्को ने इसे माना कि भारत का ये उपहार विश्व के लिए अनूठा है और आज संघर्षों से भरी हुई इस दुनिया में बेहद जरूरी भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि योग को हम केवल एक दिन का उत्सव ना बनाएं बल्कि इसे अपनी दिनचर्या के साथ जोड़ें।
2: योगा 365, दैट इज व्हाट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैड मेंशनड एंड वी वुड आल्सो लाइक टू इन्फॉर्म our listeners that as the Honorable Prime Minister has mentioned that the gift of India was just not only Lord Buddha or peace but also yoga. And this yoga has been practiced by Indians since times immemorial. It is as old as our civilization, which is more than 5,000 years old. And today, as Neelam rightly mentioned, that the entire world has accepted yoga, has embraced yoga, as it promotes not only healthy lifestyle, but also healthy mental lifestyle. It brings about a total balance in healthy living. And Guru Munish Sinhaji, you were mentioning about the importance of meditation. So how do a layperson begin to meditate, if you can inform our audience?
3: Yes, सबसे पहले मैं जो लोग ध्यान करना चाहते हैं या ध्यान की दुनिया में आना चाहते हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में वो ना जाएं, सिर्फ स्टैचू बन के 10 मिनट रोज एक महीने की प्रैक्टिस करें। एक समय चुनें 10 मिनट या 15 मिनट, वो सिर्फ स्टैचू हो जाएं, जैसे बच्चे में हम लोग स्टैचू गेम खेलते थे, चलते चलते अचानक कोई स्टैचू चिल्लाता था और हम जिस पोजीशन में होते थे उसी पोजीशन में रुक जाते थे। अपने जीवन में भी आप अपनी किसी एक फेवरेट जगह पे, घर के किसी कोने में आप बैठें

0: 15 मिनट के लिए सिर्फ स्टैचू हो जाए, और स्टैचू होने के बाद आपके मन की मन, आपकी आंखों की आंख जो आपके अंदर है, वो बहुत सारी वृत्तियों को देखेंगी। कई सारे आप पिक्चर्स देख रहे हैं, इमेजिनेशन देख रहे हैं, आप कपड़े देख रहे हैं, खेल देख रहे हैं, ये सारी आपके मनस्पटल के इसमें चलती चली जाती हैं। आपको सिर्फ उसको देखते रहना है और ये कहना है कि आई एम ओनली द ऑब्जर्वर ऑफ दिस, मैं एक विटनेसर हूं जो हमारे मन के पटल पे चल रहे सारे पिक्चर्स को मात्र देखने वाला हूं। मैं एक दृष्टा हूं। द मोमेंट आप दृष्टा के भाव में जाते हैं तो आपका आपके मन से कनेक्शन दूर हो जाता है, आप शरीर और मन से अलग एक प्योर कॉन्शसनेस हो जाते हैं, जहां पे आपका शरीर और मन जन्म लेता है, पलता है और फिर उसी कॉन्शसनेस में विलय हो जाता है। जैसे ही आप इस अस्तित्व में जाते हैं तो समझने वाला और समझ एक हो जाता है। फिर पता चला शरीर और मन जो अभी विचार देख रहे थे, विचार को देखने वाला, ये सारी चीज एक हो जाती है। फिर थोड़े ही टाइम में आपके विचार आने खत्म होने शुरू हो जाते हैं और फिर बचता है तो एक प्योर कॉन्शसनेस, जो सिर्फ कहते हैं बीइंग होने का एहसास, इसीलिए ह्यूमन बीइंग कहते हैं, ह्यूमन डूइंग नहीं कहते। ह्यूमन जितने भी इस पूरी पृथ्वी पे, जगत पे जितनी भी सृष्टि में लोग हैं, उनको ह्यूमन बीइंग कहा गया है, इसीलिए कि वो अपने अस्तित्व के उस सोर्स से कनेक्ट हो जाएं। द मोमेंट उस सोर्स से वो कनेक्ट होते हैं तो वो जाने अनजाने में इस पूरी ब्रह्मांड के अनंत के एक पार्ट बन जाते हैं, और वो अनंत फिर उनके पूरे अस्तित्व में डोमिनेट करने लगता है। शरीर की जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो वर्ल्डी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ 25% ऑपरेट करने के लिए वो रहता है, बाकी उसके पूरे अस्तित्व में 75% उस प्योर कॉन्शसनेस की रेडिएशन, उस प्योर कॉन्शसनेस की लाइट रेडिएट हो जाती है। इसलिए ध्यान तो मैं कहूंगा कि हर आदमी को, हर इंसान को, अगर वो इस पूरी जगत का भला चाहते हैं, इस पूरे विश्व का भला चाहते हैं, तो ध्यान करें, इससे हमारा कलेक्टिव कॉन्शसनेस रेज होगा और कलेक्टिव कॉन्शसनेस से हमारी प्रकृति रेज होंगी। हमारा जो आज ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म और ये सारी चीजें हम विश्व में देख रहे हैं, ये सारी चीज हो ही रही है कि हम अपने से दूर चले गए हैं। अगर इस प्रयास पे जो आज प्रधानमंत्री जी ने 21 जून का ये दिन इतना सुंदर चुना है कि पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शसनेस एक हो रही है, और ये पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शसनेस जब एक होती है तो प्रकृति की भी कॉन्शसनेस एक होती है, क्योंकि हम और प्रकृति अलग नहीं है। जो हम है वही प्रकृति है, जो प्रकृति है वही हम है।
1: जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। और ध्यान के बारे में हमने सुना है कि जब ध्यान करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सिर्फ एक यंत्र मात्र हैं और प्रकृति प्राण के रूप में हम में बह रही है, हमारे थ्रू बह रही है। और ये भी हमने कहीं पढ़ा कि हम सिर्फ कॉन्शियस माइंड से चलते हैं, लेकिन ध्यान हमारे सबकॉन्शियस को भी जागृत करता है, और असीम जो ताकत हमारी है किसी भी कार्य को करने की, समझने की, वो हमें देता है। कुछ पंक्तियां यहाँ पर मुझे याद आ रही हैं। स्वयं से स्वयं की मुलाकात है योग, बिखरे हुए अंतस की नई शुरुआत है योग, तन को जो साधे, मन को जो शांत करे, मानवता के कल्याण की पावन सौगात है योग, ऋषियों की वो खोज जो वेदों से आई है, आज विश्व ने इसकी शक्ति मानी, अपनी श्रद्धा दिखाई है।
2: Yes, and as Guru Munish Sinha ji mentioned, and as you also mentioned, Neelam ji, that today we saw the Honorable Prime Minister lead the nation in performing yogasana at the Red Road, Kolkata. But at the same time also, yoga was just not restricted onto the land. The Indian Navy, the Indian Coast Guard and other units also performed yogasanas aboard the naval ships and Coast Guard ships, and also adjacent to Red Road, there flows the river Ganga, which is also known as Hooghly, and on 500 boats, yoga enthusiasts performed yogasanas there, and in the wonderful mangrove of Sundarbans also, people performed yogasanas on board their boats and yachts. And in the mighty Himalayas, the men who guard us are vanguards of the borders. The Indian Army personnel, the ITBP personnel and others also

0: performed yogasanas there, and also our border security force personnel performed yogasana on the Thar Desert. So this is what the uniqueness of International Day of Yoga is all about, that brings together all Indians across all walks of life to perform this particular yogasana, which is our mantra for healthy aging and to stay fit both physically and mentally.
1: जी, जैसा कि हमने कहा कि जल थल नभ सभी आज योग में होंगे और अलग अलग जगह पर विभिन्न विद्यालयों में, कार्यालयों में, संस्थानों में योग के विशेष आयोजन होते रहे हैं इन दिनों. माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग 365 का उल्लेख किया, योग पार्क जो है वो डेडिकेटेड किए गए हैं, योग को समर्पित किए गए हैं. 100 दिनों के लिए ऑनलाइन माध्यम से योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें दुनिया भर से लोग जुड़े. माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उल्लेख किया कि 130 देशों से प्रतिभागी इसमें शामिल हुए. और हम बताना चाहेंगे अपने श्रोताओं को कि 14 जून को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है. देशव्यापी योग सत्र में एक साथ 4 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है और ये ताकत है हमारी संस्कृति की, हमारी इस सभ्यता की, हमारे देश की, कि हम एक साथ एक भाव से जहां खड़े हो जाते हैं. हमारे पास संख्या बल भी इतना है, जनमानस का जो आत्मिक बल है वो भी इतना है कि जब हम एक साथ खड़े हो जाते हैं तो हम वर्ल्ड रिकॉर्ड उस समय बना लेते हैं. और हम अक्सर देखते रहे हैं कि अलग अलग जो आयोजन है उनकी जो स्मृति है वो संजो कर रखी जाती है. तो इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किए गए हैं और कोलकाता तो आज एक विशेष रंग में रंगा हुआ है. स्थान स्थान पर योगाभ्यास वाले होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, स्टैंडीज लगे हैं. आज मेट्रो ने भी सुबह 4 बजे से पूरी रफ्तार से दौड़ लगाकर योग साधकों की सेवा की है. और जैसा कि आपने कहा कौशिक जी कि हमारी नदियां जो हैं उन पर जो नाव सजती रहती हैं उन्होंने भी आज एक अलग रूप दर्शाया है कि उन पर योगाभ्यास किया गया है. और पूरे देश में विशिष्ट 100 स्थानों पर बड़ी संख्या में सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा. मैं आपको बताऊं कि जब मैं ऑफिस आ रही थी तो इंडिया गेट पर मैंने देखा कि बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पर योग साधक जुटे थे और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने एरियाज में विभिन्न माध्यमों से योग से जुड़ रहे हैं. और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा है, क्योंकि योग जो है वो कोई आयोजन नहीं है, सभी का ये एक आत्मिक पल बन गया है, सभी की एक निजी उपलब्धि है आज के इस आयोजन में शामिल होना. विश्व भर में 2500 से ज्यादा स्थानों पर उत्सव के रूप में आज योग किया जाएगा और हम उन सभी विदेशियों को भी नमन करते हैं जो हमारे इस गर्व में शामिल हैं. आज पश्चिम बंगाल में कोलकाता में रेड रोड पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया. इस बार की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग. आपने आकाशवाणी दिल्ली के माध्यम से ये प्रसारण सुना. मार्गदर्शन रहा मनीषा जैन का, प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार वत्स. मैं नीलम मलकानी अपने साथी कॉमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ और साथ ही हमारे दो विशेषज्ञ जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, डॉक्टर प्रतिमा योग मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से आप वहां पर सलाहकार, डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ और परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनेश सिन्हा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं. सभी को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए इस विशेष प्रसारण से अब अनुमति लेती हूँ. नमस्कार.
2: नमस्कार.
3: अभी आप रेड रोड कोलकाता पश्चिम बंगाल से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित हुए सामूहिक योग प्रदर्शन का आंखों देखा हाल सुन रहे थे. विवरण दे रहे थे नीलम मलकानिया हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में. कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ थे परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनेश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ. ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया. 8 बजने को हैं. अब कुछ पलों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे.

0: संशोधक और आग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे 3 टैंकरों ने होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योग अभ्यास का नेतृत्व कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परम्परा का प्रतीक है जो मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में योग सत्र में भाग लिया। भारत में नॉर्वे की राजदूत मेयर लिनस्टेनर भी कार्यक्रम में शामिल हुई। ब्रह्मकुमारी संगठन ने ऐतिहासिक लाल किले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इसमें लगभग 20,000 लोगों ने भाग लिया।

0: आज उत्तर प्रदेश में भी विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष और सभी राज्य मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न जिलों में आयोजित योग सत्रों में भागीदारी की। आज गुजरात में भी कई जिलों में योग सत्र आयोजित किए गए। मुख्य आयोजन गांधीनगर के मनसा में हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित हैं। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद के प्रहलाद नगर में योग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ओडिशा में हजारों लोग योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। प्रमुख आयोजन विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रांगण में किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा ने आज पूरे देश के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जश्न बड़े उत्साह और लोगों की भारी भागदारी के साथ मनाया जा रहा है। इस साल के आयोजन के लिए चुने गए 12 खास हेरिटेज स्थलों में से एक मशहूर कोणार्क सूर्य मंदिर में एक भव्य योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि योग जीवन का एक अहम हिस्सा है और इसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग की थीम पर मनाए गए इस समारोह के साथ ही एक हफ्ते तक चल योग महोत्सव का समापन भी

0: हुआ। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इधर नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और संगठन योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शांति पथ पर समारोह में भाग लिया। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग वैश्विक स्तर पर पहुंचा है और इस अवसर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। ये कार्यक्रम सदर इलाके गैरिसन ग्राउंड में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य लोगों को ध्यान के महत्व से अवगत कराना और मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है।
3: ध्यानेनात्मानि पश्यन्ते केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जिसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में मिलता है। ये शरीर को स्वस्थ रखने, मन को एकाग्र करने, आत्म चेतना बढ़ाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। योग की ही एक शाखा ध्यान भी है। ध्यान प्राणायाम के माध्यम से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर कुछ यूं कहा जाए कि ध्यान सचेतन नींद है और नींद अचेतन ध्यान, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ध्यान एक तरह निद्रा की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति एक तरह की नींद में तो होता है, लेकिन साथ ही उस समय उसके भीतर पूर्ण चेतना भी होती है। ठीक इसके उलट नींद में व्यक्ति चेतना में तो होता है, लेकिन उसके मन के भीतर तमाम तरह के विचार हिलोरे ले रहे होते हैं। वैज्ञानिक शोध भी ये सिद्ध करते हैं कि योग और ध्यान करने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ती है। विश्व योग दिवस हमें ये संदेश देता है कि आंतरिक शांति और संतुलन के बिना वैश्विक विकास की संकल्पना अधूरी है। इसीलिए कहा भी गया है कि योगः कर्मसु कौशलम्, अर्थात कुशलता के साथ कर्म करना ही योग है।
1: इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने वाले इन पोत का विकास नौसेना युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोत का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दुनागिरी ब्रह्मोस मिसाइल और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रह तटीय रक्षा के लिए टॉरपीडो, रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा कि इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परीक्षा सफल रूप से कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
5: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। NTA भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: भारतीय ध्वज वाले तीन टैंकर सफलतापूर्वक होर्मोज जलडमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेलाड। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। ये वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: 5 दिनों तक सिनेमा का शानदार उत्सव प्रस्तुत करने के बाद मिफ 2026 का आज समापन होगा। मिफ के अंतिम दिन महान फिल्मकार वी शांताराम की 125वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में उनकी स्मृति को समर्पित फिल्म वी शांताराम द पायनियरिंग स्पिरिट का प्रदर्शन होगा। आज शाम मुंबई के रविन्द्र नाट्य मंदिर में आयोजित होने वाले समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्गों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को कुल 18 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों में ट्रॉफी और प्रमाण पत्रों के साथ कुल 45 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी शामिल है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं असम के नौगांव जिले की जुमरमुर पंचायत के प्रयासों पर। इस पंचायत को हाल ही में स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये चर्चा आज सुबह 9:10 पर 100.1 फ्रीक्वेंसी पर आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर सुनी जा सकेगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में भी बृहस्पतिवार तक कुछ स्थानों में तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में इस महीने की 26 तारीख तक अत्यधिक बारिश की संभावना है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने मछुआरों को इस महीने की 25 तारीख तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में न जाने की सलाह दी है। श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती को 3-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर।
2: धन्यवाद भरत। एनटीए ने सख्त सुरक्षा इंतजामों के साथ आज नीट यूजी पुनः परीक्षा कराने की तैयारी पूरी कर ली है। सभी समाचार पत्रों की ये पहली खबर बनी है। हिंदुस्तान लिखता है अभूतपूर्व इंतजामों के बीच आज दोबारा नीट। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं नीट का शुद्धि योग, छात्रों से ज्यादा सिस्टम की परीक्षा। लेबनान में इसराइल के हमले, हारमूज फिर बंद, जनसत्ता की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को अहमियत दी है। ईरान ने अमरीका को घेरा, इसराइल अपनी सुरक्षा पर अड़ा। मानसून की 2 हफ्ते की सुस्ती टूटेगी, 23 से फिर आगे बढ़ेगा, दैनिक भास्कर की खबर है। योग करने में भी महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा। दुनिया में योग का बिजनेस 12 लाख करोड़ तो भारत में 57,000 करोड़ पार, लोकसत्व की सुर्खी है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दैनिक जागरण ने भी योग को अपने संपादकीय पन्ने पर अहमियत दी है। पत्र लिखता है मानवीय क्षमता बढ़ाता है योग। 7 सबसे ऊंचे शिखर छूने के करीब उत्तराखंड का युवा रुद्रप्रयाग के आकाश नेगी ने फतेह की यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है दुनिया के सभी महाद्वीपों के 7 शिखरों में से 6 पर फतेह की, अब अंटार्कटिका की बारी। आज फादर्स डे पर विशेष राजस्थान पत्रिका ने भावुक कर देने वाली खबर सचित्र प्रकाशित की है। पत्र लिखता है पिता नहीं रहे पर हर दिन मिल रहा उनका आशीर्वाद, प्रतिमाओं में स्मृतियां, हर शुभ कार्य से पहले लेते हैं बच्चे आशीर्वाद।
0: धन्यवाद रवि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में नीट UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे 3 टैंकरों ने होर्मोज जलडमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: and Silchar. The Ministry of Ayush said that over 6 lakh organizations have registered on Yoga Sangam portal, reflecting unprecedented public participation in this year's celebration. Internationally, more than 210 Indian missions are organizing yoga events at nearly 2,500 locations across the world through coordinated efforts of the Indian Council for Cultural Relations. Rohan, Akashwani News, Delhi.
1: President Draupadi Murmu was chief guest at the state-level International Yoga Day program in Jabalpur, Madhya Pradesh today. The event was held at Garrison Ground in Sadar. In Saudi Arabia, more than 500 participants gathered in Riyadh yesterday to celebrate the International Day of Yoga, highlighting the growing popularity of yoga in the country and its role in promoting health and well-being. The event, organized by the Indian Embassy in Riyadh in collaboration with the Saudi Yoga Committee and local partners, was held at the Prince Faisal bin Fahad Olympic Complex. Yoga enthusiasts across several Western countries practiced yoga in large groups yesterday ahead of International Day of Yoga today. In Canada's Toronto, an enthusiastic gathering of government representatives, diplomatic corps, yoga practitioners, wellness organizations and community leaders participated in a yoga session against the historic backdrop of the Legislative Assembly of Ontario. In Brazil, a curated yoga session was led by the Ambassador of India to Brazil, Dinesh Bhatia, at the majestic Foz do Iguaçu waterfalls. Prime Minister Narendra Modi will commission 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agre in Kolkata today. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. We have a report from our correspondent.
2: INS Duragiri, a Project 17 stealth frigate, is armed with BrahMos missiles and medium-range air defense systems. INS Sanshodhak is a survey vessel designed for coastal and deep-water hydrographic operations, while INS Agra is an anti-submarine warfare craft equipped with torpedoes, rocket launchers and sonar systems for coastal defense. The Navy said the vessels have more than 75% indigenous content and involved over 200 micro, small and medium enterprises, highlighting the growth of India's domestic shipbuilding industry. Sandeep Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
1: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. The National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG 2026 re-examination will be conducted today. It will be held across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. The examination will be held in the afternoon from 2 to 5:15 p.m. The examination is being conducted in English and 12 Indian languages. Ahead of the examination, the National Testing Agency, NTA, conducted nationwide mock drill yesterday to verify all systems jammers, CCTV, frisking staff and biometrics. The NTA said that it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct of the examination. Our correspondent has the details.
3: Over 2 lakh personnel, including observers, coordinators, police forces and administrators, have been deployed for the secure, transparent and smooth conduct of the examination. A multi-layered security framework has been put in place to ensure a fair and transparent examination. It includes CCTV surveillance, Aadhaar-based biometric verification, GPS-enabled vehicles with police escort for the movement of the examination material, and end-to-end secure handling of confidential materials to designated locations under sealed protocols. The NTA is also actively monitoring social media platforms to curb misinformation and prevent malpractice. Saklayan Akhtar for Akashvani News, Delhi.
1: Union Minister of Ports, Shipping and Waterways, Sarbananda Sonowal, has said that 3 Indian-flagged crude oil tankers carrying over 8.6 lakh metric tons of cargo with 94 Indian crew members have successfully transited the Strait of Hormuz yesterday and are en route to India. These oil tankers are Desh Vaibhav, Desh Vibhor and Sanmar Herald. In a social media post, he said that under the decisive leadership of Prime Minister Narendra Modi, the government is working on highest priority to secure India's maritime interests. The India Meteorological Department has issued a red colour warning for extremely heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. It also predicted heavy to very heavy rainfall at isolated places over Assam and Meghalaya till Thursday. Northeastern states are expected to receive fairly widespread to widespread rainfall till the 26th of this month. As part of a series, People's Padma on Akashwani, we bring you a conversation with Professor Juzair Vasi, a pioneer in the field of semiconductors and solar photovoltaics. He has been honored with a prestigious Padma Shri.
4: India is emerging as one of the biggest major solar deployers, and I can see that we are going to also emerge as a major manufacturer of solar components.
1: To listen to the interview, tune in to 100.1 Akashwani Gold today at 10:30 a.m. You'll also listen to this interview on the News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. As part of our series, Prakriti Ki Baat, Akashwani Ke Saath, we bring you a discussion on the efforts of Jhumarmur Panchayat in Nagaon district of Assam, which has been recently awarded the National Panchayat Award in the Clean and Green Panchayat category. To listen to the conversation, tune in to 100.1 Akashwani Gold today at 9:10 a.m. You can also listen to this discussion on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. India A will take on Sri Lanka A in the Tri-Series cricket final, scheduled to be played in Dambulla today. The match will start at 10 in the morning. Smarting from an ill-tempered defeat in their previous match, India A will look to settle scores when they take on Sri Lanka A in the final, with teenage sensation Vaibhav Suryavanshi set to be in the spotlight once again. In FIFA World Cup, Germany defeated Ivory Coast 2-1 in Toronto, Canada and clinched a spot in the knockout phase at the tournament. For Germany, Dennis Undav scored twice. Earlier, the Netherlands secured a commanding 5-1 victory over Sweden in Group F match at NRG Stadium in Houston, United States. Yesterday, in another match, Brazil recorded their first win of the FIFA World Cup with a comfortable 3-0 victory over Haiti at the Philadelphia Stadium. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
5: Thank you, Sunil. NEET UG re-examination is the top story on dailies today. All hands on deck for NEET retest, writes Hindustan Times. 1.38 lakh CCTV, 51,000 jammers for leak-proof NEET today, headlines The Asian Age. The war between Iran and Israel, too, continues to dominate front pages of dailies. Iran closes Hormuz amid Israeli attacks on Lebanon, reads the Hindu headline. On the 12th International Day of Yoga 2026, the Pioneer writes that 6 lakh people will perform yoga today with Prime Minister Modi in Kolkata. Two studies led by AIIMS have found that yoga may improve women's hormone and insulin levels, reports the Times of India. An AI-enabled queue management system will be implemented in Kerala's Sabarimala Ayyappa Temple from November, reports the Hindu. In just over 3 months, from the end of February until early June, Indian records in athletics were broken 20 times, reveals the Indian Express. And finally, the ASI has made significant discoveries at Rakhigarhi, perhaps the largest site of the Indus Valley civilization, with the recovery of 8 skeletons and pottery offerings, reports the Tribune. DNA testing is underway. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. International Yoga Day being celebrated across the globe today. Prime Minister Narendra Modi leads the nation in practicing common yoga protocol from historic Red Road in Kolkata. Prime Minister to also commission 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra in Kolkata today. National Testing Agency to conduct NEET UG re-examination in India and abroad this afternoon. 3 Indian flagged crude oil tankers carrying over 8.6 lakh metric tons of cargo successfully crossed Strait of Hormuz. IMD issues red alert for extremely heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in cricket, India A to take on Sri Lanka A in tri-series final in Dambulla this morning. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
6: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नैन्सी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अभ्यास का किया नेतृत्व। कहा, मानव जीवन को निरंतर विकास के लिए प्रेरित करता है योग। आज आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले प्रशासन चौकस, कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए राज्य भर के 67 परीक्षा केंद्रों पर की गई है व्यापक तैयारियां। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, पुनरीक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी ढंग से पूरा करना आयोग की प्राथमिकता। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में आज से अगले 2 दिनों तक के लिए आंधी और बारिश का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और 12वीं रैंकिंग ओपन नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीते 4 स्वर्ण समेत 18 पदक। और अब समाचार विस्तार से। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। आज मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि योग मानव जीवन को निरंतर विकास और प्रगति के लिए प्रेरित करता है।
7: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
6: उन्होंने कहा कि योग के जरिए हम लोग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के प्रति अधिक मजबूत हो सकते हैं।
7: संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रियाओं और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है।
6: इधर राज्यपाल संतोष गंगवार ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। आज आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले प्रशासन पूरी तरह चौकस है। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए राजधानी रांची समेत राज्य भर के 67 परीक्षा केंद्रों पर व्यापक तैयारियां की गई हैं। विस्तृत ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
8: आज होने वाली नीट यूजी री एग्जाम 2026 को लेकर रांची समेत राज्य के सभी परीक्षा केंद्रों पर व्यापक सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां की गई हैं। रांची में 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं तथा सभी केंद्रों के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। परीक्षा से पूर्व कल जिला प्रशासन और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने सुरक्षा व्यवस्था, प्रश्न पत्रों की सुरक्षित ढुलाई और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया था। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को हाई अलर्ट जारी करते हुए परीक्षा केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के निर्देश दिए। साथ ही फोटोकॉपी दुकानों, साइबर कैफे और कोचिंग संस्थानों की विशेष निगरानी की जा रही है। प्रशासन ने परीक्षा के दौरान भीड़ जुटाने, सभा आयोजन, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
6: राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब 30 जून से 29 जुलाई तक BLO घर घर जाकर फॉर्म का वितरण करेंगे। हर मतदाता को अनिवार्य रूप से यह फॉर्म भरकर BLO को देना होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि पुनरीक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी ढंग से पूरा करना आयोग की प्राथमिकता होगी।
9: कितना भी झारखंड में कितना डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है, ईआरओ एईआरओ कंप्यूटर आपका एडजस्टमेंट का ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है। सोमवार से फील्ड लेवल पर प्रत्येक ब्लॉक लेवल पर आपका बीएलओ का ट्रेनिंग प्रारंभ होगा, ताकि एनुमरेशन फेस में किसी भी पात्र नागरिक के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उसका प्रक्रिया पूरा तरह से डिटेल बताएगा, इससे एक त्रुटि रहित मतदान सूची निर्माण करने के लिए सभी बीएलओ भी सहयोग करेंगे।
6: झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिवंगत संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को पद्म भूषण से सम्मानित करेंगी। नागरिक अलंकरण समारोह में यह सम्मान उनके पुत्र और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ग्रहण करेंगे। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रय का जलावतरण करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
10: नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने वाले इन पोत का विकास नौसेना युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोत का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइल और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रय तटीय रक्षा के लिए टॉर्पीडो, रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा कि इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
6: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर शिरडी पहुंचकर साईं बाबा मंदिर में दर्शन पूजा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक स्थलों से नई ऊर्जा और सेवा की प्रेरणा मिलती है। साथ ही उन्होंने झारखंड वासियों की सुख शांति, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की कामना की। आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। मौके पर उपायुक्त ने अफवाहों से सावधान रहने और स्थानीय थाना से समन्वय स्थापित कर निर्धारित रूट से ही जुलूस निकालने के निर्देश दिए। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में आज से अगले 2 दिनों तक के लिए आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इस दौरान रांची, रामगढ़, हजारीबाग और बोकारो समेत 17 जिलों में तेज हवा और मेघ गर्जन होने की संभावना है। 12वीं रैंकिंग ओपन नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 18 पदक जीते। इनमें 4 स्वर्ण, 5 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से प्रकाशित होने वाले अधिकतर अखबारों ने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और दोबारा हो रही नीट परीक्षा से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, रिन पास का अध्ययन बताता है कि योग अभ्यास से छूट सकती है स्मार्टफोन की लत। हिंदुस्तान की हेडलाइन है, नीट परीक्षा को लेकर रिम्स मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट आज होंगे नजरबंद। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, एपीपी के 134 पदों के लिए जारी रिजल्ट पर विवाद, जेपीएससी सदस्यों ने नहीं किया हस्ताक्षर, फिर भी रिजल्ट जारी। दैनिक जागरण लिखता है, राज्यसभा चुनाव परिणाम के बाद एक ही दिन में टूट गया कांग्रेस का गुरूर, राजद माले के सामने नतमस्तक हुई पार्टी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अभ्यास का किया नेतृत्व, कहा मानव जीवन को निरंतर विकास के लिए प्रेरित करता है योग। आज आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले प्रशासन चौकस, कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए राज्य भर के 67 परीक्षा केंद्रों पर की गई है व्यापक तैयारियां। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, पुनरीक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी ढंग से पूरा करना आयोग की प्राथमिकता। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में आज से अगले दो दिनों तक के लिए आंधी और बारिश का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और 12वीं रैंकिंग ओपन नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीते 4 स्वर्ण समेत 18 पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
11: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निकल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
12: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉव पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब, मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं। बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है क्या, हम कूड़ा कचरा उसमें डालें। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुंचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं।

0: अच्छा बच्चों, सब लोग आ गए हैं ना?
1: हाँ, आ गए हैं।
0: आप किस स्कूल में पढ़ते हैं?
1: मारुति संगीत पाठशाला।
0: मारुति संगीत पाठशाला के बच्चे हैं आप लोग?
1: हाँ।
0: तो आज हम एक नया गाना सिखाएंगे।
1: हाँ, सिखाएंगे।
0: किसने लिखा है मालूम है? दोड्ड रंगे गौड़ा। किसने लिखा है ये गाना?
1: दोड्ड रंगे गौड़ा।
0: तो आप गाना सीखने के लिए तैयार हैं?
1: हाँ, तैयार है।
0: इस गाने का शीर्षक है कडल हक्कीगळु। क्या है?
1: कडल हक्कीगळु।
0: तो पहले क्या करना, इस गाने को लिख लेना है ना?
1: हाँ।
0: तो बाद में हम गा सकते हैं, नहीं तो नहीं गा सकते है ना?

0: पहले क्या करना, पेन पेंसिल पेपर सब उठा के अपने आगे रख लेना है। रख लिया है?
1: हाँ।
0: अच्छा तो मैं डिक्टेट करती हूँ, आप हाँ। सब लिख लीजिए। हाडू तिहवो हारु तिहवो,
2: हारु तिहवो हारु तिहवो,
0: कडल करेय खग कुला,
2: कडल करेय खग कुला,
0: यनी तो मुगिला,
2: यनी तो मुगिला,
0: उद्द अगला,
2: उद्द अगला,
0: जी की दनी तू,
2: जी की दनी तू,
0: बांदड़ा
2: बांदड़ा।
0: अच्छा तो एक पहला स्टैंजा है, हाँ?
1: हाँ।
0: आगे का स्टैंजा है, बान लोक नगुव नाका,
2: बान लोक नगुव नाका,
0: हारो हक्की पालीगे,
2: हारो हक्की पालीगे,
0: रेक्के बीसी धैर्य सूसी,
2: रेक्के बीसी धैर्य सूसी,
0: चुक्की मुट्टो हम्मीगे,
2: चुक्की मुट्टो हम्मीगे।
0: लिख लिया?
1: हाँ।
0: सब लोग लिख लिया?
1: हाँ।
0: अच्छा तो अगला स्टैंजा, दूर दूर हारी हारी,
2: दूर दूर हारी हारी,
0: व्योम कानुआ बगे,
2: व्योम कानुआ बगे,
0: हसीव मरेसी,
2: हसीव मरेसी,
0: वांछे मेरेसी,
2: वांछे मेरेसी,
0: दिगंत सेरो लघु बगे,
2: दिगंत सेरो लघु बगे।
0: तो अब बच्चा आखिर स्टैंजा, हाँ। वो भी सुना दो,
1: हाँ।
0: लिख लेते हैं,
1: हाँ।
0: याव नाडो यंथ काडो,
2: याव नाडो यंथ काडो,
0: हारो आसे हक्कीगे,
2: हारो आसे हक्कीगे,
0: मुक्त गगन नूरु काल,
2: मुक्त गगन नूरु काल,
0: ईजो शक्ति रेक्केगे,
2: ईजो शक्ति रेक्केगे।
0: तो सब लोग एक गाना तो लिख लिया,
1: हाँ।
0: अब इसे कैसे गाना, किस तरह गाना, ये तो मालूम होना है ना,
1: हाँ।
0: अच्छा जी जरा चुपके रहना, गीता जी आ रही है दीदी,
1: हाँ?
0: उसी को हम रिक्वेस्ट कर देंगे,
1: हाँ?
0: हाँ। गीता जी आइए यहाँ, हमारे बच्चे सब ये गाना सीखना चाहते हैं, पहले इसके आरोह अवरोह क्या है ये बताएंगे,

0: कर्नाटक संगीत में ये चक्रवाक राग होता है और हिंदुस्तानी में इस राग को कहते हैं आहिर भैरव। इसका ताल है कर्नाटक संगीत में चतुरस्र जाति एक ताल तीसर नड़े। इस ताल को हिंदुस्तानी में कहते हैं दादरा। तो अब भैया विश्वनाथ नागपुर जी भी यहाँ आए हैं, वे तबला बजाने के लिए तैयार होके बैठे हैं। तबला बजे के दिखाते हैं ना?
1: धा दिन्ना धा तिन्ना धा दिन्ना धा तिन्ना धा दिन्ना धा तिन्ना धा दिन्ना धा तिन्ना।
0: अब आप लोगों को मालूम हो गया ना यह गाना कौन सी राग पर आधारित है। अब दीदी आपको सिखाती है ये गाना।
2: ताकी ता ताकी ता ताकी।

हाँ, दूसरा अंतरा का धुन कैसा है ये मालूम हो गया, मगर जो स्वर आते हैं वो नहीं मालूम हुआ है ना। तो गीता दीदी स्वर को भी सिखाती हैं।

ये आखिर का अंतर जो है ना, वो पहली अंतर था ना, बान लोक नगुना का, उसी के जैसे ही है। अच्छा तो गाते हैं।

0: तो बच्चों, अब इस पूरे गाने की धुन आपको याद होगी, है ना? अब घर पे जाके खूब प्रैक्टिस करना, तो आप सब लोगों को ये गाना बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगी, करेंगे ना? अच्छा बच्चों, तो नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे संवेद गान शिक्षा कन्नड़ में, बोल थे हाडुती हावु हरुति वाहु। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और एफएम 110.5 मेगाहर्ट्स पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम रसरंजन।

0: ओडिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
5: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: इस संदेश के बाद आप सबका स्वागत है कार्यक्रम रसरंजन में। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त रचना, आप सबको मेरा नमस्कार। आज का ये कार्यक्रम जो है हम अपने पिता के लिए समर्पित करते हैं, क्योंकि आज फादर्स डे है और फादर्स डे सिर्फ रिश्तों का उत्सव नहीं है बल्कि उन अनकहे संघर्षों और त्याग को याद करने का अवसर है। और हर साल फादर्स डे मनाया जाता है और इस साल भी फादर्स डे है जो 21 जून यानी आज के दिन मनाया जाएगा। इस दिन का उद्देश्य पिता के प्रेम, त्याग, मार्गदर्शन और परिवार के प्रति उनके योगदान का सम्मान करना होता है सच में। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन अपने पिता के सम्मान के लिए चुनें, वैसे आप हर दिन अपने पिता को खुश कर सकते हैं, उनका सम्मान कर सकते हैं। वैसे भी जो एक पिता हैं, बच्चे उनके आँखों का तारा ही होते हैं।

जिस तरह से पिता के लिए उसके बच्चे उनकी आंखों का तारा होते हैं, वो उन्हें सूरज तारा कहते हैं और चाहते भी हैं कि उनके बच्चे उनका नाम खूब रोशन करें, उसी तरह से बच्चों के लिए भी उनके पिता उनके पहले रोल मॉडल होते हैं। वे उनके सबसे बड़े समर्थक और जीवन में सही राह दिखाने वाले होते हैं। वो अपने बच्चों को अपने लक्ष्य के लिए प्रेरित करते हैं और ऐसा भी हम मानते हैं। और पता है हमें कि हर पिता जो है अपना दर्द सहकर मुस्कुराते हैं और उनका आत्मविश्वास बच्चों को उनके जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। हर पिता ये चाहता है कि उसका बच्चा आगे जाकर उनका नाम रोशन करे और कोई बड़ा काम करे।

दोस्तों आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: संदेश के बाद आपका फिर से स्वागत है कार्यक्रम रसरंजन में। और आज के रसरंजन में हम बातें कर रहे हैं पापा की। जी हाँ, क्योंकि आज फादर्स डे है। वैसे तो पिता के लिए सारे बच्चे समान होते हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी, लेकिन बेटी का रिश्ता जो है अपने पिता से अलग तरह का ही होता है। एक बेटी के लिए उसके पापा उसके हीरो होते हैं। उसकी पूरी दुनिया अपने पापा में ही समाई होती है, जहाँ सबको लगता है कि पापा सख्त हैं, उनसे बात नहीं कर सकते या बच्चों को डर लगता है, वहीं वो सख्त पिता अपनी बेटी के प्यार के आगे पिघल जाता है। और एक बेटी के लिए भी दुनिया में सबसे प्यारा उसके पापा ही होते हैं।

वैसे तो हर दिन पिता का सम्मान का ही होता है, लेकिन फादर्स डे एक खास अवसर होता है जो हमें याद दिलाता है कि हमें अपने पिता के हर काम के लिए उनके प्रति अपना प्यार, सम्मान और आभार व्यक्त करना है। जी हाँ, पापा का साथ हो तो किसी और की जरूरत भी नहीं होती। वो अभिभावक होने के साथ साथ अपने बच्चों के साथ एक दोस्त की भूमिका भी निभाते हैं। हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े रहते हैं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, वे अपने बच्चों का हर कदम पर साथ देते हैं। वे कभी दूसरे बच्चों से अपने बच्चों की तुलना नहीं करते, हमेशा सकारात्मक सोच के साथ मेहनत करने और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। और पिता जो है वो कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते हैं।

पिता भले ही हमेशा अपनी भावनाओं को शब्दों में ना कहें, लेकिन उनके काम, उनका प्यार और देखभाल को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। पिता की जिम्मेदारियां भले ही कम दिखती हों, लेकिन वे हमारे सपनों और कामयाबियों की नींव बनती हैं। पिता का मार्गदर्शन एक लाइट हाउस की तरह होता है, जो जिंदगी में हमें सही दिशा दिखाता है। जी हाँ श्रोताओं, इसी के साथ ही आज का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब अपनी दोस्त रचना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

इसी गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रस रंजन अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। कलाकार हैं जीएन उर्मा। इनसे आज आप सुनेंगे गिटार पर राग नटभैरव में आलाप और जोड़ के बाद दो गतें। दोनों ही गतें तीन ताल में निबद्ध हैं। संगतकार हैं तबले पर श्यामानंद झा और हारमोनियम पर श्यामा प्रसाद नियोगी।

शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे जी एन उर्मा से गिटार पर राग नट भैरव में आलाप और जोड़ के बाद दो गतें, दोनों ही गतें तीन ताल में निबद्ध थी। संगतकार थे तबले पर श्यामानंद झा और हारमोनियम पर श्यामा प्रसाद नियोगी। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओ, हम आपको अब आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दे दें। अब से थोड़ी ही देर में यानी 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम बाल सभा। इस कार्यक्रम में चर्चा होगी रोज करे योग दूर रहे रोग। सूत्रधार हैं अवधेश कुमार और शिल्पी प्रस्तुति है गौरव कुमार पांडे की। जोहार रांची कार्यक्रम आप सुनते हैं 10:30 पर। अपनी पसंद के गीत आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी पसंद में 11:30 से। महिलाओं का कार्यक्रम गृह लक्ष्मी हम लेकर आएंगे दोपहर 12:00 12:30 पर। भारत भारती के अंतर्गत आप सुनेंगे आंचलिक अंगिका। इसमें आज आप सुनेंगे मैथिली लोकगीत, कलाकार हैं रामसिया देवी और साथी। लोक रंग के अंतर्गत आप सुनेंगे खड़िया लोकगीत, कलाकार हैं वंदना टेटे और साथी। 1:00 हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी समाचार और प्रादेशिक समाचार 1:10 पर प्रसारित होंगे। अनुरंजनी के अंतर्गत उपशास्त्रीय संगीत आप सुनेंगे 1:20 पर, कलाकार हैं अनीता सेन। सुगम संगीत आप सुनेंगे 1:45 पर। इसमें आज आप सुनेंगे आशा भोसले की गाई हुई गजलें। 2:00 मिड डे न्यूज और 2:15 पर दोपहर समाचार प्रसारित होंगे और जय भारती ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 2:30 पर। 3:00 फिल्म संगीत और 3:25 पर रांची मेलोडीज। ये थे आज प्रसारित होने वाले हमारे कुछ मुख्य कार्यक्रम।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा। सूत्रधार है अवधेश कुमार और शिल्पी, प्रस्तुति है गौरव कुमार पांडे की। लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: जय हिंद बच्चों।
1: सुबह सुबह जब सूरज आए, सुनहरी किरणें संग मुस्काए, आओ बच्चों योग करें, स्वस्थ और निरोग रहें।
2: बच्चों दौड़ो कूदो खेलो गाओ, योग को अपना मित्र बनाओ, एकाग्रता का दीप जलाकर सपनों की ऊंचाई पाओ। तो बच्चों आज योग दिवस है।
1: और भैया हमें ऐसा लगता है कि जितने बच्चे आज हमारे सामने हैं, सबने योग किया होगा, है ना बच्चों? और बच्चों योग से होने वाले फायदे आपको पता है, क्यों सही कह रही हूँ ना बच्चों? योग एक ऐसी आदत है जिसे दिनचर्या में शामिल करेंगे आप तो शारीरिक रूप से मजबूत और मानसिक रूप से शांत, और हाँ पढ़ाई में एकाग्रता भी बनी रहेगी।
2: और बच्चों आज योग दिवस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ योग दिवस के दिन ही हमें योग करना है, हमें प्रतिदिन योग करना है, यानी कि जैसा कि दीदी ने कहा कि अपने दिनचर्या में इसे शामिल करना है। और कहा भी जाता है बच्चों कि योग भगाए रोग, तो अगर आपको स्वस्थ रहना है, निरोगी रहना है तो योग को अपनाएं। और बच्चों योग केवल व्यायाम नहीं है बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने का एक तरीका है। हाँ, तो अगर आप नियमित योग करेंगे तो रोग आपके पास फटकेगा भी नहीं, है ना?
1: हाँ बच्चों, बढ़ते उम्र के लिए बहुत सारे आसान योग हैं जो आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं, जैसे कि तड़ासन, वृक्षासन, मार्जरी आसन,
2: तितली आसन, भुजंग आसन, स्वासन, इतने सारे योग हैं बच्चों जिसे करने से मन प्रसन्न और शरीर में ताजगी बनी रहती है, शरीर को ऊर्जा मिलती है। और हाँ बच्चों, अगर आप सूर्य नमस्कार करना सीख लें तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, पता है क्यों?
1: हाँ भैया, क्योंकि यह संपूर्ण व्यायाम है, इसमें 12 अलग अलग आसन शरीर की हर मांसपेशी और जोड़ पर काम करते हैं जिससे शरीर मजबूत और लचीला बनता है।
2: बच्चों योग आपको अनुशासन, धैर्य और आत्मविश्वास सिखाता है। जब आप प्रतिदिन कुछ मिनट योग करेंगे तो आपके भीतर सकारात्मक सोच विकसित होगी और आप अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ भी पाते हैं और उसको संप्रेषित भी कर पाते हैं।
1: हाँ बच्चों, जो आपके साथी नियमित योग करते हैं उनसे पूछिएगा, वो मौसम के बदलने से बीमार भी कम पड़ते हैं, थकते कम हैं, इसलिए वो स्कूल में ज्यादा उपस्थित रहते हैं। आपने ऐसा देखा होगा बच्चों।
2: हाँ, तो देखा ना बच्चों, योग करने के कितने फायदे हैं। बहुत सारे फायदे हैं और बच्चे इन चीजों को खूब अच्छी तरह से समझते भी हैं। दीदी बच्चे करते भी हैं योग, क्यों बच्चों करते हो ना? लेकिन एक बात सभी बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि योग की शुरुआत जब भी करें, शुरू में योग आसान तरीके से और सरल आसन का अभ्यास करें,
1: साथ में कुछ छोटी छोटी सावधानी भी बरतें, जैसे अभी मौसम है वो गर्मी का मौसम है इसलिए खूब पानी पिएं, मौसमी फल खाएं, तरबूज, खीरा, ककड़ी, नारियल पानी पिएं, और हाँ सबसे जरूरी बात है कि जंक फूड से बचें, डिब्बे बंद चीजों का बिल्कुल नहीं खाएं और यह स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। और भैया हमने ये बात बच्चों को हमेशा समझाते हैं, है ना?
2: और शरीर को स्वस्थ रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि बाहरी खेल खेलें बच्चों, जैसे अपने दोस्तों के संग क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, तो इन खेलों को खेलने से शरीर और मन दोनों ही प्रसन्न रहता है। साथ ही साथ जब आप खेल के मैदान में जाएंगे तो अन्य बच्चों से मेलजोल भी आपका बढ़ता है, टीम की जो भावना है वो भी विकसित होती है और आप एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। और इन खेलों के बहाने आप पढ़ाई से संबंधित सवाल जवाब करना भी सीख लेते हैं या जानते हैं, एक दूसरे से अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप अपने दोस्तों से उसको इसी दौरान पूछ भी लेते हैं। तो खेलने के जो आउटडोर खेल है दीदी, तो इसके खेलने के बहुत सारे फायदे हैं, सिर्फ शारीरिक रूप से ही आप स्वस्थ नहीं होते हैं बल्कि मानसिक रूप से भी ये आपको स्वस्थ रखता है।
1: यानी योग और खेल दोनों जरूरी हैं बच्चों आपके लिए।
2: बच्चों योग करना बेहद जरूरी है, इसे आपने जान लिया, लेकिन एक और काम है जिसे करके आपको खुशी मिलेगी, उससे प्रेम भी गहरा होगा। अब सोचिए कि वो कौन सा काम है।
1: अरे अरे ज्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि वो बहुत छोटा सा काम है लेकिन उसका असर बहुत बड़ा है बच्चों। वैसे एक इशारा मैं कर देती हूँ, वो है आपका सच्चा मित्र,
2: और वो है नन्हा सा पौधा। हाँ बच्चों, यदि आप एक पौधा लगाएं और उसकी सही देखभाल करें तो वो जल्द ही बड़ा होने लगता है, क्योंकि वो आपसे दोस्ती करना चाहता है, उसे भी आपके साथ का इंतजार रहता है। पानी डालने का, उसके पास बैठने का, और सबसे बड़ी बात कि वो सभी की निस्वार्थ सेवा भी करता है।
1: बिल्कुल सही बात है बच्चों। तो पेड़ से ही, क्योंकि पेड़ से ही हमें शुद्ध हवा, भोजन, दवा, कागज, फल और सब्जियां मिलती है, इसलिए इसे हम प्राणवायु भी कहते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने में हमेशा ये साथ देता है। बच्चों आपने देखा है ना, जब बहुत अधिक गर्मी पड़ती है तो हमें अपने पास बुलाकर ठंडी छांव में राहत भी देता है पेड़। बच्चों आपने भी गौर किया होगा, जहां पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं वहां बारिश भी ज्यादा होती है। वर्षा वृक्षों के लिए जीवन दायनी होती है।
2: आपने ये भी देखा होगा बच्चों कि जहां ज्यादा पेड़ लगे होते हैं वहां ज्यादा बारिश होने पर भी वहां की मिट्टी कटकर बहती नहीं है, बल्कि वर्षा का पानी मिट्टी में रिसता है यानी सोख लेता है, और तेज बहाव में भी पेड़ अपनी जड़ों के माध्यम से उसे अवशोषित करते हैं।
1: हाँ बच्चों, बारिश और वृक्ष का गहरा और अटूट संबंध है। यह संबंध मुख्य रूप से जल चक्र और पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित होता है।
2: बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पाएंगे कि पेड़ पौधों का हर अंग प्रकृति को संतुलित करने में अपना योगदान देता है। जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां, टहनियां, शाखाएं भी वातावरण में मौजूद अनावश्यक शोर यानी ध्वनि प्रदूषण को रोकती है।
1: बच्चों पेड़ पौधे सिर्फ हम इंसानों को ही नहीं बल्कि जीव जंतु, बड़े जानवरों, पक्षियों, कीट पतंगों को भी आश्रय देते हैं। सोचिए, अगर आपका सच्चा मित्र ये पेड़ न होता, आप उससे दोस्ती कैसे कर पाते? देख रेख नहीं करेंगे उसकी तो इसका यानी कि इन जानवरों का, पशु पक्षियों का आशियाना कैसे बनता?
2: बच्चों उदास मत होइए, लेकिन हाँ बस एक काम जरूर करना सीखिए कि सभी दोस्त मिलकर आज ये संकल्प लीजिए कि अपने पसंद का एक पौधा लगाएंगे, है ना? और देखिए मौसम भी कितना अनुकूल है, रोज बारिश हो रही है, और ऐसे में पौधा जल्द ही लग जाएगा।
1: हाँ बच्चों, अब आप सोचते होंगे कि इतना पौधा लाऊंगा कहाँ, लगाऊंगा कहाँ? तो आप अपने विद्यालय परिसर, सार्वजनिक स्थल, पार्क, मंदिर के प्रांगण या आसपास के खुले जगहों पर भी आप लगा सकते हैं।
2: और सबसे अच्छी बात तो ये है बच्चों कि आप दोस्तों को उपहार, जैसे जन्मदिन हो या विशेष अवसर हो, उस पर आप पौधों को उपहार स्वरूप उन्हें दे सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिएगा हमारी जो धरती है, हमारी जो धरा है, वो खिलखिला उठेगी। तो दीदी बातें तो बहुत सारी हो गई और बच्चों के लिए भी ढेर सारी जानकारी और भी है, लेकिन उससे पहले हम बच्चों का अगर मनोरंजन करवा दें तो कैसा रहेगा?
1: बहुत अच्छा रहेगा भैया, क्योंकि बच्चे भी अब हमारे बालगीत सुनने के लिए उत्साहित हैं।
2: तो चलिए सुनते हैं बच्चों ये बालगीत।

0: तो बच्चों, कैसा लगा ये गीत? पसंद आया ना? तो अब आप लोगों की बारी है ना? तो हमारे बच्चे भी तैयार हैं दीदी, तो चलिए उनसे सुनते हैं।
1: आज मैं मान्या श्रुति एक कविता के माध्यम से ऐसे विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो स्वस्थ जीवन का आधार है, और वह है योग। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम ही नहीं, बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा के संतुलन का मार्ग भी है। योग केवल आसनों का क्रम नहीं, यह स्वयं से मिलने की राह है, जहां श्वासों की धीमी सरगम में मन को अपनी ही चाह है। जब दुनिया का शोर थम जाता है और भीतर सन्नाटा बोलता है, तब योग के शांत क्षणों में मन स्वयं को टटोलता है। यह शरीर को संतुलन देता है, विचारों को नई दिशा देता है, बिखरे हुए जीवन के हर स्वर को एक मधुर एकता देता है। योग सिखाता है रुकना, समझना और स्वीकारना, अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानना और निखारना। इसलिए योग केवल अभ्यास नहीं, जीवन जीने की कला है। जो इसे हृदय से अपनाता है, उसके लिए हर दिन एक नई प्रभात है। धन्यवाद।
2: नमस्ते, मैं समीक्षा, कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। आज मैं अपनी एक स्वरचित कविता आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मेरी हिंदी शिक्षिका। मेरी हिंदी शिक्षिका शब्दों की दुनिया में उजाला फैलाती हैं। मेरी हिंदी शिक्षिका हर दिल को छू जाती हैं। अक्षर अक्षर में अर्थों का दीप जलाती हैं। कठिन से कठिन पाठ भी हंसकर समझाती हैं। उनकी वाणी में मीठी सी सरलता रहती है। हर सवाल का हल बड़े प्यार से दे जाती हैं। व्याकरण, कविता, कहानियों का सौंदर्य दिखाती हैं। भाषा ही नहीं, जीवन जीने की राह बताती है। हम सीखते हैं उनसे संस्कारों की परिभाषा, निष्ठा, प्रेम और मेहनत की असली भाषा। गुरु का रूप बनाकर जब कक्षा में आती हैं, हम सबके मन में नई ऊर्जा जगाती हैं। धन्य है वे जिनसे हमने हिंदी का मान सीखा, शब्दों का सम्मान और ज्ञान का सम्मान सीखा। मेरी हिंदी शिक्षिका, आपके बिना था ये सफर अधूरा सा। आपने तो हमें भाषा से जोड़कर पूरा है किया। धन्यवाद।
3: मेरा नाम अश्विनी दित्या है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज मैं यहाँ कोई भाषण देने नहीं, बल्कि आप सभी के साथ अपना एक बहुत ही मज़ेदार और सच्चा अनुभव साझा करने जा रही हूँ। एक ऐसी गलती जिस पर आज भी जब मैं सोचती हूँ तो मुझे और मेरे दोस्तों को खूब हंसी आती है, लेकिन इस हंसी के पीछे छुपा था जिंदगी का बहुत बड़ा ज्ञान, जिसे मैं आज तक नहीं भूली। बात तब की है जब मैं कक्षा 8वीं में थी। हमारे स्कूल में एक एक्सटेम्पोर यानी बिना तैयारी के तुरंत आकर बोलने की प्रतियोगिता थी। मैंने सोचा कि मैं तो हमेशा बढ़िया बोलती हूँ, तो बिना तैयारी के भी स्टेज पे झंडे गाड़ दूंगी। मुझे चिट निकालने को कहा गया और मेरे चिट पर जो टॉपिक निकला वह था विज्ञान के चमत्कार। स्टेज पर माइक के सामने आते ही मेरा कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर था। मैंने पूरे जोश में आकर पहली ही लाइन बोली, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे दोस्तों, आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि इंसान बिना परों के आसमान में उड़ रहा है, और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है थॉमस अल्वा एडिसन को, जिन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। मेरा इतना बोलना था कि पूरे हॉल में एक सन्नाटा छा गया। सभी टीचर्स ने अपना सर पकड़ लिया और सामने बैठे मेरे दोस्त बेंच थपथपा कर हंसने लगे। वो ऐसे हंस रहे थे कि जैसे उन्हें कोई कॉमेडी शो मिल गया हो। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि सब क्यों हंस रहे थे। मैंने पूरे कॉन्फिडेंस में दो बार और दोहरा दिया कि हाँ दोस्तों, राइट ब्रदर्स ने तो बस उनका बल्ब देखकर लाइट जलाई थी। जब मैं स्टेज से नीचे आई तब मेरे दोस्तों ने हंसते हंसते रोते हुए मुझे बताया कि मैंने राइट ब्रदर्स और एडिशन के आविष्कार का पूरा दही वड़ा कर दिया है। मैंने शर्म के मारे वहीं जमीन में धस जाना चाहा। उस दिन मुझे समझ आया कि मेरा ओवर कॉन्फिडेंस ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने बिना पूरी जानकारी के सिर्फ अच्छा दिखाने और सबसे आगे निकलने के चक्कर में स्टेज पर इतना बड़ा ब्लंडर किया। इस मज़ेदार भूल ने मुझे सिखाया कि जिंदगी में मानसिकता हमेशा सीखने वाली होनी चाहिए, ना कि दिखावे वाली। जब तक आपके पास अंदर सही ज्ञान और सच्चाई ना हो, तब तक बाहर का दिखावा आपको सिर्फ हंसी का पात्र बनाता है। आज 10वीं कक्षा में आने के बाद भी जब भी मैं कुछ बोलती हूँ तो पहले अपनी जानकारी को अंदर से मजबूत करती हूँ, फिर बाहर व्यवहार में लाती हूँ। धन्यवाद।
4: नमस्कार, मैं प्राची आज आप सबके समक्ष प्रकृति और मानव जीवन के अटूट संबंध को दर्शाती पेड़ विषय पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पेड़ पेड़ केवल पेड़ नहीं होते, धरती की मौन प्रार्थना होते हैं। धूप की तपती राहों में छाया बनकर खड़े रहते हैं। पत्थर खाकर भी फल देते, कटकर भी उपकार करते हैं। अपने जीवन का हर क्षण दूसरों के नाम करते हैं। जड़ों से धरती को थामे रखते, शाखाओं से आकाश छूते हैं। हमें सिखाते हैं हर पल कैसे झुककर भी ऊंचा जीते हैं। जब कोई पेड़ गिरता है, केवल लकड़ी नहीं टूटती, टूटती है एक शीतल छांव, एक चिड़िया की दुनिया छूटती। आओ पेड़ों का मान करें, इनका हर संभव सम्मान करें, क्योंकि पेड़ बचेगा तभी तो धरती पर जीवन के गीत गूंजेंगे। धन्यवाद।
0: वाह, बच्चों ने तो बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई दी थी।
5: हाँ भैया, और अब हमारी बारी है कि हम बच्चों को एक जानकारी देंगे।
0: और जानकारी क्या है दीदी?
5: वो जानकारी है कि इंद्रधनुष बनता है आखिर कैसे।
0: वाह, तो ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी है। तो बच्चों, प्रकृति की हर रचना है निराली, इंद्रधनुष की छटा सबसे मतवाली।
5: और भैया, बच्चों के चेहरे की मुस्कान ये बयां कर रही है कि इंद्रधनुष को देखना खूब भाता है बच्चों को, है ना बच्चों?
0: हाँ, बारिश के बाद अचानक आसमान में रंग बिरंगा सुंदर सा इंद्रधनुष, और आप नन्हे बच्चे उसे देखकर उछल कूद करने लगते हैं, है ना? चिंटू रोहन को दौड़ाकर बुला लाता है कि देखो देखो देखो कितना सुंदर नजारा है आसमान में।
5: तो वहीं सबसे बड़ा भैया जो सौरभ है, जल्दी से मोबाइल के कैमरे में उसे कैद करना चाहता है। क्यों बच्चों, सही बात है ना?
0: हाँ दीदी, इंद्रधनुष देखने की चाह हम कैसे भूल सकते हैं। अपना बाल मन भी अक्सर ये सवाल पूछता है कि आखिर ये बनता कैसे है, बारिश के बाद ही आसमान में क्यों दिखता है। याद है ना दीदी अपना बचपन?
5: बिल्कुल याद है भैया, और हमारे जमाने में तो मोबाइल भी नहीं था। हम भी घर के छत पर चढ़कर बड़े बुजुर्गों से या अपने शिक्षक से जानते थे कि भाई ये इंद्रधनुष कब और कैसे बनता है।
0: तो चलिए हम इस पहेली को आज अपने बच्चों को बताते हैं। बच्चों, सूर्य का प्रकाश सफेद दिखाई देता है ना, लेकिन वास्तव में ये 7 रंगों से मिलकर बनता है।
5: हाँ बच्चों, जब बारिश के बाद हवा में छोटी छोटी पानी की बूंदे तैरती है, तब सूर्य की किरणें उन बूंदों में प्रवेश कर जाती है। बच्चों, जैसा कि भैया ने कहा कि सूर्य का प्रकाश में 7 रंग के रंग मौजूद होते हैं, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, जिसे हम सब देखते हैं। इन रंगों का पता प्रिज्म के जरिए पता चलता है। इंद्रधनुष असल में प्रकृति का प्रिज्म है। दरअसल पानी की छोटी छोटी बूंदे पारदर्शी प्रिज्म का काम करती है। जब सूर्य का प्रकाश उससे होकर गुजरता है तो वो 7 अलग अलग रंगों में टूट जाता है। इसी वजह से हमें इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है।
0: तो बच्चों, अगली बार जब बारिश के बाद धूप निकले तो छत पर जाकर आसमान की ओर जरूर देखना। शायद आज ही प्रकृति आप सभी बच्चों को ये रंग बिरंगा उपहार दिखा दे, और हमें भी बताइएगा कि कैसा लगा। तो बच्चों, ये इंद्रधनुष के बारे में जानकारी थी, और अब एक और ही बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, और वो जानकारी है बच्चों कि अजनबी से रहें सावधान, अपनी सुरक्षा का रखें ध्यान।
5: बच्चों, क्योंकि आप में से अभी कई ऐसे बच्चे हैं जो बहुत छोटे हैं, उन्हें यह मालूम नहीं है कि किससे सावधान रहना है और कैसे अपनी सुरक्षा करनी है।
0: हाँ बच्चों, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। आप भोले हैं, कई लोगों से मिलते हैं जो नए व्यक्ति भी होंगे, लेकिन सब पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए।
5: हाँ बच्चों, यदि कोई अजनबी आपको चॉकलेट, खिलौना, मोबाइल या मोबाइल में गेम दिखाए, या पैसे दे, या कोई उपहार में कोई आपके पसंद का कोई चीज दे, तो आप उसे स्वीकार न करें, या अपने साथ स्कूटी, साइकिल पर चलने को कहे तो उसे आप ना कहना सीखें। और हाँ, जब आप असहज महसूस करें तो तुरंत 112 नंबर पर कॉल करें। और भैया हम बच्चों को आज बताना चाहेंगे कि जब हमारे बच्चे छोटे हों या बड़े, उन्हें अपने घर के माता पिता किसी भी एक आदमी का नंबर अपने पास जरूर रखना चाहिए और उसे याद करके रखना चाहिए बच्चों,
0: क्योंकि वो कभी मुसीबत के समय में काम आ सकता है और जिसकी सूचना आप तुरंत अपने परिवार को दे सकते हैं।
5: बच्चों एक बात और कहना चाहूंगी कि अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे घर में कौन कौन से सदस्य रहते हैं, अपने घर का टेलीफोन नंबर, परिवार की जानकारी किसी अजनबी को न दें, तथा कोई भी झांसा जैसे आपको वो अजनबी देता है तो परिवार के लोग जैसे बीमार हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, ऐसे बहुत सारे बहाने आपको बनाएंगे, लेकिन आप उनसे घबरा कर उनके साथ मत चले जाइएगा, बल्कि आप अपनी बुद्धि से काम कीजिएगा, यानी कि जैसा कि भैया ने कहा, आप तुरंत अपने घर पे फोन करिएगा।
0: हाँ बच्चों, याद रखिए कि सतर्कता ही सबसे बड़ी कुंजी है और अपनी सुरक्षा कैसे, कब और किस परिस्थिति में करनी है उसका हमेशा ख्याल रखिए। हाँ बच्चों, अजनबी से रहें सावधान, अपनी सुरक्षा का रखें ध्यान, समझदारी निभाएंगे तो सुरक्षित जीवन पाएंगे।
5: और भैया हमने बच्चों को इतनी अच्छी जानकारी दी और अब
0: बच्चों हर हफ्ते हम आपको एक प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में जानकारी देते हैं, तो आज हम जिस प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं वो है स्वर्गीय महाराजा रणजीत सिंह।
5: बच्चों महाराजा रणजीत सिंह भारत के इतिहास के महान शासकों में से एक थे, उन्हें शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। वे सिख साम्राज्य के संस्थापक थे और अपने वीरता, न्यायप्रियता और कुशल प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे।
0: बच्चों महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को जो वर्तमान पाकिस्तान में है वहां हुआ था। उनके पिता महासिंह सुकरचिया मिसल के प्रमुख थे। बचपन में चेचक होने के कारण उनकी एक आंख की रोशनी चली गई थी, लेकिन इससे उनके साहस और आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं आई।
5: जब रणजीत सिंह केवल 12 वर्ष के थे तब उनके पिता का निधन हो गया। इसके बाद उन्होंने कम उम्र में ही अपने राज्य की जिम्मेदारी संभाल ली। वे बचपन से ही बहादुर, बुद्धिमान और नेतृत्व क्षमता से भरपूर थे।
0: बच्चों 18वीं शताब्दी के अंत में पंजाब कई छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ था। रणजीत सिंह ने अपनी सूझबूझ और सैन्य शक्ति के बल पर इन क्षेत्रों को एकजुट किया। 1799 में उन्होंने लाहौर पर अधिकार कर लिया और 1801 में स्वयं को पंजाब का महाराजा घोषित किया।
5: महाराजा रणजीत सिंह ने अपने साम्राज्य का विस्तार कश्मीर, मुल्तान, पेशावर और अटक तक किया। उन्होंने एक शक्तिशाली सेना का गठन किया जिसमें आधुनिक हथियारों और युद्ध तकनीकों का उपयोग किया जाता था। उनकी सेना को उस समय की सबसे मजबूत सेनाओं में गिना जाता था।
0: बच्चों रणजीत सिंह एक कुशल प्रशासक थे। उनके शासन में सभी धर्मों के लोगों को सम्मान मिलता था। उन्होंने अपने दरबार में सिख, हिंदू और मुसलमान अधिकारियों को महत्वपूर्ण पद दिए। वे जनता की समस्याओं को सुनते थे और न्यायपूर्ण निर्णय देते थे।
5: उनके शासनकाल में पंजाब में शांति, समृद्धि और व्यापार का विकास हुआ। किसानों, व्यापारियों और आम जनता को सुरक्षा और सुविधाएं प्राप्त हुई थी। बच्चों
0: उन्होंने श्री हरमिंदर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर के सौंदर्यीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मंदिर के ऊपरी भाग को सोने से मढ़वाने के कारण इसे स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा।
5: 27 जून 1839 को लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह का निधन हो गया। उनके निधन के बाद सिख साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ गया।
0: तो बच्चों महाराजा रणजीत सिंह केवल एक महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी शासक, कुशल प्रशासक और धार्मिक सहिष्णुता के प्रतीक भी थे। उन्होंने पंजाब को एक शक्तिशाली और संगठित राज्य बनाया था तथा अपने न्यायपूर्ण शासन से जनता का दिल भी जीता, और इसी कारण वे भारतीय इतिहास में आज भी सम्मान और गौरव के साथ याद किए जाते हैं। तो बच्चों ये थे महाराजा रणजीत सिंह, और दीदी अब हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त होने वाला है, तो चलते चलते हम बच्चों को बता दें कि इस कार्यक्रम की जो प्रस्तुति थी वो गौरव पांडे की थी। तो अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी बच्चों, कुछ नई नई जानकारियों के साथ, कुछ कविताओं के साथ, कुछ कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा।
6: जय हिंद बच्चों।

अभी आप सुन रहे थे बच्चों के लिए हमारा कार्यक्रम बाल सभा। सूत्रधार थे अवधेश कुमार और शिल्पी, प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 100.5 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:30 हो रहे हैं और इस वक्त हम खास आपके लिए लेकर आते हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम जोहार रांची। तो बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे कुछ ही पलों में।
1: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: स्वागत है, अभिनंदन है आपका, आपकी अपनी प्रोग्राम जो

0: हाँ रांची में। और आज इस कार्यक्रम के सफर में एक बार फिर आपकी हम सफर है आपकी दोस्त शिल्पी
1: और साथ में मैं हूँ रचना। दोस्तों कहते हैं ना, सफलता हमेशा बड़े कदमों से नहीं बल्कि छोटे छोटे निरंतर प्रयासों से प्राप्त होती है, यानी जीवन में कोई भी लक्ष्य सिर्फ एक दिन में हासिल नहीं होता है।
0: हर दिन की छोटी छोटी कोशिशें, हर चुनौती से मिली सीख और हर असफलता के बाद फिर से उठ खड़े होने का साहस हमें सफलता के करीब ले जाता है।
1: इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने प्रयासों को कभी मत रोकिए, क्योंकि निरंतरता ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है।
0: इन्हीं सुविचारों के साथ बढ़ते हैं आज के सफर पे और कहते हैं जोहार।

0: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जोहार रांची, और जोहार रांची में अब झांकते हैं अतीत के झरोखे में और देखते हैं क्या कुछ खास हुआ था आज की तारीख में गुजरे वर्षों में। तो सबसे पहले आपको बताएं कि सन 1862 में ज्ञानेंद्र मोहन टैगोर लिंकन्स इन से वकालत की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। आज के दिन यानी 21 जून 2002 को यूरोपियन यूनियन ने के 15 राष्ट्राध्यक्षों की सेविलिया स्पेन में बैठक शुरू हुई।
1: सन 1999 में आज ही के दिन KLA यानी कोसोवो लिबरेशन आर्मी और कोसोवो शांति सैनिक बल के बीच विसैनिकरण समझौता संपन्न हुआ।
0: सन 2004 में चीन ने भारत और पाकिस्तान वार्ता का समर्थन किया आज ही के दिन, और सन 2005 में 21 जून को ही डोनाल्ड त्यांग हांगकांग के नए प्रशासक बने।
1: सन 1756 में आज ही के दिन बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सामने अंग्रेजों की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था।
0: सन 1945 में आज ही के दिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ओकिनावा द्वीप पर जापानी सेना को शिकस्त खानी पड़ी, जो कि इस युद्ध की सबसे लंबी और विध्वंसक लड़ाइयों में से एक थी।
1: जब हम बातें कर रहे हैं 21 जून के इतिहास की, तो इस दिन की एक और विशेषता की बात करते हैं, और वो ये है कि 21 जून खगोलीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन होता है।
0: खगोलीय गणना के अनुसार इस दिन के बाद सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है। इसे ग्रीष्म संक्रांति भी कहा जाता है।
1: दोपहर के समय जब सूर्य ठीक हमारे सिर के ऊपर होता है, तो कुछ पलों के लिए परछाई भी लगभग गायब या न्यूनतम हो जाती है, इसलिए इस दिन को जीरो शैडो डे भी कहते हैं।
0: इस दिन सूर्य की सीधी किरणों के नीचे ठीक नीचे जैसे छाया सिमट सी जाती है। जीरो शैडो डे हमें न केवल प्रकृति और विज्ञान के अद्भुत मेल का अनुभव कराता है, बल्कि हमें ये भी याद दिलाता है कि हमारे आसपास की दुनिया कितनी रहस्यमयी और रोचक है।

0: ज्वाला जी में अब उन मशहूर शख्सियतों की बातें जिन्होंने आज ही के दिन जन्म लिया था। तो सबसे पहले आपको बताएं कि सन 1912 में प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार, नाटककार और कहानीकार विष्णु प्रभाकर का जन्म हुआ था।
1: विष्णु प्रभाकर ने कहानी, उपन्यास, नाटक, जीवनी, निबंध, एकांकी, यात्रा वृत्तांत और कविता जैसी विधाओं में अपनी बहुमूल्य रचनाएं की हैं। इन्होंने आकाशवाणी, दूरदर्शन, पत्र पत्रिकाओं तथा प्रकाशन संबंधी मीडिया के प्रत्येक क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी।
0: आज ही के दिन सन 1927 को वरिष्ठ भारतीय पत्रकार वीजी वर्गीस का जन्म हुआ था। ये अग्रणी समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस के संपादक रहे। पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए सन 1975 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
1: 21 जून 1933 को नाटककार, उपन्यासकार, व्यंगकार, कहानीकार और आलोचक सुहास वर्मा का जन्म हुआ था, जिन्हें मुद्रा राक्षस के रूप में प्रसिद्धि मिली। इनकी 10 से ज्यादा नाटक, 12 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 3 व्यंग संग्रह, 3 इतिहास किताबें प्रकाशित हुई हैं। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
0: 21 जून 1967 को थाईलैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री यिंगलक शिनावात्रा का जन्म हुआ। सन 2011 में वे थाईलैंड की 28वीं और सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी।
1: सन 1987 में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहले भारतीय आदिवासी युवती विनीता सोरेन का जन्म हुआ।
0: कॉरपोरेट सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत टाटा स्टील ने विनीता सोरेन को एवरेस्ट फतह के अभियान में भेजने का बीड़ा उठाया था।
1: विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर ग्रामीण आदिवासी युवती के फतह का झंडा अपने आप में एक रिकॉर्ड है।

0: जोहार राज्य में अब आज मनाए जाने वाले विशेष दिनों की चर्चा। तो सबसे पहले आपको बताएं कि आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो कि संपूर्ण विश्व में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवसों में से एक है।
1: इस दिवस को प्रतिवर्ष 21 जून को मनाए जाने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र द्वारा लिया गया, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में रखकर की थी, और इस प्रस्ताव का 175 देशों ने समर्थन भी किया था।
0: योग 5000 वर्ष पुरानी भारतीय शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पद्धति है, जिसका लक्ष्य मानव शरीर और मस्तिष्क में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। और इस दिन को किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि प्रकृति को ध्यान में रखकर चुना गया है।
1: 21 जून पूरे कैलेंडर वर्ष का सबसे लंबा दिन है। प्रकृति, सूर्य और उसका तेज इस दिन सबसे अधिक प्रभावी रहता है, और ऐसे विशेष दिन पर हम सभी एक ऐसे उत्सव का हिस्सा बनते हैं जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को स्वास्थ्य, शांति और सकारात्मकता का संदेश देता है।
0: योग स्वस्थ तन, शांत मन और संतुलित जीवन की ओर ले जाने वाला एक ऐसा मार्ग है जो हजारों वर्षों से हमारी संस्कृति की अमूल्य धरोहर रहा है।
1: भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां तनाव, चिंता और अनियमित दिनचर्या आम बात हो गई है, वहीं योग हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति केवल शरीर में नहीं बल्कि मन और आत्मा के संतुलन में भी होती है।
0: योग केवल आसनों का अभ्यास नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। ये हमें वर्तमान में जीना, अपने विचारों को नियंत्रित करना और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना सिखाता है।
1: तो आइए इस योग दिवस पर हम संकल्प लें कि प्रतिदिन कुछ समय स्वयं के लिए निकालेंगे, अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे और योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएंगे।
0: तो क्यों ना आज से ही एक छोटी सी शुरुआत करें। सिर्फ कुछ मिनटों का योग और प्राणायाम हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। तो इस अभ्यास के साथ स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और जीवन को एक नई दिशा दें।

0: संगीत एक ऐसी भाषा जिसे समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। ये दिल से निकलकर सीधा दिल तक पहुंचता है, कभी खुशियों की धुन बनकर तो कभी दर्द का एहसास बनकर।
1: संगीत की अनेकों खूबियों की वजह से ही विश्व में संगीत के नाम एक दिन है। जी हाँ, आज यानी 21 जून को हम मना रहे हैं विश्व संगीत दिवस।
0: विश्व संगीत दिवस को फेटे डे ला म्यूजिक के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ म्यूजिक फेस्टिवल है। ये दिवस कुल 17 देशों में मनाया जाता है, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है।
1: वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाने का उद्देश्य अलग अलग तरीके से संगीत का प्रचार करने के अलावा विशेषज्ञ और नए कलाकारों को एक मंच पर लाना है।
0: इस दिवस को मनाने की शुरुआत सन 1982 में फ्रांस में हुई थी। इससे पहले अमेरिका के एक संगीतकार योएल कोहेन ने 1976 में इस दिवस को मनाने की बात की थी।
1: संगीत सिर्फ 7 सुरों में नहीं बना होता, बल्कि इसे बांधने के लिए विश्व की सीमाएं भी कम पड़ जाती हैं। संगीत मानव जगत को ईश्वर का एक अनोखा वरदान है। अगर हम महसूस करें तो हमारे रोज के जीवन में संगीत ही संगीत है।
0: जी हाँ, कोयल की कूक, पानी की कलकल, हवा की सरसराहट, हर जगह संगीत ही तो है। बस जरूरत है इसे महसूस करने की और अपने जीवन के व्यस्त पलों से कुछ पल सुकून के निकाल कर इस संगीत में दुनिया की धुनों में खो जाने की।
1: संगीत न सरहदों में कैद होता है, न भाषा में बनता है। हर देश की भाषा भले ही अलग हो, लेकिन संगीत के साथ सुर इन भाषाओं से परे हर दिल को जोड़ते हैं।
0: तभी तो कहते हैं, जहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं वहाँ संगीत बोलना शुरू करता है। दुनिया बदलती रही, दौर बदलते रहे, लेकिन संगीत की मधुरता और उसकी ताकत हमेशा बनी रही।

0: ख्यालों में भी हमारा ही ख्याल रखते हैं, मेरे हर दर्द का अपनी बाहों में इलाज रखते हैं। खरोंच मेरी एक, उन्हें कई रातें जगा जाती है, पिता भी ना, दिल अपने पास और धड़कने मेरे होठों की मुस्कान में रखते हैं।
1: सचमुच पिता की शख्सियत की मजबूत दरख्त हमें रिश्तों के प्रेम की अहमियत सिखाती है, वो भी अदब और अनुशासन के साथ। पर अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का दिन पिता को समर्पित है, यानी आज हम मना रहे हैं फादर्स डे। किसी ने क्या खूब कहा है, उनके होने से वक्त होते हैं बाप घर के दरख्त होते हैं।
0: इस बेमानी से दुनिया में पिता ही हमारी शान होते हैं और हमारे शख्स के वजूद की पिता ही असली पहचान होते हैं। और कहते हैं ना, ना हो तो रोती हैं जिदें, ख्वाहिशों का ढेर होता है, पिता हो तो हमेशा बच्चों का दिल शेर होता है।
1: जून के तीसरे रविवार को मनाया जाने वाला फादर्स डे हमारी जिंदगी में हमारे पिता के निरंतर प्यार, मजबूत सहारा और फादरहुड का जश्न मनाने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। एक पिता की सशक्त भूमिका को किसी की भी जिंदगी में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
0: लेकिन हम में से कई लोगों को इस बात का पता ही नहीं कि पिता को समर्पित ये दिन फादर्स डे को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने में सोनोरा स्मार्ट डोड नाम की महिला का काफी योगदान रहा है। पहली बार फादर्स डे वेस्ट वर्जीनिया में मोनोग्राफ खनन आपदा के बाद मनाया गया।
1: सोनोरा डोड अपने पिता का बहुत सम्मान करती थी। उनके पिता ने अकेले ही सोनोरा समेत 6 बच्चों का पालन पोषण किया था। अपने पिता के प्यार और संरक्षण से ही उन्हें इस दिन को सेलिब्रेट करने का हौसला मिला।
0: पिता के प्रेम को परिभाषित करना शायद संभव नहीं, इसलिए तो धार्मिक ग्रंथों में भी पिता को ईश्वर तुल्य माना गया है, जिनका प्रेम, आशीर्वाद और संरक्षण हर पल महसूस होता है, भले ही वो दिखाई ना दें।

0: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं जोहार रांची और जोहार रांची में अब आपको लिए चलते हैं केरल के एक ऐसे स्वर्ग में जहां बादल पहाड़ों को छूते से महसूस होते हैं और चाय की खुशबू हवाओं में खुल सी जाती है। जी हाँ, ये है मुन्नार।
1: हरी भरी पहाड़ियाँ और दूर तक फैले चाय के बगान और सुबह की हल्की सी धुंध एक स्वर्ग का सा एहसास कराती है। मुन्नार सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि प्रकृति के साथ एक सुकून भरा संवाद है।
0: यहाँ की ठंडी हवा, बहते झरने और सुकून भरी वादियाँ शहरी जिंदगी की भागदौड़ और थकान को मिटा देती है। मुन्नार का हर मोड़ एक नया दृश्य देता है, हर पल एक नई तस्वीर बना जाती है।
1: चाहे वो एराविकुलम नेशनल पार्क हो या सूर्य की पहली किरणों में नहाए चाय के बगान, मुन्नार हर दिल को अपनी ओर खींच लेता है।
0: मुन्नार मलयालम शब्द मुन्नू और आरू से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है तीन नदियाँ, यानी मुन्नार तीन नदियों के संगम पर स्थित है और ये नदियाँ हैं मुथिरापुझा, नल्लथन्नी और कुंडला।
1: इसकी यही प्राकृतिक विशेषता इसे खास बनाती है, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। मुन्नार ब्रिटिश काल में एक ग्रीष्मकालीन रिजॉर्ट था और यहाँ मसालों की खेती भी होती थी, खास तौर पर इलायची की खेती।
0: मुन्नार को दक्षिण का कश्मीर भी कहा जाता है। यहाँ एराविकुलम नेशनल पार्क के अतिरिक्त मट्टुपेट्टी बांध, इको पॉइंट, पोथनमेडू व्यू पॉइंट और अट्टुकल झरने पर्यटकों को खूब आकर्षित करते हैं।
1: यहाँ का कोल्ले कुमल्ले चाय बागान भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित चाय बागान है। कहा जाता है कि यहाँ भारत की सबसे जायकेदार चाय का उत्पादन होता है।
0: चाय की खुशबू के साथ साथ यहाँ आप लजीज बिरयानी का लुत्फ भी उठा सकते हैं। यहाँ हर तरह की छोटी बड़ी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ से आप यहाँ के स्थानीय व्यंजन के साथ साथ अंग्रेजी खाने का भी मजा ले सकते हैं।
1: तो अगली बार जब भी घूमने की प्लानिंग करें तो मुन्नार की वादियों को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें।

0: जोहर रांची में अब बातें मौसम के मिजाज की, तो आपको बताएं कि 21 जून का दिन हमारे शहर के लिए कई मायनों में खास है। एक और 8 साल का सबसे बड़ा दिन और जीरो शैडो डे माना जाता है।
1: तो वही मौसम भी अपने अनोखे रंग दिखाने लगा है। जून की तपिश अब धीरे धीरे मानसून की दस्तक में बदल गई है।
0: वादियों में इन दिनों बादलों का आना जाना लगा है और कभी हल्की धूप धरती को छू रही है तो कभी काले बादल आसमान पर अपनी छटा बिखेर देते हैं।
1: ठंडी हवाएं और मिट्टी की सौंधी खुशबू वातावरण को और भी खुशनुमा बना देती है और मौसम तो मानसून के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है।
0: बातें करें अगर आज के तापमान की, तो आज हमारे शहर का अधिकतम तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
1: मौसम विभाग की माने तो आज भी अचानक बारिश और आंधी आ सकती है। अगर घर से आप निकल रहे हैं तो सावधानियां जरूर बरतें, पेड़ों के नीचे आश्रय न लें,
0: खुले स्थानों और बिजली के खंभों से दूर रहें, और हाँ, अगर वाहन चला रहे हों तो उसकी रफ्तार धीमी रखें।
1: तो फिर क्या है, सावधानियों के साथ मौसम के मजे लें, क्योंकि मौसम सुहाना है और घटा भी छा गई है, तो ये तो आप भी महसूस कर रहे हैं ना।

0: और चलते चलते आखिर में बस ये कहना चाहेंगे कि जीवन का आनंद लेना चाहिए, तो थोड़े नादान बनिए, क्योंकि कई बार हर बात में ज्यादा समझदारी ढूंढने वाले अक्सर उलझ जाते हैं
1: और मासूम दिल वाले छोटी छोटी खुशियों में भी सुकून पा लेते हैं। इसलिए आप भी ऐसे ही खुशियों भरे पल की तलाश कर लीजिए
0: और इन्हीं खुशियों के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वक्त हो चला है जोहार रांची के पन्नों को यहीं समेटने का।
1: तो अगली बार कुछ और नई बातों और मुलाकातों के साथ मुखातिब होंगे। अब हमें दीजिए विदा, कहते हैं जोहार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:30 हो रहे हैं और ये वक्त है हमारे श्रोताओं की फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद का। आपकी पसंद प्रोग्राम में आइए सबसे पहले सुनते हैं फिल्म धुरंधर से अरिजीत सिंह और अरमान खान को। इस गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने और धुन बनाई है संयतन गुहा और यश सिंह ने और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है तुहाना हरियाणा से अर्चित, आयुष, स्नेहा, नित्या, सार्थिका और शाम्भवी ने।

0: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं श्रोताओं की फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद, और आपकी पसंद में आइए अब सुनते हैं प्रसून जोशी का लिखा गीत। जावेद बशीर और श्रेया घोषाल की आवाजों में इस गीत की धुन बनाई है शंकर एहसान लॉय ने, और फिल्म का नाम है भाग मिल्खा भाग। और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है गांधी चौक रोपड़ से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक ने।

मिस्टर एंड मिसेस माही है फिल्म का नाम, और आइए सुनते हैं इस फिल्म से बनी एंड सागर को। गीत और संगीत हनी और बनी का है, और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है डिब्डी रांची से सुषमा, सुप्रिया, सुशीला, शीतल और शिवानी ने।

आपकी पसंद कार्यक्रम की आखिरी फरमाइश हमने ली है जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिबा तिवारी की ओर, और इन्होंने सुनना चाहा है बाजीराव मस्तानी फिल्म से अरिजीत सिंह को। गीत के बोल लिखे हैं AM तुराज ने और धुन बनाई है संजय लीला भंसाली ने।

अरिजीत सिंह के गाए इस गीत के साथ ही हमारे श्रोताओं के फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12 बज चुके हैं और ये वक्त है बहनों के कार्यक्रम गृहलक्ष्मी का। आज इस कार्यक्रम को लेकर हमारे साथ हैं राखी और खुशबू।

0: बहनों नमस्कार। करें योग, रहें निरोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अशेष शुभकामनाओं के साथ स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। और आपके साथ हैं हम दो सखियां। मैं हूं आपकी रेडियो सखी राखी और मेरे साथ हैं आपकी प्यारी सी सखी जो आपसे मुखातिब होने के लिए बेताब हैं, आप हैं खुशबू।
1: नमस्कार सखियों, और उम्मीद है कि इस योग दिवस में आप सभी सेहतमंद होंगी और खूब सारा योग कर चुकी होंगी, क्योंकि योग सिर्फ एक पद्धति नहीं है बल्कि जीवन जीने की एक कला है। बहनों, पूरी निष्ठा, तन्मयता और एकाग्रता से जब हम अपने कर्म करते हैं, अपने कर्तव्यों का कुशलता से निर्वहन करते हैं, तो ये भी योग का ही एक भाग होता है।
0: हाँ हाँ, जैसा कि खुशबू ने कहा वैसे ही श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है कि योगः कर्मसु कौशलम्। गृहस्थ जीवन में रहकर अपने दैनिक कार्यों को करते हुए भी हम अपने शारीरिक, मानसिक और संपूर्ण स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए योग करें। हर दिन अपनी व्यस्त दिनचर्या के बीच कुछ समय स्वयं के लिए जरूर निकालें।
1: और अब तो योग को पूरी दुनिया ने महत्व दिया है और इसके महत्वता को स्वीकार भी किया है। वैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन को अगर योग दिवस परिभाषित करें तो कहा जाता है कि स्वास्थ्य केवल योग और दुर्बलता का अभाव ही नहीं बल्कि पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की अवस्था है। तो बहनों, क्यों ना हम योग करें और शरीर, मन, भावना और विचार और साथ ही जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन को बनाए रखें।
0: हाँ, स्वयं का कल्याण और साथ ही परिवार और समाज का कल्याण भी करते चलें, क्योंकि अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन जब हम दूसरों के लिए जीने लगते हैं, दूसरों के सुख दुख का ख्याल करते हैं, तभी सच्चे मानों में हमारी मानवता सिद्ध होती है।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से, वाह।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: सखियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। और राखी अब हमें बताएंगे कि आगे कार्यक्रम में क्या है।
7: बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आइए बहनों, सुनवाते हैं आपको एक भेंट वार्ता। आज का विषय है यौगिक जीवन पद्धति, एक स्वस्थ भविष्य की ओर। और इस संदर्भ में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं जया कर्मकार। आप योग शिक्षिका हैं और आपसे बातें कर रही हैं हमारी रेडियो सखी खुशबू। आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
8: यौगिक जीवन पद्धति भारतीय संस्कृति की एक अमूल्य देन है। ये केवल योगासन या व्यायाम तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसी जीवन शैली है जो शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाती है। वर्तमान समय में बढ़ते तनाव, अनियमित दिनचर्या और अस्वस्थ खानपान के कारण अनेक शारीरिक एवं मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ऐसे समय में यौगिक जीवन पद्धति एक स्वस्थ भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज इसी विषय पर हमें जानकारी दे रही हैं जया कर्मकार जी, जो कि पेशे से योग शिक्षिका भी हैं। जया जी, आपका हमारे गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में बहुत स्वागत है।
9: नमस्कार खुशबू जी, आप गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में हमको बुलाने के लिए, श्रोताओं को भी मेरा तरफ से नमस्कार।
8: जया जी, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि यौगिक जीवन पद्धति क्या है और यह सामान्य जीवन शैली से कैसे अलग है।
9: ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे शुरू में हम एक बात बोलूं, करे योग रहे निरोग। ये यौगिक जीवन पद्धति का अर्थ केवल योग आसन करना ही नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाकर जागरूकता के लिए साथ जीना है। जैसे ये अष्टांग योग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम आदि की दैनिक जीवन में उतारने की कला है। सामान्य जीवन शैली में व्यक्ति अक्सर भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे पड़ देते हैं। अक्सर बाहरी सुखों, अनियंत्रित दिनचर्या, अति प्रतिक्रियावादी व्यवहार पर आधारित होती है। इसके विपरीत यौगिक जीवन शैली आंतरिक शांति, अनुशासन, आत्मा जागरूकता और सचेत निर्णयों में केंद्रित होती है। यौगिक जीवन पद्धति शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करती है।
8: जी जया जी, आज के समय में स्वस्थ भविष्य के निर्माण के लिए यौगिक जीवन पद्धति अपनाना क्यों जरूरी है?
9: ये भी एक अच्छी प्रश्न है खुशबू जी। देखिए, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में प्रदूषण, मिलावटी खानपान और अत्यधिक मानसिक तनाव के कारण कम उम्र में ही लोग गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। योगी जीवन पद्धति व्यक्ति के साथ तनाव मुक्त अनुशासित मनाती है। ये बिना केवल बीमारियों का इलाज करती है बल्कि हमारे भीतर योग प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक जो मजबूती पैदा करते हैं, जिससे आने वाले पीढ़ियां शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बन सके। ये सुखद भविष्य के निर्णय संभव होता है।
8: जी, यौगिक जीवन पद्धति में आहार विहार और विचार की क्या भूमिका होती है?
9: यौगिक जीवन पद्धति में संतुलित और पौष्टिक आहार, जैसा अन्न वैसा मन, इससे सात्विक और ताजा भोजन शामिल है जो शरीर को ऊर्जा देता है और सुस्ती दूर करता है। विहार, इसमें हमारी दैनिक आदतें जैसे सही समय पर सोना, जागना, आराम करना और प्रकृति के साथ तालमेल बैठना शामिल है, आत्मविश्वास प्रदान करता है। इन तीनों के संतुलित के व्यक्तियों सर्वांगीण विकास होता है। विचार में सकारात्मक और शुद्ध सोच, हमारे विचार ही हमारे मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार की तय करते हैं।
8: जी जया जी, आप खुद भी एक योग शिक्षिका हैं, तो ऐसे में नियमित योगाभ्यास और ध्यान से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और एक दो योगासन के नाम भी हमें बताएं और साथ ही उसके फायदे भी बताएं।
9: नियमित योगाभ्यास अध्ययन शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये प्रश्न आपकी है। कुछ भी जी, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लचीलापन बढ़ते हैं, रीढ़ की हड्डी मजबूती होती है, रक्त संचार सुधरता है और शरीर के सभी अंग बेहतर तरीके से काम करते हैं। मेडिटेशन मस्तिष्क में स्ट्रेस हार्मोन के स्तर को कम करता है, इससे एकाग्रता, निर्णय लेने की क्षमता और भावनात्मक स्थिरता बढ़ाती है, अधिक मतलब आत्मविश्वास बढ़ता है। तो इसके लिए आपको जो बहुत कुछ आसन है खुशबू जी, ये हर आसन में ही हम लोगों का एक एक सब कुछ का एक निरोग होने का उसमें सब कुछ है। तो शुरू में हम बोलेंगे, जैसे आजकल तो सबको खान पान में ही सब कुछ इतना ऐसे जी बढ़ जाते हैं, ये तो खाना पचाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, इतना बाहर का खाना हमको लगता है। इस ये सब के लिए हमको खाने के बाद थोड़ा सा तो वज्रासन करना ही चाहिए, थोड़ा के लिए कुछ पांच मिनट तो दे ही सकते हैं। फिर आपका इतना जो मोटापा बढ़ जा रहा है, किसी का इतना दर्द होता है, ये जो है इसमें क्या है, हमको इतना आसन है जैसे भुजंगासन, धनुरासन, सर्वांग आसन, कलासन। तो इस आसन में आपको जो शरीर का जितना मोटापा, जैसे फैट होता है हम लोग का ज्यादातर ये पेट में लड़कियों होता है, तो उससे ये तो आपको कम होगा अगर नियमित आप ये चर्चा कीजिएगा। तो मुद्राओं में भी हम लोगों को जैसे आसन है, वैसे मुद्रा में भी मेरा अंदर वाला ऑर्गन को हमको जो एक्सरसाइज होता है, जैसे सूर्य मुद्रा से आपको जो मोटापा कम होता है, जो भी हो खुशबू जी, देखिए हर चीज में आपको फायदा ही फायदा है। एक बार आप लोगों को ये तो सबको श्रोता हम बोलेंगे जे सबको एक योग, मैंने जैसे हम लोग डेली ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं, ये योग भी हम लोगों को हर दिन के तरह जैसे ये एक रूटीन में आपको लेना है। योग करने से आपका हर चीज अगर नियमित कीजिएगा पॉजिटिव सोच के, तो आपका कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी आपका बीमारियां वो होगा, ये करने से मेरा ये ठीक होगा, तो पॉजिटिव सोच के हमको योगासन डेली अपनाना।
8: जी आपने बहुत अच्छी बात कही सखियों, योगासन को अपने नियमित दिनचर्या में जरूर शामिल करें, क्योंकि इससे काफी फायदा भी है। हम योगा की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में बच्चे और युवाओं के सर्वांगीण विकास में यौगिक जीवन पद्धति किस तरह से सहायक है, ये हमें बताएं।
9: ये भी एक खुशबू जी अच्छे प्रश्न किए है। ये जो है बच्चों के लिए, ये उनकी याददाश्त और एकाग्रता की बढ़ाती है, साथ ही आजकल जो मोबाइल टीवी स्क्रीन टाइम की लत की कम करके उन्हें शारीरिक रूप से सक्रिय बनाती है। युवाओं के लिए ये उन्हें किशोर अवस्था के भटकाव और दबाव से बचाकर सही दिशा चुनने की मानसिक शक्ति हो देती है। ये उनके भीतर एक अनुशासन, आत्मविश्वास और नैतिक मूल्यों का निर्माण करती है। इससे उनकी अनुसरण शक्ति, ये सब कुछ भी एक उन्हें एक नशे और अन्य बुरी आदत जैसे सब कुछ से दूर रखते हैं। ये मानसिक एकाग्रता और नैतिक मूल्यों का भी विकास करती है।
8: जी, आज जया जी, तनाव और चिंता हमारी जीवन शैली का एक अभिन्न अंग बन चुके हैं, तो ऐसे में यौगिक जीवन पद्धति बीमारियों की रोकथाम में किस तरह से प्रभावी है?
9: यौगिक जीवन पद्धति तनाव, चिंता, मोटापा, ये जो है ये अत्यंत प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मोटापा जैसी बीमारियां खराब जीवन शैली के कारण होती है। जैसे यौगिक क्रियाएं जैसे प्राणायाम और आसन हमारे पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करती है, जो शरीर को शांत करता है। ये तनाव और चिंता का जड़ से खत्म करने के सबसे सुरक्षित और प्राकृतिक तरीका है। ये जो नियमित अभ्यास से व्यक्ति स्वस्थ और ऊर्जावान बना रहता है।
8: जी, चलते चलते हम आपसे ये जानना चाहेंगे जया जी कि समाज में यौगिक जीवन पद्धति को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय, परिवार और सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा सकते हैं?
9: बहुत अच्छी प्रश्न है। जैसे समाज में जैसे विद्यालय योग की केवल एक अतिरिक्त गतिविधि ना रखकर मुख्य पाठ्यक्रम के हिस्सा बनाए और प्रतिदिन सुबह की प्रार्थना में 10 से 15 मिनट चाहे और ज्यादा कौन सा और अच्छा होता है मिनट का प्राणायाम, ध्यान अनिवार्य करें। और ध्यान करने से तो 10 मिनट में आपको अच्छा होगा ना, तो ज्यादा टाइम देने से तो बहुत अच्छा होता है। ध्यान से इतना कुछ अपने हम जब करते हैं सबको हमको बोलते हैं जी मैम कहाँ हम चले गए थे, हम नहीं जान। तो ये जो ध्यान, और एक छोटे बच्चे भी मेरे पास आते हैं तो बच्ची भी बोलते हैं मैम हमको वो मेडिटेशन हमको करवाइए पहले, हमने ये तो बाद में किया जाता है, पहले तुम एक्सरसाइज करो, ये सब प्राणायाम करो तब। तो उसको भी इतना ध्यान में इतना भी आप दे रहे हैं। देखिए ये बच्चे लोग को अगर हम सही दिशा दिखाएंगे वो लोग जरूर देखेंगे, जरूर ये अपनाएंगे, अपनाते हैं, मेरे पास आते हैं। तो माता पिता स्वयं यौगिक दिनचर्या अपना कर बच्चों के सामने रोल मॉडल बने, घर में गैजेट्स मुक्त और शांतिपूर्ण माहौल तैयार करें। सरकार जैसे सामुदायिक स्तर पर मुक्त योग पार्क और वेलनेस सेंटर स्थापित करें, जैसे ग्रामीण स्तर तक योग शिक्षको को नियुक्त करें और जन जागरूकता अभियानों का माध्यम से इसे जन आंदोलन बनाए। तो सबसे लास्ट में आप क्या बोलेंगे, जो करे योग रहे नियोग, ये तो एक हमारा एकदम हर टाइम हम बोलते हैं जी करे योग रहे निरोग, तो ये जरूर सब ये मन में ले लीजिए। जैसे हम श्रोताओं के लिए बोलेंगे जी ये योग आप जरूर कीजिए और आप रोग मुक्त हो जाइए खुशबू
8: जी। जी जया जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, करे योग रहे निरोग, यही हमारा मूल मंत्र भी होना चाहिए और हम अपने लिए थोड़ा सा समय योग के लिए जरूर निकालें, क्योंकि यौगिक जीवन पद्धति स्वस्थ, संतुलित और आनंदमय जीवन का आधार है। यह हमें अनुशासन, संयम और सकारात्मकता का संदेश देती है। यदि हम योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बना ले तो न केवल स्वयं को स्वस्थ रख सकते हैं बल्कि एक स्वस्थ और उज्जवल भविष्य का निर्माण भी कर सकते हैं। अतः हमें यौगिक जीवन पद्धति को अपनाकर स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और स्वस्थ भविष्य की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जया जी, आप हमारे गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में आई, अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
9: आपको भी हमारा धन्यवाद।
7: बहनों, अभी आपने सुनी भेंट वार्ता। विषय था यौगिक जीवन पद्धति एक स्वस्थ भविष्य की ओर, और जानकारी दे रही थी जया कर्मकार, योग शिक्षिका हैं आप, उनसे बातें कर रही थी हमारी सखी खुशबू। और खुशबू, जानकारियां जब हम देते हैं उसके बाद बहनों को थोड़े मनोरंजन

0: बहनों, आजकल हम ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है अपने दिनचर्या का वो स्क्रीन टाइम को देते हैं, है ना?
1: बिल्कुल।
0: कभी मोबाइल, कभी टीवी, कभी कंप्यूटर।
1: और बिल्कुल इस गाने की तरह ही हमें खुद को संवारना है, यानी डिजिटल डिटॉक्स को अपनाना है, क्योंकि सखियों आज मोबाइल का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, तो ऐसे में हम अपना स्क्रीन टाइम जितना घटाएंगे उतना ही हमारे स्वास्थ्य के लिए भी, यानी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है राखी, कि जो अपनों से दूरी बनती जा रही है ना, वो हम पास आते जाएंगे, है ना?
0: तो फिर हमें संकल्प तो ये लेना ही होगा, हालांकि हम लेते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि इतनी आदत हमें हो गई है कि कम से कम समय जो है स्क्रीन को दें। इससे आंखों में थकान है, सर दर्द है, बहुत तरह की परेशानियां होती हैं हमें, तो इससे हमें बचना है। और सोच लें कि भाई दिन में कितने घंटे हमें स्क्रीन टाइम
1: देना है, क्योंकि इसके बिना हमारा काम भी नहीं चल सकता, क्योंकि आज ये सत्य है, लेकिन इसे हमें घटाना होगा और साथ ही साथ हमें ध्यान कार्य क्षमता को बढ़ाना होगा, और अपने परिवार और मित्रों के साथ संबंध बढ़ाने के लिए हमें ये करना बहुत ज़रूरी है। इससे रचनात्मकता और उत्पादकता में भी सुधार होता है, शारीरिक स्वास्थ्य में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो क्यों ना हम ये संकल्प ले कि हम अपने डिजिटल टाइम को थोड़ा सा कम करेंगे।
0: यानी ठीक है, जैसे हम उपवास करते हैं वैसे ही ये उपवास भी करना होगा कि कुछ देर जो है मोबाइल से दूरी बनानी है, उधर ध्यान नहीं देना है, उसकी जगह किताबें पढ़ें, दोस्तों के साथ समय बिताएं, परिवार के साथ समय बिताएं। ये चीज़ें हमारी कहीं ना कहीं छूटती जा रही हैं और हम एक आभासी दुनिया में जीने लगे हैं। तो जो जरूरी काम है बस वही आप करें स्क्रीन पे,
1: और प्रकृति से अपना नाता जोड़ें। और सखियों से हमारा नाता तो है ही, लेकिन अब घड़ी की सुई हमें इशारा कर रही है कि अब हमें जाना होगा। लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव पांडे की,
0: और इसी के साथ अपनी सखी राखी और
1: खुशबू को दे इजाजत।
0: नमस्कार।
2: गृहलक्ष्मी अभी आप सुन रहे थे बहनों का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:30 हो रहे हैं और ये वक्त है आंचलिक लोकगीतों के कार्यक्रम भारत भारती का। भारत भारती कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मैथिली लोकगीत। कलाकार हैं राम सिया देवी और साथी।

आंचलिक लोकगीतों का कार्यक्रम भारत भारती अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 12:45 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लोक रंग। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं खड़िया लोकगीत। कलाकार हैं वंदना डेटे और साथी।

लोक रंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर। 1 बजने को है, आइए अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं जहां से आप सुन सकेंगे समाचार। समाचार हम क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के तीन पोत दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है, और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योग अभ्यास में भाग लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्यभर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने अपनी पत्नी के साथ बीच रोड पर एक कार्यक्रम में योग किया। उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश और विदेश के विभिन्न शहरों में 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश सुबह 11 बजे से शुरू होकर दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता होने की संभावना है। वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता का आगे बढ़ना मुश्किल होगा। ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालीबाफ करेंगे। श्रीलंका के डांबुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 41 ओवर में 5 विकेट पर 288 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi says India has begun to move forward with a new vision for the shipbuilding sector. Mr. Modi said this after commissioning three indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra in Kolkata, West Bengal today. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. Addressing the tri-commissioning ceremony, Prime Minister Modi said, India is strengthening its entire maritime ecosystem.
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है। इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
2: The Prime Minister emphasized that the commissioning of these warships is a sign of India's future. In his address, Mr. Modi also said that in the coming years, India's maritime sector has the potential to create lakhs of new jobs. The Navy said the vessels have more than 75% indigenous content and involved over 200 micro, small and medium enterprises, highlighting the growth of India's domestic shipbuilding industry. The 12th International Yoga Day is being celebrated across India and around the world with the theme Yoga for Healthy Aging. The theme highlights the importance of adopting yoga as a lifelong practice for healthy, active and dignified aging. Prime Minister Modi led the nation in observing the International Day of Yoga from Kolkata's Red Road. Participating in the Common Yoga Protocol session, Mr. Modi performed yoga alongside thousands of practitioners at the iconic venue. Speaking on the occasion, Mr. Modi said, yoga is not just physical exercise and is not restricted to any age group, but it is an expression of human spirit. President Draupadi Murmu also performed yoga at Garrison Ground in Jabalpur, Madhya Pradesh. Addressing the event, the president said, yoga is a celebration of India's great tradition. She said yoga has shown humanity the path to a healthy, balanced and meaningful life. The National Testing Agency, NTA, has issued guidelines for the students appearing for the NEET UG re-examination today. Over 22.79 lakh candidates will sit for the exam in 551 cities in India and 14 cities abroad. The NTA said entry to the examination centres will close at 1:30 in the afternoon. It has asked the students to carry their admit cards and valid photo ID. The admit cards for the exam can be downloaded from the website neet.nta.nic.in. Talking to media in New Delhi, Union Education Minister Dharmendra Pradhan assured that all necessary arrangements have been made for the smooth conduct of the exam. The 19th Mumbai International Film Festival, MIFF, will draw to a close today. The biennial festival of documentaries, short fiction, animation and AI cinema began on 15th June and will conclude tonight with a grand closing ceremony. One of the key attractions on the final day of MIFF will be the screening of V. Shantaram, the Pioneering Spirit, marking the 125th birth anniversary year of the legendary filmmaker. U.S. Vice President J.D. Vance has arrived in Switzerland. Mr. Vance earlier said the United States will set up the structure of negotiations with Iran and potentially start to make progress on nuclear issues. A delegation from Tehran is also on the ground and has warned that talks won't advance without first addressing Lebanon. Hours after Tehran said it closed the Strait of Hormuz because of Israel's attacks in Lebanon, and warned that little might be achieved if the fighting doesn't stop, U.S. President Donald Trump

0: Trump, in response, unleashed a new threat to impose American controls in the crucial waterway. In cricket, India A were 291 for 6 wickets in 42 overs against host Sri Lanka A in the final match of the Tri-Nation A Series 2026 in Dambulla when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 1:10 हो चुके हैं, वक्त हो चला है प्रादेशिक समाचार का।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नैन्सी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। योग दिवस पर राज्य भर में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित। राज्यपाल संतोष गंगवार, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ और अन्नपूर्णा देवी ने योग के नियमित अभ्यास का किया आह्वान। स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए झारखंड को 2 राष्ट्रीय स्कॉच अवार्ड मिले। जच्चा बच्चा की डिजिटल निगरानी और रेफरल व्यवस्था में सुधार के लिए मिला सम्मान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज होने वाली नीट परीक्षा में शामिल हो रहे छात्रों को दी शुभकामनाएं। कहा, परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी, बिना किसी भय के परीक्षा दे अभ्यर्थी। शहीद पुलिसकर्मियों और जवानों के बच्चों के लिए रांची में बनेगा दिशोम गुरु शिबू सोरेन आवासीय विद्यालय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 22 करोड़ रुपए की योजना को दी मंजूरी। और खूंटी में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान PLFI कमांडर घायल होकर गिरफ्तार। अभियान में 6 अन्य उग्रवादी भी दबोचे गए। जंगल में तलाशी अभियान जारी। और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज राज्य भर में बड़े पैमाने पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्यपाल संतोष गंगवार ने लोक भवन में बिरसा मंडप में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में 253 लोगों के साथ योग किया। इधर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि आज योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाए जाने की जरूरत है। उन्होंने झारखंड में योग को आगे बढ़ाए जाने की भी घोषणा की। डॉक्टर अंसारी आज रांची में आयोजित योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने योग के महत्व को रेखांकित किया।
3: आप योगा करोगे तो स्वस्थ रहोगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। योगा करने से मन स्वस्थ, बुद्धि बढ़ेगी और अनुशासन आएगा और आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, आपकी एनर्जी लेवल हाई होगी। तो योगा तो भारत की संस्कृति, महर्षि पतंजलि का जो योगा है आज हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया के घर घर में पहुंच गया। कोरोना में देखा हम सब कि योगा के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से देश स्वस्थ रहा, कोरोना का युद्ध हम सब।
2: वहीं केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में आयोजित एक कार्यक्रम में योग को स्वस्थ जीवन के लिए बेहद जरूरी बताया।
4: स्वस्थ जीवन के लिए योग बहुत ही आवश्यक है। प्रधानमंत्री जी ने विश्व स्तर पर इस बात को सिद्ध किया है और विश्व ने माना है और आज लगभग 177 देश अंतर्राष्ट्रीय विश्व योगा दिवस के रूप में मना रहा है। स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ तन के लिए स्वस्थ मन होना जरूरी है और स्वस्थ मन के लिए योगा करते हैं। जब नियमित रूप से योग अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रहेंगे।
2: 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज राज्य के विभिन्न जिलों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। साहिबगंज, खूंटी, लोहरदगा, सिमडेगा, बोकारो, देवघर, जामताड़ा, गुमला, चतरा, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा सहित कई जिलों में उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, अन्य प्रशासनिक अधिकारियों, सुरक्षा बलों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों ने योगाभ्यास में भाग लिया। कार्यक्रमों में योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास कराया गया तथा लोगों को योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संदेश दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि नियमित योगाभ्यास से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, तनाव कम होता है तथा कई बीमारियों से बचाव संभव है। राज्य भर में आयोजित कार्यक्रमों में हजारों लोगों ने भाग लेकर योग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए झारखंड को 2 श्रेणियों में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पहला पुरस्कार जच्चा बच्चा की डिजिटल निगरानी के माध्यम से रेफरल दर में 50% वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए मिला है, जबकि दूसरा पुरस्कार स्वास्थ्य जागरूकता वाहनों के जरिए जन जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए प्रदान किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि आज आयोजित नीट यूजी पुनर्परीक्षा में 22 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। उन्होंने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दे। इधर रांची

0: समेत राज्य भर के 67 केंद्रों पर स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की परीक्षा सफल रूप से कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के टेंडर ग्राम स्थित झारखंड जगुआर कैंप में शहीद पुलिस कर्मियों और जवानों के बच्चों के लिए दिशोम गुरु शिबू सोरेन आवासीय विद्यालय की स्थापना को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। करीब 22 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस विद्यालय में पहले से 12वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था होगी। कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध रहेगी। 6 एकड़ भूमि में बनने वाले संस्थान में शिक्षकों और कर्मियों के लिए आवास की व्यवस्था भी होगी। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय का जलावतरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है।
1: ये तीनों पोत भारत के 3 महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: धनबाद में कोयला परियोजनाओं से विस्थापित हुए लोगों के लिए कपड़ा उद्योग लगाया जाएगा। इसके तहत एक फैक्ट्री स्थापित होने से 1100 लोगों को रोजगार मिलेगा। BCCL के CMD मनोज कुमार अग्रवाल ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि उद्योग के लिए जमीन समेत अन्य सुविधाएं भारत कोकिंग कोल लिमिटेड उपलब्ध कराएगा, जबकि उद्योग की स्थापना निजी कंपनियां करेंगी। उन्होंने कहा कि इस मामले पर निजी कंपनियों और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के बीच सैद्धांतिक सहमति बन गई है। खूंटी जिले से पुलिस ने एक अभियान के दौरान नक्सली कमांडर समेत 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि इलाके में सर्च अभियान जारी है।
2: सूचना प्राप्त हुई है और इसके साथ ही कुछ एक बड़ी घटना को अंजाम देने के इरादे से इकट्ठा हुए हैं। तो छापेमारी किया गया तो वहां पे व्यक्ति हम लोगों को पकड़ा गया और उनके पास से 2 हथियार मिले। हथियारों के साथ 21 गोलियां भी प्राप्त हुई। पूछताछ के क्रम में इसके द्वारा बताया गया कि इसके पास कुछ और भी हथियार और गोलियां हैं। कुल मिला के 4 हथियार हम लोगों को बरामद हुए हैं। 28-29 गोलियां भी हम लोगों ने बरामद इनके पास से जबकि में मोबाइल भी मिले हैं, PLFI के बहुत सारे पर्चे मिले हैं।
0: देवघर जसीडी बाईपास लाइन के निर्माण कार्य के कारण आसनसोल रेल मंडल में कल और परसों कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि अगले 2 दिनों के लिए जसीडी झाझा, जसीडी क्यूल तथा देवघर झाझा पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों का परिचालन आंशिक रूप से किया जाएगा। धनबाद पटना एक्सप्रेस, आनंद विहार डांकुनी स्पेशल और हावड़ा देहरादून एक्सप्रेस को भी रास्ते में नियंत्रित कर चलाया जाएगा। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पूर्व ट्रेनों की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में आज से अगले 2 दिनों तक के लिए आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। योग दिवस पर राज्य भर में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित। राज्यपाल संतोष गंगवार, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ और अन्नपूर्णा देवी ने योग के नियमित अभ्यास का किया आह्वान। स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए झारखंड को 2 राष्ट्रीय स्कॉच अवार्ड मिले। जच्चा बच्चा की डिजिटल निगरानी और रेफरल व्यवस्था में सुधार के लिए मिला सम्मान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज होने वाली नीट परीक्षा में शामिल हो रहे छात्रों को दी शुभकामनाएं। कहा, परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी, बिना किसी भय के परीक्षा दे अभ्यर्थी। शहीद पुलिस कर्मियों और जवानों के बच्चों के लिए रांची में बनेगा दिशोम गुरु शिबू सोरेन आवासीय विद्यालय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 22 करोड़ रुपए की योजना को दी मंजूरी। और खूंटी में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान PLFI कमांडर घायल होकर गिरफ्तार। अभियान में 6 अन्य उग्रवादी भी दबोचे गए। जंगल में तलाशी अभियान जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:20 हो चुके हैं और ये वक्त है उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम अनुरंजनी का। अनुरंजनी कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं बंदिश और टप्पा। कलाकार हैं डॉक्टर अनीता सेन।

0: अनुरंजनी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:45 हो चुके हैं और ये वक्त है कार्यक्रम सुगम संगीत का। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे आशा भोसले और गुलाम अली की गाई गजलें। गजलें हम सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: अब वक्त के नाजुक होठों पर मजरूह तरन्नुम रक्सा है, बेदादे मशयत क्या कहिए, कुछ याद रही कुछ भूल गए। आइए सुनते हैं सागर सिद्दीकी की लिखी गजल, फनकार हैं आशा भोसले।

वो दोस्ती तो खैर अब नसीबे दुश्मना हुई, वो दोस्ती तो खैर अब नसीबे दुश्मना हुई, वो छोटी छोटी रंजिशों का लुत्फ भी जला गया, दयारे दिल की रात में चिराग सा जला गया। आइए सुनते हैं आशा भोसले और गुलाम अली को नसीर काजमी की लिखी मज़मून।

सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं, 2 बजने को है। आइए एक बार फिर आपको दिल्ली लिए चलते हैं मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार के लिए।

0: Good afternoon. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi emphasizes yoga's role in providing pathway from mental to physical wellness. Leads the national observance of 12th International Day of Yoga in Kolkata. Prime Minister Modi commissions 3 indigenously built Indian Navy platforms in Kolkata, says special steps being taken to enhance domestic defense production capacity. NEET UG re-examination underway at over 5,000 centers across the country and 14 centers abroad amid tight security. U.S. Vice President J.D. Vance and Iranian Parliament Speaker M.B. Ghalibaf arrive in Switzerland to hold peace talks as Tehran closes Strait of Hormuz again. IMD forecast extremely heavy rainfall over North Bengal and Sikkim today. And in cricket, India have set a target of 378 runs for Sri Lanka in final match of Tri-Nation A series in Dambulla, where Vaibhav Suryavanshi smashes fastest half-century of List A format in just 11 balls. Prime Minister Narendra Modi today emphasized yoga's role in providing pathway from mental wellness to physical wellness. The Prime Minister said this while leading the nation in observing the International Day of Yoga from Kolkata's Red Road. Participating in the Common Yoga Protocol session this morning, Mr. Modi performed yoga alongside thousands of practitioners at the iconic venue.
1: Yoga keval हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है
0: Highlighting the International Yoga Day theme for the year, Yoga for Healthy Aging, Mr. Modi said that yoga is not just a physical exercise and is not restricted to any age group, but it is an expression of human spirit.
1: When we speak of yoga for healthy aging, it means that we can work to ensure that age does not reduce human potential. Yoga can help human life to aspire for constant growth. Our target must be to be more flexible at 40 than we were at 20. Our target must be to be more energetic at 50 than we were at 30. Our target must be to be more resistant to lifestyle disease at 70 than we were at 50. This is where yoga can help us.
0: President Draupadi Murmu also performed yoga at the Garrison Ground in Jabalpur, Madhya Pradesh today. A large number of public representatives, officials and citizens were present at the event. Addressing the event, the president said, "Yoga is a celebration of India's great tradition and it has shown humanity the path to a healthy, balanced and meaningful life."
2: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग ये थीम समाज के वरिष्ठ सदस्यों के स्वस्थ सक्रिय आत्मनिर्भर एवं गरिमापूर्ण जीवन के लिए योग की उपयोगिता को रेखांकित करती है आज हम जो जीवन शैली अपनाते हैं वही हमारे आने वाले समय के स्वास्थ्य एवं सुख का आधार बनती है
0: Vice President C.P. Radhakrishnan also performed yoga at the Spituk Stadium in Leh, Ladakh, along with hundreds of participants. He emphasized that yoga is a lifelong investment in one's health, well-being and character.
3: The International Day of Yoga is more than a celebration of physical exercise. It is a recognition of ancient gift from Bharat to the humanity. We are specially proud that the global recognition of yoga, Honorable Prime Minister Sriman Narendra Modi ji has called upon the international community to adopt a day for yoga.
0: Lok Sabha Speaker Om Birla today participated in a collective yoga practice organized in the Parliament House complex in New Delhi. Mr. Birla said that the ancient Indian tradition of yoga is today showing the entire world the path to a healthy, balanced and harmonious life. Defence Minister Rajnath Singh also participated in Yoga Day celebrations at the Eastern Air Command headquarters in Upper Shillong, Meghalaya. He urged everyone to make yoga an integral part of their routine. The International Day of Yoga was also celebrated with devotion and enthusiasm across Maharashtra. Governor Jishnu Dev Verma joined senior officers of the Indian Coast Guard in performing yoga at Lok Bhavan, while Chief Minister Devendra Fadnavis led the event organized at Juhu Beach. Here is more from our Mumbai correspondent.
4: Addressing the gathering, Chief Minister Devendra Fadnavis said that yoga is a panacea for preventing lifestyle-related diseases and that everyone should practice it regularly to stay healthy. Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal participated in a yoga session in Borivali. Union Minister of State for Youth Affairs and Sports Raksha Kharse performed yoga at an event organized by the Sports Authority of India in Mumbai. Minister of State for Social Justice and Empowerment Ramdas Athawale practiced yoga at Mumbai's Priyadarshini Park. Institutions such as IIT Bombay, the Mumbai Port Authority and the National Thermal Power Corporation's Western Region 1 headquarters in Mumbai also observed the 12th International Day of Yoga. Various programs were organized across Maharashtra to mark the occasion. Ankita Apte, Akashwani News, Mumbai.
0: In Punjab, Border Security Force celebrated the Yoga Day at the Atari Wagha Joint Checkpost JCP in Amritsar, Kartarpur Sahib Corridor in Gurdaspur, JCP Husainiwala at Ferozpur and JCP Sadki on Fazilka border, besides other units and headquarters in the state. BJP National President Nitin Naveen also participated in the yoga session at Lovely Professional University near Jalandhar. All states and union territories across the nation joined the Yoga Day celebrations with grand events and yoga sessions. The International Day of Yoga celebrations were seen across the globe today. More than 2,000 yoga enthusiasts from the Indian community and other expatriate groups came together in Doha to celebrate the day, underscoring the growing popularity of the ancient practice in Qatar. The Embassy of India in Muscat also marked the Yoga Day with a special event at its premises, bringing together members of the diplomatic community, the Indian diaspora, Friends of India, and yoga enthusiasts from across Oman. Bangladesh also marked the Yoga Day with a grand celebration in Dhaka, organized by the Indira Gandhi Cultural Center, IGCC, under the High Commission of India in Bangladesh. Hundreds of yoga enthusiasts gathered to participate in the Common Yoga Protocol session led by yoga teachers and students of the IGCC. Earlier, more than 500 participants gathered in Riyadh yesterday to celebrate Yoga Day, highlighting the growing popularity of yoga in Saudi Arabia and its role in promoting health and family and well-being. Prime Minister Narendra Modi today commissioned three indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra in Kolkata. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. Addressing the tri-commissioning ceremony, Prime Minister Modi said that today India is strengthening its entire maritime ecosystem and initiatives like Sagarmala are part of this broader vision.
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है नई क्षमता तैयार कर रहा है नई कनेक्टिविटी बना रहा है नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है
0: Mr. Modi further said that there was a time when India was recognized as one of the world's largest defense importers, but today India's defense production has grown rapidly and our defense exports are also growing at an unprecedented pace. He says special steps are being taken to enhance domestic defense production capacity.
1: 2014 tak desh ka kul defense production 40,000 crore rupiye ke aas paas tha आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और साथियों एक तरफ देश में
5: रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है.
0: Defense Minister Rajnath Singh said that the tri-commissioning of three indigenously built Indian Navy platforms is a defining moment in India's maritime capability development. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website newsonair.gov.in and download News on AIR app. The National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG 2026 re-examination is currently underway at over 5,000 centres across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates amid tight security. The examination is being conducted in English and 12 Indian languages. The NTA has said that student-friendly facilities are being provided at centres, including drinking water, ORS, ambulances and shaded waiting areas for parents. Ahead of the examination, the National Testing Agency conducted nationwide mock drill yesterday to verify all systems jammers, CCTV, frisking staff and biometrics. Meanwhile, Union Education Minister Dharmendra Pradhan is assured that all necessary arrangements were already made for the smooth conduct of the exam. President Draupadi Murmu today attended the 36th convocation ceremony of Rani Durgavati University in Jabalpur, Madhya Pradesh. On the occasion, she awarded gold medals to meritorious students from different faculties. Madhya Pradesh Governor and Chancellor Mangubhai Patel, Chief Minister Dr. Mohan Yadav and Higher Education Minister Inder Singh Parmar were also present at the ceremony. Addressing the gathering, the President said that Rani Durgavati, after whom the university is named, was a symbol of courage, bravery and valour. She urged people associated with the university to work for the empowerment of tribal communities, disadvantaged groups, especially young girls.
6: रानी दुर्गावती भारत के नारी शक्ति के शौर्य के प्रतीक, वे सदैव नारी शक्ति के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे. इस विश्वविद्यालय के आसपास के क्षेत्र में जनजातीय वनवासी संस्कृति की प्रचुर उपस्थिति है. इस विश्वविद्यालय से जुड़े रानी दुर्गावती के नाम की सार्थकता सभी सिद्ध होगी जो सभी भागीदारी जनजातीय समाज और वंचित तथा पिछड़े वर्ग, विशेषकर इन वर्गों की बेटियों की सशक्तिकरण के लिए प्रयास करें.
0: U.S. Vice President J.D. Vance and Iranian Parliament Speaker M.B. Ghalibaf have arrived in Switzerland to hold peace talks as Tehran closed the Strait of Hormuz again, citing Israel-Lebanon conflict. The United States said that they will set up the structure of negotiations with Iran and potentially start to make progress on nuclear issues. A delegation of Tehran, led by Parliamentary Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf, has named Binab 168 in tribute to the 168 victims of the tragic school strike. The India Meteorological Department, IMD, has forecast extremely heavy rainfall over sub-Himalayan Bengal and Sikkim during the day. The weather agency has predicted that Gujarat, central Maharashtra, Marathwada, Saurashtra and Kutch will witness isolated to scattered rainfall till Friday. In cricket, India A have set a target of 378 runs for host Sri Lanka A in the final match of the Tri-Nation A Series 2026 in Dambulla. After being invited to bat first, India's opening pair of Priyansh Arya and Vaibhav Suryavanshi made a promising start to the innings. Meanwhile, Vaibhav Suryavanshi smashed the fastest half-century of List A format in just 11 balls. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi emphasizes yoga's role in providing pathway from mental to physical wellness, leads the nation's observance of 12th International Day of Yoga in Kolkata. Prime Minister Modi commissions three indigenously built Indian Navy platforms in Kolkata, says special steps being taken to enhance domestic defense production capacity. NEET UG re-examination underway at over 5,000 centers across country and 14 centers abroad amid tight security. U.S. Vice President J.D. Vance and Iranian Parliament Speaker M.B. Ghalibaf arrive in Switzerland to hold peace talks as Tehran closes Strait of Hormuz again. IMD forecasts extremely heavy rainfall over North Bengal and Sikkim today. And in cricket, India set a target of 378 for Sri Lanka in final match of Tri-Nation A Series in Dambulla. And with that, we end the midday news.
7: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्रों को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में लिस्ट ए प्रारूप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध।
7: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है, जो स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
8: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
7: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। श्री मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है, बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है।
9: योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है। और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है, तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए।
7: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों ने योग, प्राणायाम और राजयोग का अभ्यास किया। उधर पंजाब में विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों और संस्थानों ने योग सत्र आयोजित किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जालंधर के निजी विश्वविद्यालय में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने राज्य के लोगों, विशेषकर युवाओं से नशा न करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने लोकभवन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुहू तट पर आयोजित योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
4: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि योग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम का प्रभावी माध्यम है और स्वस्थ रहने के लिए सभी को नियमित रूप से योग करना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोरिवली में आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने मुंबई में योगाभ्यास किया। IIT बॉम्बे, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा नेशनल थर्मल पार्क कॉरपोरेशन के मुख्यालय सहित कई संस्थानों ने भी योग दिवस मनाया। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
7: गोवा के तालेगांव स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक सहित छात्र, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी और योग अभ्यासकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने योग कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्यभर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। इधर राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस सत्र में भाग लिया। मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि योग को केवल वार्षिक आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास में भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।
5: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
7: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
5: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
7: नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों पर 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाने के दौरान उन्होंने कहा कि यह परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रूपये से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
10: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा, क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, उसके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
7: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
11: मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
7: श्री प्रधान ने बताया कि सीबीएसई के शेष परीक्षा परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे।
11: सीबीएसई की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे सीबीएसई की 17,00,000 बच्चों से लगभग 15,50,000 बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था वो काम लगभग पूरा हो चुका है। सीबीएसई जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है।
7: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रुपए के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10,00,000 रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री विंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
12: ईरान के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका होर्मुज जलडमरों मध्य पर नए शुल्क लगा सकता है। बढ़ते तनाव के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित वार्ता स्थगित कर दी गई थी। ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नाम मिनाब 168 रखा गया है, जो स्कूल पर हुए हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ करेंगे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
7: मुंबई में बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही, जिससे बस सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहीं। हालांकि बेस्ट प्रशासन ने शहर में नीट पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 100 से अधिक बसों की व्यवस्था की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिहार और तेलंगाना के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विदर्भ में बुधवार तक लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है। क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए के सामने 378 रन का लक्ष्य रखा है। दामुला के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ए को शानदार शुरुआत मिली। टीम बिना कोई विकेट गंवाए 130 रन के पार पहुंची। वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 गेंदों में 94 रन बनाए। उन्होंने महज 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की है। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एम बी कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 2:30 हो चुके हैं। ये वक्त है फौजी भाइयों को समर्पित फिल्मी गीतों के कार्यक्रम जय भारती का। जय भारती कार्यक्रम में आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं शंकर महादेवन, सोनू निगम, हरिहरन, कुणाल गांजावाला और रूप कुमार राठौर की आवाजों में जावेद अख्तर का लिखा गीत। इस गीत की धुन बनाई है शंकर एहसान लॉय ने और फिल्म का नाम है लक्ष्य।

गदर 2 यह है फिल्म का नाम और आइए सुनते हैं इस फिल्म से नीति मोहन, विशाल मिश्रा, शहनाज अख्तर, साहिल अख्तर और मिथुन को। गीत की बोल लिखे हैं सईद कादरी ने और धुन बनाई है मिथुन ने।

आइए एक बार फिर सुनते हैं अरिजीत सिंह को सिटीलाइट फिल्म से। गीत के बोल लिखे हैं रश्मि सिंह ने और धुन बनाई है जीत गांगुली ने।

एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। आइए सुनते हैं इस फिल्म से अरिजीत सिंह को। गीत के बोल लिखे हैं मनोज मुंतशिर ने और धुन बनाई है अमाल मलिक ने।

0: अरिजीत सिंह के गाए इस गीत के साथ ही फौजी भाइयों को समर्पित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 2:55 होने को है, कुछ ही पलों में हम सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाजों INS दोनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का जलावतरण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। उन्होंने निर्माता से निर्णायक बनने का मंत्र दिया। श्री मोदी ने बताया कि भारत का रक्षा उत्पादन निर्यात लगातार बढ़ रहा है।
2: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था। आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर झारखंड समेत देश दुनिया में आज योग साधना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता से देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व किया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोकभवन के बिरसा मंडप में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परम्परा का अमूल्य उपहार है, जो शरीर और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित कर स्वस्थ और अनुशासित जीवन का मार्ग प्रशस्त

0: करता है।
1: हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो स्वरूप प्रदान करवाया, वो दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। और निश्चित रूप से ये हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वो अपने जीवन में थोड़ा समय इस काम के लिए निकालें।
0: योग दिवस पर राजकीय समारोह का आयोजन रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आयोजित किया गया, जिसमें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी समेत कई गणमान्य लोग ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में आयोजित योग कार्यक्रम में शामिल हुई और योग को स्वस्थ जीवन के लिए बेहद जरूरी बताया। पाकुड़ में भी कई स्थानों पर योग दिवस के सिलसिले में शिविर के दौरान लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। आयुष विभाग द्वारा आयोजित योग शिविर में उपायुक्त मेघा भारद्वाज और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त ने योग को भारत की प्राचीन विरासत और अमूल्य धरोहर बताया।
2: हमारे देश की धरोहर है और हमारे देश का मतलब एंशिएंट प्रैक्टिस है, इसको हम कह सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है आज के भागदौड़ के जीवन में शारीरिक मतलब जो बीमारियां हैं उनको दूर रखने के लिए प्रिवेंटिव बहुत अच्छा काम करता है और मानसिक भी शांति, जैसे अभी हम लोगों ने प्राणायाम किया तो इससे काफी जो है रिलैक्स फील होता है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज दोपहर 2 बजे से ली जा रही है। एनटीए ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए देश भर में अभूतपूर्व सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। खूंटी जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान आज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जरियागढ़ थाना क्षेत्र के तिलमी जंगल में हथियार बरामदगी के लिए ले जाए गए नक्सली संगठन पीएलएफआई के कमांडर श्रवण दास ने एक पुलिसकर्मी का हथियार छीनकर भागने और फायरिंग की कोशिश की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जिले के पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि अभियान के दौरान 6 अन्य उग्रवादियों को भी दबोच लिया गया है। सुरक्षा बलों ने जंगल से हथियार, कारतूस और संगठन से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान जारी है। हजारीबाग के सदर प्रखंड स्थित सखिया में आज टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर स्वास्थ्य जांच कराई तथा टीबी से बचाव और उपचार संबंधी जानकारी प्राप्त की। मौके पर हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने ग्रामीणों को टीबी उन्मूलन अभियान से जुड़ने तथा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रोत्साहित किया। राज्य में बारिश के बावजूद तापमान में वृद्धि देखी जा रही है। राज्य के अधिकांश जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान पारा ऊपर की ओर चढ़ा है। हालांकि अधिकतम तापमान में 2 दिनों बाद थोड़ी गिरावट हो सकती है। राज्य में 27 जून तक बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 3 बज चुके हैं, कुछ ही पलों में हम सुनेंगे फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए आपको सुनवाते हैं शहरयार का लिखा गीत आशा भोसले की आवाज़ में। इस गीत की धुन बनाई है खयाम ने और फिल्म का नाम है उमराव जान।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 3:10 होने को है। आइए अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां से आप सुन सकेंगे पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:20 हो रहे हैं। अगला कार्यक्रम रांची मेलोडीज हम सुनेंगे थोड़ी देर के बाद।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: भारतीय सेना, भारतीय सेना।
1: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
2: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: निकल पड़े, घटना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: आकाशवाणी रांची पर अब वक्त हो चला है उस खूबसूरत सफर का जिसे हम रांची मेलोडीज कहते हैं, और इस सफर में एक बार फिर आपके साथ है आपकी दोस्त शिल्पी। आज की मेलोडीज वर्ल्ड म्यूजिक डे के नाम, और आज इस खूबसूरत से दिन में हम बातें करेंगे उस अनमोल धरोहर की जो हर खुशी में मुस्कान बनकर और हर गम में सहारा बनकर हमारे साथ रहती है, वो है संगीत। दौर चाहे कोई भी हो, संगीत हमेशा से हमारी आत्मा की आवाज रहा है। सुरों की कोई सीमा नहीं होती, संगीत की कोई भाषा नहीं होती। ये तो वो जादू है जो दिलों के तार जोड़ता है, भावनाओं को शब्द देता है, कभी एनर्जी देता है तो कभी यादों की गलियों में ले जाता है। आइए आपको भी लिए चलते हैं उन्हीं पुरानी गलियों में।

संगीत सिर्फ सुनने की चीज़ नहीं, बल्कि ये तो एक एहसास है जिसे महसूस किया जा सकता है। यही वजह है कि दुनिया के हर कोने में, हर संस्कृति में और हर पीढ़ी में संगीत अपनी अलग पहचान रखता है। और यही कारण है कि वर्षों से संगीत मानव सभ्यता का सबसे खूबसूरत साथी बना हुआ है। लोकगीतों की मिठास हो या भारतीय शास्त्रीय संगीत के राग, हर सुर अपने भीतर एक पूरी दुनिया समेटे हुए हैं।

कभी आपने सोचा है कि अगर संगीत ना होता तो कैसी होती हमारी जिंदगी? शायद त्योहारों की रौनक अधूरी होती, शायद बारिश की फुहारें उतनी सुरीली ना लगती और शायद दिल की बातें दिल में ही रह जाती। यही वो शक्ति है जो दो अनजान लोगों को अपना बना देती है, दूरियों को मिटा देती है और भावनाओं को एक साझा मंच दे देती है। और मौसम की खूबसूरती को महसूस करना भी तो हमने संगीत से ही सीखा है।

संगीत केवल कला नहीं, ये हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है। जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव पर संगीत हमारे साथ चलता है। माँ की लोरी से शुरू हुआ ये सफर कभी भक्ति गीतों से दिल को छूता है, तो कभी प्रेम गीत बनकर दिल की धड़कन बन जाता है।

संगीत न किसी भाषा का होता है, ना किसी धर्म का, ना किसी क्षेत्र का होता है, ना किसी सीमा का। ये तो सिर्फ दिल का होता है। संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं, ये एक उपचार है, एक प्रेरणा है, एक ऊर्जा है। कई बार एक गीत हमें टूटने से बचा लेता है और कोई गीत हमें फिर से खड़े होने की ताकत देता है। जब दुनिया शोर से भर जाती है, तब संगीत ही वो आवाज़ बनता है जो हमें खुद से मिलाता है।

शाम रोक लई रोक लई रोक लई थाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई गई गई सर से मोरी चुनरी गई सरक सरक सरक

विश्व संगीत दिवस केवल संगीत का उत्सव नहीं बल्कि उन अनगिनत कलाकारों को नमन करने का दिन है जिन्होंने अपनी आवाज, अपने सुर और अपने हुनर से हमारी जिंदगी में कभी रंग बिरंगे चमकते सितारे टाके तो कभी हमारे आंसुओं को राह दिए, कभी सपने देखना सिखाया तो कभी गिरकर उठना सिखाया। संगीत समय के साथ बदलता जरूर है लेकिन उसका असर कभी कम नहीं होता। पुरानी यादों में बसी कोई धुन आज भी चेहरे पर मुस्कान ले आती है तो नए दौर का कोई गीत आने वाले कल की कहानी कह जाता है।

सुरों के अनमोल सफर में हर धुन एक कहानी है, हर गीत एक एहसास है और हर लय जीवन का एक उत्सव। जब भावनाएं बयां नहीं हो पाती तब कोई धुन उन्हें आवाज देती है, और जब जिंदगी की भागदौड़ में मन थक जाता है तब संगीत ही सुकून बनकर साथ चलता है। और संगीत की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है पता है? ये कई पीढ़ियों को एक ही धागे में पिरो देती है। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसा ही गीत जिसने लाखों दिलों की धड़कनों में अपनी जगह बनाई है।

विश्व संगीत दिवस पर आइए हम सब सुरों की इस विरासत को सहेजें, कलाकारों का सम्मान करें और संगीत को अपनी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बनाएं। क्योंकि जहां शब्दों को विराम मिल जाता है ना, संगीत की शुरुआत वहीं से होती है। इन्हीं बातों के साथ वक्त हो चला है रांची मेलोडीज के मेलोडियस धुनों को विराम देने का। अगली बार कुछ और खूबसूरत गीतों और उसके किस्सों के साथ आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए अपनी दोस्त शिल्पी को दीजिए इजाजत।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम रांची मेलोडीज। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 4 बजने को है, कुछ ही पलों में हम सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर झारखंड समेत देश दुनिया ने आज योग साधना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता से देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व किया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोकभवन के बिरसा मंडप में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का अमूल्य उपहार है, जो शरीर और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित कर स्वस्थ तथा अनुशासित जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। योग दिवस पर राजकीय समारोह का आयोजन रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आयोजित किया गया, जिसमें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी समेत कई गणमान्य लोगों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया। राजधानी रांची समेत राज्य के 67 केंद्रों पर नीट यूजी की पुनर्परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा के सुचारू संचालन को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इधर रांची के नगर पुलिस अधीक्षक पारस राणा ने परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। खूंटी जिले में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में बड़ी सफलता मिली है। जरियागढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में नक्सली संगठन PLFI के टॉप कमांडर श्रवणदास घायल हो गया। वहीं संगठन के आधा दर्जन सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार और अन्य सामग्री बरामद किया गया है। पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया थाना क्षेत्र में आज 2 मालवाहक वाहनों के बीच आमने सामने टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में दोनों वाहनों के चालक घायल हो गए। दोनों चालकों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई, जिससे आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 4:02 हो चुके हैं और ये वक्त है बाल श्रोताओं के कार्यक्रम बाल सभा का। बाल सभा कार्यक्रम हम सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: जय हिंद बच्चों।
1: सुबह सुबह जब सूरज आए, सुनहरी किरणें संग मुस्काए, आओ बच्चों योग करें, स्वस्थ और निरोग रहें।
2: बच्चों दौड़ो कूदो खेलो गाओ, योग को अपना मित्र बनाओ, एकाग्रता का दीप जलाकर सपनों की ऊंचाई पाओ। तो बच्चों आज योग दिवस है।
1: और भैया हमें ऐसा लगता है कि जितने बच्चे आज हमारे सामने हैं, सबने योग किया होगा, है ना बच्चों? और बच्चों योग से होने वाले फायदे आपको पता है, क्यों सही कह रही हूँ ना बच्चों? योग एक ऐसी आदत है जिसे दिनचर्या में शामिल करेंगे आप तो शारीरिक रूप से मजबूत और मानसिक रूप से शांत, और हाँ पढ़ाई में एकाग्रता भी बनी रहेगी।
2: और बच्चों आज योग दिवस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ योग दिवस के दिन ही हमें योग करना है, हमें प्रतिदिन योग करना है, यानी कि जैसा कि दीदी ने कहा कि अपने दिनचर्या में इसे शामिल करना है। और कहा भी जाता है बच्चों कि योग भगाए रोग, तो अगर आपको स्वस्थ रहना है, निरोगी रहना है तो योग को अपनाएं। और बच्चों योग केवल व्यायाम नहीं है बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने का एक तरीका है। हाँ, तो अगर आप नियमित योग करेंगे तो रोग आपके पास फटकेगा भी नहीं, है ना?
1: हाँ बच्चों, बढ़ते उम्र के लिए बहुत सारे आसान योग हैं जो आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं, जैसे कि तड़ासन, वृक्षासन, मार्जरी आसन,
2: तितली आसन, भुजंग आसन, स्वासन, इतने सारे योग हैं बच्चों जिसे करने से मन प्रसन्न और शरीर में ताजगी बनी रहती है, शरीर को ऊर्जा मिलती है। और हाँ बच्चों, अगर आप सूर्य नमस्कार करना सीख लें तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, पता है क्यों?
1: हाँ भैया, क्योंकि यह संपूर्ण व्यायाम है, इसमें 12 अलग अलग आसन शरीर की हर मांसपेशी और जोड़ पर काम करते हैं जिससे शरीर मजबूत और लचीला बनता है।
2: बच्चों योग आपको अनुशासन, धैर्य और आत्मविश्वास सिखाता है। जब आप प्रतिदिन कुछ मिनट योग करेंगे तो आपके भीतर सकारात्मक सोच विकसित होगी और आप अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ भी पाते हैं और उसको संप्रेषित भी कर पाते हैं।
1: हाँ बच्चों, जो आपके साथी नियमित योग करते हैं उनसे पूछिएगा, वो मौसम के बदलने से बीमार भी कम पड़ते हैं, थकते कम हैं, इसलिए वो स्कूल में ज्यादा उपस्थित रहते हैं। आपने ऐसा देखा होगा बच्चों?
2: हाँ, तो देखा ना बच्चों, योग करने के कितने फायदे हैं। बहुत सारे फायदे हैं और बच्चे इन चीजों को खूब अच्छी तरह से समझते भी हैं। दीदी बच्चे करते भी हैं योग, क्यों बच्चों करते हो ना? लेकिन एक बात सभी बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि योग की शुरुआत जब भी करें, शुरू में योग आसान तरीके से और सरल आसन का अभ्यास करें,
1: साथ में कुछ छोटी छोटी सावधानी भी बरतें, जैसे अभी मौसम है वो गर्मी का मौसम है इसलिए खूब पानी पिएं, मौसमी फल खाएं, तरबूज, खीरा, ककड़ी, नारियल पानी पिएं, और हाँ सबसे जरूरी बात है कि जंक फूड से बचें, डिब्बे बंद चीजों का बिल्कुल नहीं खाएं और यह स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। और भैया हमने ये बात बच्चों को हमेशा समझाते हैं, है ना?
2: और शरीर को स्वस्थ रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि बाहरी खेल खेलें बच्चों, जैसे अपने दोस्तों के संग क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, तो इन खेलों को खेलने से शरीर और मन दोनों ही प्रसन्न रहता है। साथ ही साथ जब आप खेल के मैदान में जाएंगे तो अन्य बच्चों से मेलजोल भी आपका बढ़ता है, टीम की जो भावना है वो भी विकसित होती है और आप एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। और इन खेलों के बहाने आप पढ़ाई से संबंधित सवाल जवाब करना भी सीख लेते हैं या जानते हैं, एक दूसरे से अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप अपने दोस्तों से उसको इसी दौरान पूछ भी लेते हैं। तो खेलने के जो आउटडोर खेल हैं दीदी, तो इसके खेलने के बहुत सारे फायदे हैं, सिर्फ शारीरिक रूप से ही आप स्वस्थ नहीं होते हैं बल्कि मानसिक रूप से भी ये आपको स्वस्थ रखता है।
1: यानी योग और खेल दोनों जरूरी हैं बच्चों आपके लिए।
2: बच्चों योग करना बेहद जरूरी है, इसे आपने जान लिया, लेकिन एक और काम है जिसे करके आपको खुशी मिलेगी, उससे प्रेम भी गहरा होगा। अब सोचिए कि वो कौन सा काम है।
1: अरे अरे ज्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि वो बहुत छोटा सा काम है लेकिन उसका असर बहुत बड़ा है बच्चों। वैसे एक इशारा मैं कर देती हूँ, वो है आपका सच्चा मित्र,
2: और वो है नन्हा सा पौधा। हाँ बच्चों, यदि आप एक पौधा लगाएं और उसकी सही देखभाल करें तो वो जल्द ही बड़ा होने लगता है, क्योंकि वो आपसे दोस्ती करना चाहता है। उसे भी आपके साथ का इंतजार रहता है, पानी डालने का, उसके पास बैठने का, और सबसे बड़ी बात कि वो सभी की निस्वार्थ सेवा भी करता है।
1: बिल्कुल सही बात है बच्चों। तो पेड़ से ही, क्योंकि पेड़ से ही हमें शुद्ध हवा, भोजन, दवा, कागज, फल और सब्जियां मिलती है, इसलिए इसे हम प्राणवायु भी कहते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने में हमेशा ये साथ देता है। बच्चों आपने देखा है ना, जब बहुत अधिक गर्मी पड़ती है तो हमें अपने पास बुलाकर ठंडी छांव में राहत भी देता है पेड़। बच्चों आपने भी गौर किया होगा, जहां पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं वहां बारिश भी ज्यादा होती है। वर्षा वृक्षों के लिए जीवन दायनी होती है।
2: आपने ये भी देखा होगा बच्चों कि जहां ज्यादा पेड़ लगे होते हैं वहां ज्यादा बारिश होने पर भी वहां की मिट्टी कटकर बहती नहीं है, बल्कि वर्षा का पानी मिट्टी में रिसता है, यानी सोख लेता है, और तेज बहाव में भी पेड़ अपनी जड़ों के माध्यम से उसे अवशोषित करते हैं।
1: हाँ बच्चों, बारिश और वृक्ष का गहरा और अटूट संबंध है। यह संबंध मुख्य रूप से जल चक्र और पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित होता है।
2: बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पाएंगे कि पेड़ पौधों का हर अंग प्रकृति को संतुलित करने में अपना योगदान देता है। जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां, टहनियां, शाखाएं भी वातावरण में मौजूद अनावश्यक शोर यानी ध्वनि प्रदूषण को रोकती है।
1: बच्चों पेड़ पौधे सिर्फ हम इंसानों को ही नहीं बल्कि जीव जंतु, बड़े जानवरों, पक्षियों, कीट पतंगों को भी आश्रय देते हैं। सोचिए, अगर आपका सच्चा मित्र ये पेड़ न होता, आप उससे दोस्ती कैसे कर पाते? देख रेख नहीं करेंगे उसकी, तो इसका यानी कि इन जानवरों का, पशु पक्षियों का आशियाना कैसे बनता?
2: बच्चों उदास मत होइए, लेकिन हाँ बस एक काम जरूर करना सीखिए कि सभी दोस्त मिलकर आज ये संकल्प लीजिए कि अपने पसंद का एक पौधा लगाएंगे, है ना? और देखिए मौसम भी कितना अनुकूल है, रोज बारिश हो रही है, और ऐसे में पौधा जल्द ही लग जाएगा।
1: हाँ बच्चों, अब आप सोचते होंगे कि इतना पौधा लाऊंगा कहाँ, लगाऊंगा कहाँ? तो आप अपने विद्यालय परिसर, सार्वजनिक स्थल, पार्क, मंदिर के प्रांगण या आसपास के खुले जगहों पर भी आप लगा सकते हैं।
2: और सबसे अच्छी बात तो ये है बच्चों कि आप दोस्तों को उपहार, जैसे जन्मदिन हो या विशेष अवसर हो, उस पर आप पौधों को उपहार स्वरूप उन्हें दे सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिएगा हमारी जो धरती है, हमारी जो धरा है, वो खिलखिला उठेगी। तो दीदी बातें तो बहुत सारी हो गई और बच्चों के लिए भी ढेर सारी जानकारी और भी है, लेकिन उससे पहले हम बच्चों का अगर मनोरंजन करवा दें तो कैसा रहेगा?
1: बहुत अच्छा रहेगा भैया, क्योंकि बच्चे भी अब हमारे बाल गीत सुनने के लिए उत्साहित हैं।
2: तो चलिए सुनते हैं बच्चों ये बाल गीत।

0: तो बच्चों कैसा लगा ये गीत, पसंद आया ना? तो अब आप लोगों की बारी है ना? तो हमारे बच्चे भी तैयार हैं दीदी, तो चलिए उनसे सुनते हैं।
1: आज मैं मान्या श्रुति एक कविता के माध्यम से ऐसे विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो स्वस्थ जीवन का आधार है, और वह है योग। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम ही नहीं, बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा के संतुलन का मार्ग भी है। योग केवल आसनों का क्रम नहीं, यह स्वयं से मिलने की राह है, जहां श्वासों की धीमी सरगम में मन को अपनी ही चाह है। जब दुनिया का शोर थम जाता है और भीतर सन्नाटा बोलता है, तब योग के शांत क्षणों में मन स्वयं को टटोलता है। यह शरीर को संतुलन देता है, विचारों को नई दिशा देता है, बिखरे हुए जीवन के हर स्वर को एक मधुर एकता देता है। योग सिखाता है रुकना, समझना और स्वीकारना, अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानना और निखारना। इसलिए योग केवल अभ्यास नहीं, जीवन जीने की कला है। जो इसे हृदय से अपनाता है, उसके लिए हर दिन एक नई प्रभात है। धन्यवाद।
2: नमस्ते, मैं समीक्षा कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। आज मैं अपनी एक स्वरचित कविता आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मेरी हिंदी शिक्षिका। मेरी हिंदी शिक्षिका शब्दों की दुनिया में उजाला फैलाती हैं। मेरी हिंदी शिक्षिका हर दिल को छू जाती हैं। अक्षर अक्षर में अर्थों का दीप जलाती हैं। कठिन से कठिन पाठ भी हंसकर समझाती हैं। उनकी वाणी में मीठी सी सरलता रहती है। हर सवाल का हल बड़े प्यार से दे जाती हैं। व्याकरण, कविता, कहानियों का सौंदर्य दिखाती हैं। भाषा ही नहीं, जीवन जीने की राह बताती है। हम सीखते हैं उनसे संस्कारों की परिभाषा, निष्ठा, प्रेम और मेहनत की असली भाषा। गुरु का रूप बनाकर जब कक्षा में आती हैं, हम सबके मन में नई ऊर्जा जगाती हैं। धन्य है वे जिनसे हमने हिंदी का मान सीखा, शब्दों का सम्मान और ज्ञान का सम्मान सीखा। मेरी हिंदी शिक्षिका, आपके बिना था ये सफर अधूरा सा। आपने तो हमें भाषा से जोड़कर पूरा है किया। धन्यवाद।
3: मेरा नाम अश्विनी दित्या है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज मैं यहाँ कोई भाषण देने नहीं, बल्कि आप सभी के साथ अपना एक बहुत ही मज़ेदार और सच्चा अनुभव साझा करने जा रही हूँ। एक ऐसी गलती जिस पर आज भी जब मैं सोचती हूँ तो मुझे और मेरे दोस्तों को खूब हंसी आती है, लेकिन इस हंसी के पीछे छुपा था जिंदगी का बहुत बड़ा ज्ञान, जिसे मैं आज तक नहीं भूली। बात तब की है जब मैं कक्षा 8वीं में थी। हमारे स्कूल में एक एक्सटेम्पोर यानी बिना तैयारी के तुरंत आकर बोलने की प्रतियोगिता थी। मैंने सोचा कि मैं तो हमेशा बढ़िया बोलती हूँ, तो बिना तैयारी के भी स्टेज पे झंडे गाड़ दूंगी। मुझे चिट निकालने को कहा गया और मेरे चिट पर जो टॉपिक निकला वह था विज्ञान के चमत्कार। स्टेज पर माइक के सामने आते ही मेरा कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर था। मैंने पूरे जोश में आकर पहली ही लाइन बोली, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे दोस्तों, आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि इंसान बिना परों के आसमान में उड़ रहा है, और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है थॉमस अल्वा एडिसन को, जिन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। मेरा इतना बोलना था कि पूरे हॉल में एक सन्नाटा छा गया। सभी टीचर्स ने अपना सर पकड़ लिया और सामने बैठे मेरे दोस्त बेंच थपथपा कर हंसने लगे। वो ऐसे हंस रहे थे कि जैसे उन्हें कोई कॉमेडी शो मिल गया हो। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि सब क्यों हंस रहे थे। मैंने पूरे कॉन्फिडेंस में दो बार और दोहरा दिया कि हाँ दोस्तों, राइट ब्रदर्स ने तो बस उनका बल्ब देखकर लाइट जलाई थी। जब मैं स्टेज से नीचे आई तब मेरे दोस्तों ने हंसते हंसते रोते हुए मुझे बताया कि मैंने राइट ब्रदर्स और एडिशन के आविष्कार का पूरा दही वड़ा कर दिया है। मैंने शर्म के मारे वहीं जमीन में धस जाना चाहा। उस दिन मुझे समझ आया कि मेरा ओवर कॉन्फिडेंस ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने बिना पूरी जानकारी के सिर्फ अच्छा दिखाने और सबसे आगे निकलने के चक्कर में स्टेज पर इतना बड़ा ब्लंडर किया। इस मज़ेदार भूल ने मुझे सिखाया कि जिंदगी में मानसिकता हमेशा सीखने वाली होनी चाहिए, ना कि दिखावे वाली। जब तक आपके पास अंदर सही ज्ञान और सच्चाई ना हो, तब तक बाहर का दिखावा आपको सिर्फ हंसी का पात्र बनाता है। आज 10वीं कक्षा में आने के बाद भी जब भी मैं कुछ बोलती हूँ तो पहले अपनी जानकारी को अंदर से मजबूत करती हूँ, फिर बाहर व्यवहार में लाती हूँ। धन्यवाद।
4: नमस्कार, मैं प्राची आज आप सबके समक्ष प्रकृति और मानव जीवन के अटूट संबंध को दर्शाती पेड़ विषय पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पेड़ केवल पेड़ नहीं होते, धरती की मौन प्रार्थना होते हैं। धूप की तपती राहों में छाया बनकर खड़े रहते हैं। पत्थर खाकर भी फल देते, कटकर भी उपकार करते हैं। अपने जीवन का हर क्षण दूसरों के नाम करते हैं। जड़ों से धरती को थामे रखते, शाखाओं से आकाश छूते हैं। हमें सिखाते हैं हर पल कैसे झुककर भी ऊंचा जीते हैं। जब कोई पेड़ गिरता है, केवल लकड़ी नहीं टूटती, टूटती है एक शीतल छांव, एक चिड़िया की दुनिया छूटती। आओ पेड़ों का मान करें, इनका हर संभव सम्मान करें, क्योंकि पेड़ बचेगा तभी तो धरती पर जीवन के गीत गूंजेंगे। धन्यवाद।
0: वाह, बच्चों ने तो बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई दी थी।
5: हाँ भैया, और अब हमारी बारी है कि हम बच्चों को एक जानकारी देंगे।
0: और जानकारी क्या दीदी?
5: वो जानकारी है कि इंद्रधनुष बनता है आखिर कैसे।
0: वाह, तो ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी है। तो बच्चों, प्रकृति की हर रचना है निराली, इंद्रधनुष की छटा सबसे मतवाली।
5: और भैया, बच्चों के चेहरे की मुस्कान ये बयां कर रही है कि इंद्रधनुष को देखना खूब भाता है बच्चों को, है ना बच्चों?
0: हाँ, बारिश के बाद अचानक आसमान में रंग बिरंगा सुंदर सा इंद्रधनुष, और आप नन्हे बच्चे उसे देखकर उछल कूद करने लगते हैं, है ना? चिंटू रोहन को दौड़ाकर बुला लाता है कि देखो देखो देखो कितना सुंदर नजारा है आसमान में।
5: तो वहीं सबसे बड़ा भैया जो सौरभ है, जल्दी से मोबाइल के कैमरे में उसे कैद करना चाहता है। क्यों बच्चों, सही बात है ना?
0: हाँ दीदी, इंद्रधनुष देखने की चाह हम कैसे भूल सकते हैं। अपना बाल मन भी अक्सर ये सवाल पूछता है कि आखिर ये बनता कैसे है, बारिश के बाद ही आसमान में क्यों दिखता है। याद है ना दीदी अपना बचपन?
5: बिल्कुल याद है भैया, और हमारे जमाने में तो मोबाइल भी नहीं था। हम भी घर के छत पर चढ़कर बड़े बुजुर्गों से या अपने शिक्षक से जानते थे कि भाई ये इंद्रधनुष कब और कैसे बनता है।
0: तो चलिए हम इस पहेली को आज अपने बच्चों को बताते हैं। बच्चों, सूर्य का प्रकाश सफेद दिखाई देता है ना, लेकिन वास्तव में ये 7 रंगों से मिलकर बनता है।
5: हाँ बच्चों, जब बारिश के बाद हवा में छोटी छोटी पानी की बूंदें तैरती है, तब सूर्य की किरणें उन बूंदों में प्रवेश कर जाती है। बच्चों, जैसा कि भैया ने कहा कि सूर्य का प्रकाश में 7 रंग के रंग मौजूद होते हैं, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, जिसे हम सब देखते हैं। इन रंगों का पता प्रिज्म के जरिए पता चलता है। इंद्रधनुष असल में प्रकृति का प्रिज्म है। दरअसल पानी की छोटी छोटी बूंदें पारदर्शी प्रिज्म का काम करती है। जब सूर्य का प्रकाश उससे होकर गुजरता है तो वो 7 अलग अलग रंगों में टूट जाता है। इसी वजह से हमें इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है।
0: तो बच्चों, अगली बार जब बारिश के बाद धूप निकले तो छत पर जाकर आसमान की ओर जरूर देखना। शायद आज ही प्रकृति आप सभी बच्चों को ये रंग बिरंगा उपहार दिखा दे, और हमें भी बताइएगा कि कैसा लगा। तो बच्चों, ये इंद्रधनुष के बारे में जानकारी थी, और अब एक और ही बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, और वो जानकारी है बच्चों की अजनबी से रहें सावधान, अपनी सुरक्षा का रखें ध्यान।
5: बच्चों, क्योंकि आप में से अभी कई ऐसे बच्चे हैं जो बहुत छोटे हैं, उन्हें यह मालूम नहीं है कि किससे सावधान रहना है और कैसे अपनी सुरक्षा करनी है।
0: हाँ बच्चों, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। आप भोले हैं, कई लोगों से मिलते हैं जो नए व्यक्ति भी होंगे, लेकिन सब पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए।
5: हाँ बच्चों, यदि कोई अजनबी आपको चॉकलेट, खिलौना, मोबाइल या मोबाइल में गेम दिखाए, या पैसे दे, या कोई उपहार में कोई आपके पसंद का कोई चीज दे, तो आप उसे स्वीकार ना करें, या अपने साथ स्कूटी, साइकिल पर चलने को कहे तो उसे आप ना कहना सीखें। और हाँ, जब आप असहज महसूस करें तो तुरंत 112 नंबर पर कॉल करें। और भैया हम बच्चों को आज बताना चाहेंगे कि जब हमारे बच्चे छोटे हों या बड़े, उन्हें अपने घर के माता पिता किसी भी एक आदमी का नंबर अपने पास जरूर रखना चाहिए और उसे याद करके रखना चाहिए बच्चों,
0: क्योंकि वो कभी मुसीबत के समय में काम आ सकता है और जिसकी सूचना आप तुरंत अपने परिवार को दे सकते हैं।
5: बच्चों एक बात और कहना चाहूंगी कि अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे घर में कौन कौन से सदस्य रहते हैं, अपने घर का टेलीफोन नंबर, परिवार की जानकारी किसी अजनबी को न दें, तथा कोई भी झांसा जैसे आपको वो अजनबी देता है तो परिवार के लोग जैसे बीमार हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, ऐसे बहुत सारे बहाने आपको बनाएंगे, लेकिन आप उनसे घबरा कर उनके साथ मत चले जाइएगा, बल्कि आप अपनी बुद्धि से काम कीजिएगा, यानी कि जैसा कि भैया ने कहा, आप तुरंत अपने घर पे फोन करिएगा।
0: हाँ बच्चों, याद रखिए कि सतर्कता ही सबसे बड़ी कुंजी है और अपनी सुरक्षा कैसे, कब और किस परिस्थिति में करनी है उसका हमेशा ख्याल रखिए। हाँ बच्चों, अजनबी से रहें सावधान, अपनी सुरक्षा का रखें ध्यान, समझदारी निभाएंगे तो सुरक्षित जीवन पाएंगे।
5: और भैया हमने बच्चों को इतनी अच्छी जानकारी दी और अब
0: बच्चों हर हफ्ते हम आपको एक प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में जानकारी देते हैं, तो आज हम जिस प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं वो हैं स्वर्गीय महाराजा रणजीत सिंह।
5: बच्चों महाराजा रणजीत सिंह भारत के इतिहास के महान शासकों में से एक थे। उन्हें शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। वे सिख साम्राज्य के संस्थापक थे और अपने वीरता, न्यायप्रियता और कुशल प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे।
0: बच्चों महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को जो वर्तमान पाकिस्तान में है वहां हुआ था। उनके पिता महासिंह सुकरचिया मिसल के प्रमुख थे। बचपन में चेचक होने के कारण उनकी एक आंख की रोशनी चली गई थी, लेकिन इससे उनके साहस और आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं आई।
5: जब रणजीत सिंह केवल 12 वर्ष के थे तब उनके पिता का निधन हो गया। इसके बाद उन्होंने कम उम्र में ही अपने राज्य की जिम्मेदारी संभाल ली। वे बचपन से ही बहादुर, बुद्धिमान और नेतृत्व क्षमता से भरपूर थे।
0: बच्चों 18वीं शताब्दी के अंत में पंजाब कई छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ था। रणजीत सिंह ने अपनी सूझबूझ और सैन्य शक्ति के बल पर इन क्षेत्रों को एकजुट किया। 1799 में उन्होंने लाहौर पर अधिकार कर लिया और 1801 में स्वयं को पंजाब का महाराजा घोषित किया।
5: महाराजा रणजीत सिंह ने अपने साम्राज्य का विस्तार कश्मीर, मुल्तान, पेशावर और अटक तक किया। उन्होंने एक शक्तिशाली सेना का गठन किया जिसमें आधुनिक हथियारों और युद्ध तकनीकों का उपयोग किया जाता था। उनकी सेना को उस समय की सबसे मजबूत सेनाओं में गिना जाता था।
0: बच्चों रणजीत सिंह एक कुशल प्रशासक थे। उनके शासन में सभी धर्मों के लोगों को सम्मान मिलता था। उन्होंने अपने दरबार में सिख, हिंदू और मुसलमान अधिकारियों को महत्वपूर्ण पद दिए। वे जनता की समस्याओं को सुनते थे और न्यायपूर्ण निर्णय देते थे।
5: उनके शासनकाल में पंजाब में शांति, समृद्धि और व्यापार का विकास हुआ। किसानों, व्यापारियों और आम जनता को सुरक्षा और सुविधाएं प्राप्त हुई थी। बच्चों
0: उन्होंने श्री हरमिंदर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर के सौंदर्यीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मंदिर के ऊपरी भाग को सोने से मढ़वाने के कारण इसे स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा।
5: 27 जून 1839 को लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह का निधन हो गया। उनके निधन के बाद सिख साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ गया।
0: तो बच्चों महाराजा रणजीत सिंह केवल एक महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी शासक, कुशल प्रशासक और धार्मिक सहिष्णुता के प्रतीक भी थे। उन्होंने पंजाब को एक शक्तिशाली और संगठित राज्य बनाया था तथा अपने न्यायपूर्ण शासन से जनता का दिल भी जीता और इसी कारण वे भारतीय इतिहास में आज भी सम्मान और गौरव के साथ याद किए जाते हैं। तो बच्चों ये थे महाराजा रणजीत सिंह। और दीदी अब हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त होने वाला है, तो चलते चलते हम बच्चों को बता दें कि इस कार्यक्रम की जो प्रस्तुति थी वो गौरव पांडे की थी। तो अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी बच्चों, कुछ नई नई जानकारियों के साथ, कुछ कविताओं के साथ, कुछ कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा।
6: जय हिंद बच्चों।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ एवं FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब आपको बता दें आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण।

आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण कुछ इस प्रकार है। अब से थोड़ी ही देर में यानी 4:35 से आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांस सरगम। शाम 5 होंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। 5:02 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम युववाणी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज चर्चा का विषय होगा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, तनाव से राहत देता मेडिटेशन, गीतों भरी कहानी, करे योग।

शाम 5:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम श्रमिक लोक। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा का विषय होगा सहज योग गरिमामय जीवन, वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक आवश्यकताओं के अनुकूल योग, अच्छे स्वास्थ्य में अटूट विश्वास, विकसित भारत की मजबूत नींव, नव्या पहल, किशोरियों का कौशल विकास और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम, हस्तशिल्प में नवाचार, पुरानी कला नया अंदाज। शाम 6:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। 6:02 पर होगा कार्यक्रम खेती बारी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा का विषय होगा टपक सिंचाई का महत्व, साथ ही आप सुनेंगे कुछ कृषि गीत एवं प्रश्नोत्तरी आप सुन सकेंगे। पशुओं में होने वाली प्रमुख विषाक्तताएं, विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर दीक्षा मलेठा। 6:32 से आप सुन सकेंगे ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मैच का सीधा प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से।

सात बजे आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार एवं उसके तत्पश्चात क्रिकेट मैच का प्रसारण जारी रखा जाएगा। ये था आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण। अगला कार्यक्रम सांस सरगम बस कुछ ही देर में है।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सांझ सरगम। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में पहला गीत फिल्म कहो ना प्यार है से, स्वर लकी अली एवं रम्या का।

लकी अली एवं रम्या के स्वर में आप सुन रहे थे। इब्राहिम अश का लिखा हुआ गीत, संगीत राजेश रोशन का एवं फिल्म का नाम था कहो ना प्यार है। आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म कॉकटेल से, स्वर नीरज श्रीधर एवं कविता शेठ के।

कविता सेठ के स्वर में, शब्द रचनाएं शाद कामिल की एवं संगीत प्रीतम चक्रवर्ती का। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म वेक अप सिट से, स्वर कविता सेठ एवं अमिताभ भट्टाचार्य के।

वेकअप सेट फिल्म से आप सुन रहे थे ये प्यारा संगीत कविता सेठ एवं अमिताभ भट्टाचार्य के स्वर में, शब्द रचना जावेद अख्तर की एवं संगीत अमित त्रिवेदी का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सांस सरगम में अगला गीत।

कुमार शानू और लता मंगेशकर के सुरों में आप सुन रही थी ये प्यारा सा गीत फिल्म जब प्यार किसी से होता है से। शब्द रचना आनंद बख्शी की एवं संगीत जतिन ललित का। इसी गीत के साथ श्रोताओं कार्यक्रम सांस सरगम अब यहीं संपन्न होता है। शाम के 5 बजने को है, बस कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोक भवन के बिरसा मंडप में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का अमूल्य उपहार है, जो शरीर और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित कर स्वस्थ तथा अनुशासित जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। योग दिवस पर राजकीय समारोह का आयोजन रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आयोजित किया गया, जिसमें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी समेत कई गणमान्य लोगों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज गोड्डा में 10वीं और 12वीं की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। मौके पर उन्होंने कहा कि यह सम्मान केवल अंकों का नहीं बल्कि उन अनगिनत घंटों की मेहनत, संघर्ष और समर्पण का है, जिसने इन बच्चों को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। श्रीमती पांडे ने कहा कि ऐसे आयोजन न केवल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करते हैं बल्कि हजारों अन्य विद्यार्थियों को भी अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करते हैं। राजधानी रांची समेत राज्यभर के 67 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा जारी है। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए एनटीए और जिला प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। गौरतलब है कि पुनर्परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। 2 बजे से शुरू हुई यह परीक्षा शाम 5:15 बजे तक चलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र तात्कालिक पूर्वानुमान में बताया है कि बोकारो, पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम, गोड्डा, पाकुड़, रामगढ़ और सरायकेला खरसावां जिले में अगले कुछ घंटों के दौरान गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पॉजिटिविटी से भरे होंगे। तो आज के इस आधे घंटे के सफ़र में मैं हूं आप सबों का दोस्त उदय,
1: और मैं हूं श्रेया, और आप सबको हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार।
0: दोस्तों, हम अपने कार्यक्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं और बातें करते हैं आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और तनाव से राहत देने वाले मेडिटेशन की। वर्तमान समय में भाग दौड़ भरी जीवन शैली, काम का दबाव और बढ़ती जिम्मेदारियों के कारण तनाव हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। ऐसे में योग और ध्यान न केवल शरीर को स्वस्थ रखते हैं बल्कि मन को भी शांति प्रदान करते हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, हर वर्ष 21 जून को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। योग भारत का प्राचीन धरोहर है जो शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करके रखता है।
0: योग के नियमित अभ्यास से शरीर की लचीला बनता है, योग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और मानसिक तनाव कम होता है। लेकिन जब बात मन की शांति की आती है तो मेडिटेशन यानी ध्यान की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है।
1: बिल्कुल दोस्तों, ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करते हैं। प्रतिदिन केवल 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन भी तनाव, चिंता और नकारात्मक विचारों को कम करने में मदद कर सकता है। ध्यान करने से एकाग्रता बढ़ती है और नींद बेहतर होती है और मन अधिक शांत महसूस करता है।
0: आइए श्रोताओं के लिए एक छोटा सा मेडिटेशन अभ्यास करते हैं। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करें, धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ दें। अब अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें। यदि कोई विचार आए तो उसे जाने दें और पुनः अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। उम्मीद है कि आप पहले से अधिक शांत और सहज महसूस कर रहे होंगे।
1: बिल्कुल दोस्तों, योग और मेडिटेशन केवल एक दिन का अभ्यास नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन शैली की ओर बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि हम प्रतिदिन कुछ मिनट योग करें और ध्यान दें तो हम तनाव को कम कर सकते हैं और बेहतर शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं।
0: बिल्कुल दोस्तों, अब हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने युवानी कार्यक्रम के खास सेगमेंट गीतों भरी कहानी का सिलसिला शुरू करते हैं। आप सभी मेरे प्यारे अजीज दोस्तों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार, स्वागत। दोस्तों, आज की दौड़ती भागती जिंदगी में हमारे पास सब कुछ है, पैसा है, रुतबा है और सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त भी हैं। लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में जब हम अकेले बैठते हैं तो दिल पूछता है कि वो जो बचपन का यार था वो कहाँ खो गया। आज की कहानी किसी आशिक की नहीं बल्कि दो ऐसे दोस्तों की है जिनकी किस्मत ने उन्हें अलग तो किया पर उनका एक वादा आज भी जिंदा है। यह कहानी है आनंद और कबीर की। झारखंड के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले दो लड़के आनंद, जो स्वभाव से शांत और पढ़ाई में तेज था, और कबीर, जो पूरे मोहल्ले की नाक में दम करके रखता था। दोनों के पास एक ही साइकिल थी। साइकिल कबीर चलाता और आनंद पीछे बैठकर उसे संभालता था। दोनों 12वीं की परीक्षा पास की तो एक शाम नदी के किनारे बैठकर एक वादा किया था। कबीर ने कहा था, देख भाई, तू शहर जा रहा है बड़ा आदमी बनने, पर याद रखना, अगर कभी भी मुसीबत में हो तो मुझे एक बस चिट्ठी लिख देना, तेरा यह भाई सात समंदर पार से भी दौड़कर चला आएगा। वही मासूम बचपन, वही बेफिक्र दोस्ती। चलिए, यादों के इसी पहले पड़ाव पे सुनते हैं हमारा आज का पहला गीत।

0: कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है गीतों भरी कहानी में। कहानी में आगे बढ़ते हैं। आनंद दिल्ली आ गया, उसने बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, फिर एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लग गई। वक्त का पहिया इतनी तेजी से घूमा कि आनंद की जिंदगी का मतलब सिर्फ फाइल्स, मीटिंग्स और लैपटॉप बनकर रह गया। शुरू शुरू में वह कबीर को खत लिखता था, फिर धीरे धीरे खत की जगह फ़ोन कॉल्स ने ले लिया और एक वक्त ऐसा भी आया जब कबीर का नंबर ही खो गया। कबीर गाँव में ही रह गया, उसने अपने पिता की कपड़े की छोटी सी दुकान संभाल ली। आनंद

को लगता था कि अब कबीर की दुनिया और उसकी दुनिया में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। आनंद अब बड़े होटलों में कॉफ़ी पीता था और कबीर आज भी नुक्कड़ की चाय की दुकान पर बैठता था। आनंद को लगा कि अब उनके बीच बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है। अक्सर हम भी यही गलती करते हैं, है ना? हम रिश्तों को कामयाबी के तराजू में तौलने लगते हैं। तो आइए सुनते हैं वक्त के इसी बदलते रंग और इंसानी मजबूरियों को बयां करता हमारा दूसरा गीत।

सुन रहे हैं ना आप गीतों भरी कहानी मेरे यानी उदय के साथ। जिंदगी में जब सब कुछ सही चल रहा हो तभी किस्मत एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। आनंद को दफ्तर के काम के सिलसिले से विदेश जाने का मौका मिला। वह पैकिंग कर रहा था तभी उसे पुराने सूटकेस के नीचे एक लिफाफा निकला, धूल से सना हुआ नीला लिफाफा। आनंद ने चौंक कर उसे उठाया। उस पर गांव का पता था, लिखावट कबीर की थी। यह चिट्ठी 2 साल पुरानी थी जो आनंद की लापरवाही की वजह से कभी खुली नहीं थी। आनंद ने कांपते हाथों से उस खत को खोला। खत में लिखा था, आनंद भाई तुम तो बड़े शहर जाकर हमें भूल ही गए। कोई बात नहीं, तुम्हारी तरक्की देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। माँ कहती है कि बड़े लोगों के पास वक्त नहीं होता, पर भाई इस बार मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। दुकान पर कर्ज बहुत बढ़ गया है, बाजार वाले दुकान कुर्क करने की धमकी दे रहे हैं। अगर हो सके तो मुझे थोड़े पैसे उधार दे देना, मैं पाई पाई करके चुका दूंगा। तुमने कहा था ना कि मुसीबत में याद करना, बस इसलिए लिख रहा हूँ। चिट्ठी पढ़कर आनंद के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। 2 साल पहले उसका भाई मुसीबत में था और वह यहाँ लाखों के पैकेज का जश्न मना रहा था। उसने तुरंत विदेश जाने का प्लान रद्द किया और अगली ही ट्रेन पकड़कर अपने गांव की तरफ भागा। रास्ते भर उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और दिल में बस एक ही दुआ थी कि सब ठीक हो। आइए सुनते हैं इसी तड़प और पछतावे को समेटे हमारा तीसरा गीत।

स्वागत है दोस्तों कहानी के इस आखिरी और सबसे अहम हिस्से में। आनंद जब गांव पहुंचा तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह भागता हुआ कबीर की उसी पुरानी कपड़े की दुकान पर गया। वहां कबीर नहीं था, दुकान का बोर्ड बदला हुआ था। आनंद का गला सूख गया। उसने पड़ोस के चाय वाले से पूछा, भाई कबीर कहाँ है, उसकी दुकान को क्या हुआ? चाय वाले ने आनंद को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, अरे आनंद बाबू, आप कबीर तो 2 साल पहले सब कुछ हार गया था, दुकान भी बिक गई। आनंद की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने रोते हुए पूछा, कहाँ है वह? चाय वाले ने मुस्कुराकर कहा, वह सामने नदी के किनारे पेड़ के नीचे बैठा होगा, अब वह बच्चों को मुफ्त में पतंग उड़ाना सिखाता है। आनंद पागलों की तरह नदी की तरफ भागा। दूर पेड़ के नीचे कबीर बैठा था, घुटनों पर हाथ रखे नदी को निहारता हुआ। आनंद ने पीछे से आवाज दी, कबीर। कबीर ने मुड़कर देखा, 2 साल का वक्त, चेहरों पर थोड़ी सी झुर्रियां, लेकिन आंखों में वही पुराना भोलापन था। कबीर खड़ा हुआ, उसने आनंद के महंगे कोट को नहीं देखा, उसने आनंद की आंखों के आंसू देखे। कबीर आगे बढ़ा और उसने आनंद को गले लगा लिया। आनंद रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दे भाई, मुझे तेरी चिट्ठी 2 साल बाद मिली, मैं बहुत बुरा दोस्त हूँ। कबीर ने आनंद की पीठ थपथपाई और हंसते हुए बोला, अरे पगले, रोता क्यों है, दुकान गई तो क्या हुआ, मेरा भाई तो वापस आ गया, मुझे पैसों की नहीं तेरी जरूरत थी। दोस्तों, कबीर ने साबित कर दिया कि दोस्ती में कभी सॉरी और थैंक यू नहीं होती, वहाँ सिर्फ एक दूसरे का एहसास मायने रखता है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा दोस्त है जिससे कोई गलतफहमी हुई हो तो आज ही सारे गिले शिकवे मिटा दीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त उदय। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों को गले लगाते रहिए। चलते चलते सुनते हैं आज का आखिरी और सदाबहार गीत।

0: नमस्कार जोहार।
1: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम श्रमिक लोग।

0: नमस्कार जोहार श्रमिक साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम श्रमिक लोक में। मैं हूं आपका दोस्त आशीष और आज मेरे साथ हैं पूजा। आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार आशीष, आप सभी को भी, हमारे जितने भी आज हमारे श्रोता हमें सुन रहे हैं उन्हें भी प्यार भरा जोहार नमस्कार। आशा करती हूँ जितने भी हमारे मित्र हैं जो हमें सुनते हैं रोजाना, वो सभी कुशल मंगल होंगे, और होना भी चाहिए क्योंकि आज का जो दिन है ना वो बेहद ही खास है, और जितने भी हमारे श्रोता हैं उन्होंने भी आज योग तो जरूर कर लिया होगा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने पूजा। आज 21 जून को हम पूरी दुनिया के साथ 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। इस वर्ष का थीम है सहज योग, गरिमामय जीवन, वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक आवश्यकताओं के अनुकूल योग।
1: बिल्कुल कह सकते हैं कि ये जो पड़ाव है, अगर हम अपने वृद्धजनों की बात करें जो इस उम्र में, उनको स्वाभाविक है कि शरीर में कहीं ना कहीं पीड़ा दर्द लगा रहता है। इस अवस्था में शरीर को विशेष देखभाल की जरूरत होती है और उसी के साथ जरूरत होती है संतुलित जो दिनचर्या है हमारा उसको करने की, ताकि वो सकारात्मक सोच सके और आवश्यकता अनुसार सभी कार्य कर सके। ऐसे में योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि आपके अपने मन को भी बहुत शांति और ऊर्जा प्रदान करता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और साथियों, उम्र बढ़ने के साथ शरीर की लचक कम होने लगती है, जोड़ों में दर्द, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और तनाव जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सक्रिय जीवन समाप्त हो गया। योग को सरल और सुरक्षित अभ्यास आपको बनाए स्वस्थ, और खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों, आप लोगों के लिए योग आत्मनिर्भर और प्रसन्न बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: बिल्कुल, अगर हम अपने विशेषज्ञों की बात माने तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए योग का उद्देश्य कठिन आसनों का अभ्यास नहीं है बल्कि शरीर की क्षमता अनुसार संतुलित गतिविधि करना है, जैसे तड़ासन, वृक्षासन, व्रजासन, ये सारे जिस तरह के आसन है ना वो आराम से वो बैठ के कर सकते हैं, और उन्हें बहुत ज्यादा ऐसा ना कि घुटनों के दर्द है, पाँव में दर्द है, अगर उनको इस तरह की दर्द है तो आप इसे थोड़ा सा बाध्य कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत आसान प्रक्रिया है जिसे आप अपना कर खुद को बिल्कुल लचीला बनाए रख सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और पूजा ने भी जो कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप प्राणायाम और ध्यान भी कर सकते हैं जो कि योग के महत्वपूर्ण अंग ही होते हैं। अनुलोम विलोम, भ्रामरी और गहरी श्वास जैसी क्रियाएं फेफड़ों की क्षमता बढ़ाती है, तनाव कम करती है और मानसिक शांति प्रदान करती है।
1: बिल्कुल, योग केवल शारीरिक व्यायाम बिल्कुल भी नहीं है, जैसा कि हमने कहा ये बिल्कुल एक कह सकते हैं ये जीवन जीने की कला है, जहाँ पे आप अपने शरीर अपने मन को एकाग्र अवस्था में करके उसे बिल्कुल स्वस्थ बना सकते हैं। आपने सुना होगा कई लोग कहते हैं कि जो पहले जमाने में इस तरह के हॉस्पिटल्स नहीं हुआ करते थे, आपको मेडिसिन जो दुकानें आप हर जगह देख पा रहे नहीं होते थे, उस वक्त होते थे आपके जो योग गुरु होते थे, उस वक्त के वो क्या आपको योग क्रिया बताते थे जो आपके शरीर में ही आपकी आपको पता होना चाहिए कि आपकी सारी बीमारियों का जो हल है ना वो आपके दिमाग के में है, और उसको बस कैसे चालू कर सकते हैं,
0: उसे बस सक्रिय कर सकते हैं योग के माध्यम से।
1: योग के माध्यम से आपने अगर अपने दिमाग को सक्रिय कर लिया, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम सुबह उठते हैं तो हम हमारे हाथ पैर जैसे सोते हैं तो सोने वाली अवस्था में होते हैं, लेकिन हम उठते हैं हमारा हाथ चालू होता है, उठते हैं तो पांव चालू होता है, आंखें खुलती, कहीं ना कहीं ये हम एक सिग्नल देते हैं अपने दिमाग को कि अब ये करना है। तो उसी तरीके से अगर आपके शरीर में, इवन आपने ये भी सुना होगा कि अभी कैंसर का भी इलाज हो रहा है वो भी योग के माध्यम से, क्योंकि अगर शरीर में गांठ है और आपने बहुत ध्यान से योग को अपनाया है, अच्छे से उन चीजों को अपनाया है जिस तरह से अगर हमारे योग गुरु बताते हैं, तो आपके बड़े से बड़े जो रोग हैं वो भी खत्म हो जाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और नियमित योगाभ्यास से वरिष्ठ नागरिकों की नींद बेहतर होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और अकेलेपन की भावना कम होती है। यह उन्हें दैनिक कार्यों को स्वयं करने में सक्षम बनाता है, जिससे जीवन में गरिमा और आत्मसम्मान बना रहता है।
1: बिल्कुल, तो क्यों ना हम इस बार कोशिश करें कि हमारे जो बुजुर्ग हैं हमारे घर में खुद योग के साथ जुड़ें और अपने लिए कह सकते हैं वो प्रेरित हो, खुद के लिए प्रेरित हो और दूसरों को प्रेरित भी करे ताकि योग शुरू कर सके और चिकित्सीय जो सलाह है वो भी जरूर ले लिया जाए, क्योंकि एक उम्र में बहुत सारी परेशानियां भी होती है, उस वक्त अगर हम अपने डॉक्टर से संपर्क कर ले, सही जानकारी ले ले तो योग अगर अपनाएंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और ये हम जानते हैं कि बुजुर्गी अवस्था में जो होती है बहुत सारी बीमारियां हमें घेर लेती हैं, जैसे किसी को मान लीजिए हृदय की बीमारी है, उच्च रक्तचाप है, तो कोई भी क्रियाएं वो तेजी से ना करें, आराम आराम से करें, चाहे वो प्राणायाम हो चाहे कोई भी योगाभ्यास हो, वो आराम आराम से करें और योग को जीवन का हिस्सा बनाएं और वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को अधिक स्वस्थ और खुशहाल और सम्मानपूर्वक बनाएं।
1: बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए आप अगर 2 से 3 मिनट भी रोजाना निकालते हैं तो आप बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। अगर हम उपाय बताएं तो दीर्घ श्वास एक आसन है जिसमें 6 से 8 बार उस तरीके से अगर आप पेट को बाहर निकालते हुए गहरी सांस लें और धीरे धीरे उसे छोड़ते हैं तो भी ये योग ही है और आप इससे बहुत अच्छा अपने आप को फिट रख सकते हैं। अनुलोम विलोम तो हम सभी जानते हैं ये सबके लिए कितना कारगर है, और अगर आप वजन घटाना और बढ़ाना चाहते हैं तो भी योग का आप साथ ले सकते हैं।
0: ये बड़ी बात आपने कही कि योग से वजन घटते तो हैं, वजन बढ़ते भी।
1: बिल्कुल, आपको बस सही जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि योग है ना, आपके शरीर से एक्स्ट्रा जो फैट है ना वो निकाल देता है और आपको मसल्स में, मतलब उस फैट को मसल्स में बदल देता है।
0: तो क्यों ना इसी से

0: संबंधित और जानकारियां ली है।
1: बिल्कुल, और आज जानकारी हम दिला रहे हैं आपको, आज एक विशेष जानकारी जो लेकर आए हैं, योग बनाए निरोग, उसे लेकर आए हैं कार्तिका, और इसे बातचीत की है आशीष ने।
2: साथियों, योगा एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जो शरीर, मन और आत्मा के संतुलन और एकता पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धि भी होता है। योग का एक और अर्थ है जोड़ना या एकता स्थापित करना। योग बनाए निरोग, इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे, और आज हमारे साथ हैं योग विशेषज्ञ कार्तिका। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए, और सभी श्रोता बनों को मेरा नमस्कार।
2: तो कार्तिका जी, योगा के अपने जर्नी के बारे में हमें बताएं।
3: मेरी योगा जर्नी एक साधारण जिज्ञासा से शुरू हुई थी जो धीरे धीरे मुझे यहाँ तक ले आई। शुरुआत में योगा मेरे लिए केवल एक एक्सरसाइज था, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस गहरा होता गया, मैंने महसूस किया कि योगा केवल बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने का तरीका नहीं है, यह तो लाइफ को समझने और बैलेंस करने का एक कंप्लीट प्रोसेस है।
2: और हम जानना चाहेंगे कि कार्तिका, क्या आपने योगा में शिक्षा ग्रहण की है?
3: जी, मैंने योगा में शिक्षा ग्रहण की है। मैंने योगा में ग्रेजुएशन किया है, और मैं योगा की पढ़ाई मैंने ग्रेजुएशन में स्टार्ट किया, तो मुझे योगा के क्लासिकल बुक्स को भी पढ़ने का मौका मिला और मेडिटेशन की गहराइयों को भी समझने का अवसर मिला।
2: अच्छा, तो चीजों को पढ़ा, हाँ बताइए क्या बताना चाह रहे हैं।
3: मैं पिछले 5 वर्षों से योगा टीचर के रूप में लोगों को योगा सिखा रही हूँ।
2: अच्छा अच्छा, तो ये आपका एक लंबा करियर रहा। अर्पिका जी, आपने योगा शिक्षिका के रूप में ही अपना करियर चुना, कोई खास वजह?
3: ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं जहाँ भी गई हूँ मुझसे अधिकतर ये सवाल पूछे गए हैं। मैंने योगा टीचर के रूप में अपना करियर इसलिए चुना क्योंकि योगा ने मेरे लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस किए। जब मैंने योगा की पढ़ाई शुरू की थी तब मुझे खुद के अंदर एक ऐसी पीस और स्टेबिलिटी का एक्सपीरियंस हुआ जिसे पहले मैंने कभी महसूस नहीं किया था। वो एक्सपीरियंस इतना पॉजिटिव और इंस्पायरिंग था कि मैंने तय किया कि मैं इस नॉलेज और पीस को दूसरों के साथ भी बांटना चाहूंगी।
2: और जैसा आप बता रहे हैं कि आपके जीवन में काफी कुछ बदलाव आए और काफी पीस हुआ, आपको स्ट्रेंथ मिला, तो मैं और हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि वो क्या क्या बदलाव आपके जीवन में योगा के द्वारा आया है?
3: योगा ने न केवल मुझे मेंटली स्ट्रांग बनाया बल्कि मुझे यह भी सिखाया कि हर सिचुएशन में बैलेंस कैसे रहना है। और एक तो टीचर के रूप में जब मैं देखती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स योगा के माध्यम से फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से बेहतर महसूस करते हैं तो वो मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाती है। इस कैरियर को चुनना मेरे लिए सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है बल्कि एक सेवा भी है।
2: किस प्रकार की योगा का प्रशिक्षण आपके द्वारा दिया जाता है?
3: मेरे द्वारा दी जाने वाली योगा ट्रेनिंग डिफरेंट लेवल्स और आवश्यकताओं के अनुसार तैयार की जाती है। मैं मेनली हठ योगा, विन्यास योगा और प्राणायाम पर केंद्रित प्रैक्टिस करवाती हूँ। साथ ही मैं मेडिटेशन और स्ट्रेस रिलीफ योग सेशंस भी कराती हूँ जो आज की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल में मेंटल पीस पाने में बहुत ही हेल्पफुल होती है।
2: तो कार्तिका जी, आप योगा किन लोगों को सिखाते हैं? कोई खास वर्ग है या जो भी चाहे आपसे सीख सकते हैं?
3: मेरी योगा क्लासेस सभी एजेस और योगा के अनुभव स्तर के लिए उपयुक्त होती है। चाहे आप शुरुआती हो या फिर रेगुलर प्रैक्टिस करने वाले साधक, मैं हर स्टूडेंट की जरूरत को समझकर व्यक्तिगत मार्गदर्शन देने की कोशिश करती हूँ ताकि वे योगा से जुड़ाव महसूस करें और अपनी बॉडी, मन और आत्मा के बीच बैलेंस बना सके। साथ ही ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में योगा सिखाती हूँ ताकि हर कोई कभी कहीं से भी इस साधन साधना से जुड़ सके।
2: मुझे लगता है कि कोरोना के बाद ये ऑनलाइन योगा कोरोना के दौरान और बाद में काफी लोग इसमें अंतर आया, आप इसको कैसे महसूस करती हैं?
3: हाँ, कोरोना के बाद पहले तो ऑफलाइन ही एक साधन था, लेकिन कोरोना के बाद लोगों ने सोचा कि ऑनलाइन की तरफ भी बढ़ा जा

0: सकता है। तो फिर योगा क्लासेस मैंने भी ऑनलाइन देनी शुरू कर दी।
1: अगर कोई व्यक्ति योगा शुरुआत करना चाहे तो उसे कौन कौन से आसन से शुरुआत करना चाहिए या उसे कैसे शुरुआत करना चाहिए?
0: अगर कोई व्यक्ति योगा की शुरुआत करना चाहता है तो पहले तो कुछ इम्पोर्टेंट बातों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि वो सही तरीके से योगा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सके। योगा शुरू करने से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि आप योगा क्यों करना चाहते हैं। जैसे कि आपको स्ट्रेस कम करना हो या बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना हो या फिर वेट कम करना हो, और कुछ लोग मन की शांति के लिए भी करना चाहते हैं।
1: जी
0: योगा योगा सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है बल्कि यह श्वास, ध्यान और लाइफस्टाइल का बैलेंस है। आप योगा की शुरुआत यूट्यूब या फिर बुक्स और अब तो योगा एप्स से भी आप कर सकते हैं। शुरुआत में इजी आसनों के साथ करना चाहिए, जैसे ताड़ासन, वज्रासन, भुजंगासन और श्वासन आदि। फिर आप उसमें प्राणायाम भी जोड़ सकते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, डीप ब्रीदिंग, ये सब।
1: अच्छा, ये तो बहुत सही बात कहा आपने कि प्राणायाम जो है काफी लिनियर स्तर आप इसको शुरू कर सकते हैं। तो
0: जी
1: योगा
0: हाँ,
1: का कोई निश्चित टाइम है या कभी भी इसे किया जा सकता है?
0: देखा जाए तो जब आप शुरुआत करें योगा की तो रेगुलरिटी तो जरूरी बनाए रखें, तभी आपको बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। हर दिन एक निश्चित टाइम फिक्स करें, से तो सुबह का समय सबसे अच्छा माना जाता है। और शुरुआत में 5 से 10 मिनट करें, फिर उस टाइमिंग को आप बढ़ा सकते हैं। और अगर संभव हो तो फिर किसी योगा टीचर से गाइडलाइंस ले या ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात,
1: जी
0: अगर कोई पुरानी चोट है आपको या फिर कोई हेल्थ इश्यूज रहते हैं तो योगा शुरू करने से पहले डॉक्टर या फिर योग एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए।
1: जी तो जैसा बहुत ये सुना जाता है कि योगा खाकर नहीं करना चाहिए, योगा का सबसे अच्छा रिजल्ट आपको तब मिलता है जब आप खाली पेट।
0: आप
1: सही
0: मॉर्निंग
1: है
0: टाइम कर सकते हैं,
1: जी।
0: इसलिए सुबह का टाइम सबसे बेस्ट माना जाता है।
1: तो योगा से किसी व्यक्ति के जीवन में क्या-क्या बदलाव आ सकते हैं?
0: योगा से किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। अगर हम बात करें फिजिकल चेंजेस की तो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, बॉडी की अकड़ भी कम हो जाती है और बॉडी पार्ट्स भी मजबूत होते हैं। और खास तौर पे बात करें हम तो रीढ़ की हड्डी भी मजबूत होती है। इसी तरह हम देखें तो मेंटली भी काफी चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे स्ट्रेस में रिलीफ भी मिलती है और कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ती है और आप पॉजिटिविटी भी फील करते हो। और जब आप योगा कंटिन्यू रखते हैं तो कुछ टाइम बाद स्पिरिचुअलिटी और इनर ग्रोथ भी महसूस कर सकते हैं।
1: बहुत सही कहा आपने। तो कार्तिका जी, जैसा कि आज हमारा विषय है योग बनाए निरोग, इस कथन पर आप क्या कहना चाहेंगे?
0: योग बनाए निरोग एक बेहद सटीक कथन है, क्योंकि योग केवल बीमारी का इलाज नहीं है बल्कि बीमारी से बचाव का विज्ञान है। इस पर मैं यही कहना चाहूंगी कि योग बनाए निरोग, क्योंकि योगा शरीर को स्वस्थ रखता है, मन को भी शांत रखता है और आत्मा को मजबूत बनाता है। योग दवा नहीं पर दवा से कहीं ज्यादा असरदार साधन है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहाँ लोग दवाओं पर निर्भर होते जा रहे हैं, वहाँ योग एक ऐसा नेचुरल उपाय है जो हमें स्वस्थ जीवन की ओर लौटने का रास्ता दिखाता है।
1: कार्तिका जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए हमारे और हमारे श्रोताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: पर फिर से आप सभी का स्वागत। अभी आप सुन रहे थे योग बनाए निरोग, और हमारी आज की जो गेस्ट थी वो थी कार्तिका। तो चलिए सफर में आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या है
1: साथियों? अब हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर व्यक्ति, हर परिवार और पूरे राष्ट्र की प्रगति से जुड़ा है, अच्छे स्वास्थ्य में अटूट विश्वास।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। कहते हैं स्वास्थ्य नागरिक की जो समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, क्योंकि पिछले 12 वर्षों में भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगतियां हुई हैं।
1: बिल्कुल, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण अभियान और गरीबों के लिए उपचार की बेहतर व्यवस्था ने देश के करोड़ों लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।
0: बिल्कुल, आज गांव से लेकर शहरों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बहुत बढ़ी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मजबूत बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। आधुनिक अस्पताल के रूप में उसे बनाया जा रहा है, और कई सारी ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे जल्द से जल्द सेवाएं जो हैं लोगों तक पहुंचाई जा सके।
1: बिल्कुल सही कहा। और श्रमिक साथियों, हम आपको यह भी बता दें कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अनेक अभियान चलाए गए हैं, जैसे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और टीकाकरण जैसे क्षेत्रों में लगातार प्रयास किए गए हैं, जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है।
0: बिल्कुल, एक जो कह सकते हैं एक विकसित भारत का जो हम बात करते हैं, जो सपना देखते हैं, तभी साकार हो सकता है जब हर नागरिक स्वस्थ, सुरक्षित और आत्मविश्वास से भरा हो। अच्छे स्वास्थ्य में विश्वास केवल व्यक्तिगत आवश्यकता नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार भी है। आइए हम सभी स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, नियमित हमारी जो शारीरिक जांच है वो कराएं, और हाँ, सबसे जरूरी, स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार लें।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और क्या सिर्फ बातें करने का ही इरादा है?
0: भाई, अब लगता है आपकी नींद खुली है। आज रविवार है और हम ऐसे ही सिर्फ जानकारियां नहीं दे सकते, कुछ गाने भी हम आपको सुनाते हैं। तो चलिए सुन लेते हैं एक गाना।

0: तो सफ़र में आज हमने आपको बहुत सारी जानकारियाँ दी, जिसमें अभी प्यारे से गाने भी सुनाए, आपको रोग को भगाने के लिए योग की भी जानकारी दे दी, और अब आगे कुछ बचा है क्या जानकारी देने के लिए हमारे श्रमिकों को?
1: जानकारी की बात कहें तो जानकारियां तो कभी खत्म होती नहीं है।
0: बिल्कुल, तो जानकारियां कभी खत्म नहीं होती, लेकिन आपसे बस इतना ही कहेंगे कि जितनी भी सारी हम जानकारियां आपके लिए लेकर आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होते हैं, तो इसलिए उन जानकारियों को अपनाकर खुद के जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव तो आप कर ही सकते हैं। इसी के साथ ना चलते चलते हम आपको बता दें कि अगर आपके अंदर कुछ भी कला है, यानी आपने कुछ आर्टिस्टिक कलाएं हैं जैसे हस्तशिल्प से जुड़े हैं, तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी तकनीकें हैं जिससे आप अपनी जो कला है उसे बहुत ज़्यादा निखार सकते हैं। आपने अपने देखा होगा कई सारे ऐसे राज्य हैं जो अपनी हस्तशिल्प की जो कलाएं हैं उस पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो डिमांड है ना वो विदेशों में, तो आप भी अपनी पुरानी कला को बनाए रखें और
1: नवाचार
0: के माध्यम से उसे दूर दूर तक पहुंचाएं।
1: और ये हो भी रहा है, अब तो आप देखिए हमारे जो सोहराए पेंटिंग्स हैं, जादू पेटियां हैं, ये तो विदेशों में मांग हो रही हैं।
0: बिल्कुल,
1: आप देखेंगे स्टेशन खूबसूरत सजा हुआ, हमारे ब्रिज सजे हुए हैं।
0: बिल्कुल,
1: हमारे
0: कह सकते हैं कि पूरी रांची इसी तरीके से सजी हुई है, कितने को रोजगार मिल रही है, और एक तो हमारा रांची भी खूबसूरत हो रहा है। तो अगर आप भी इसी तरीके से किसी चीज के शौकीन हैं, हस्तशिल्प से जुड़े हैं, तो अपनी कला को और निखारियो। और अब तो भाई इंटरनेट का जमाना है, आपने अगर अपने इंटरनेट में इन चीजों को डाला तो आपकी डिमांड तो ऐसे ही बढ़ेगी। फिलहाल चलते हैं, जाने से पहले आपसे इतना ही कहेंगे, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, रोजाना योग कीजिए। ऐसा नहीं कि आज योग दिवस है तो हम योग की बात कर रहे हैं, नहीं, रोजाना योग कीजिए और खुद को और परिवार को स्वस्थ रखिए।
1: और इसी संदेश दीजिए हमें अनुमति।
0: बिल्कुल,
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रमिक लोक, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ एवं एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 6 बज रहे हैं। और आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोक भवन के बिरसा मंडप में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का अमूल्य उपहार है, जो शरीर और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित कर स्वस्थ तथा अनुशासित जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। योग दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आयोजित किया गया, जिसमें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी समेत कई गणमान्य लोगों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने रांची में विभागीय समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया, ताकि उनका लाभ जरूरतमंदों को मिल सके। श्री हसन ने कहा कि राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास एवं सामाजिक उत्थान के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र से पुलिस ने 3 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 1.5 किलोग्राम अफीम, 7 लाख रुपए नगद, 4 पहिया वाहन और मोटरसाइकिल बरामद किया है। धनबाद में आम उत्पादकों को बाजार से जोड़ने और बागवानी को बढ़ावा देने की दिशा में जिला प्रशासन ने आज आम उत्सव की शुरुआत की है। जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि स्थानीय किसानों द्वारा प्राकृतिक तरीके से उत्पादित आम लोगों द्वारा खूब पसंद किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आम बागवानी के जरिए किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने तात्कालिक पूर्वानुमान में बताया है कि बोकारो, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, खूंटी, कोडरमा, रांची और सिमडेगा जिले में अगले कुछ घंटों के दौरान गरज के साथ बारिश के आसार हैं। इस दौरान आंधी और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: गाछ लगाऊ पर्यावरण के स्वच्छ बनाऊ।
1: सब सुनवैया भाई बहन मन के इला रानी बहन
0: जोहार इला दीदी, और कैसन है?
1: हाँ सब बढ़िया बढ़िया। और रोरे कहो शांति बहन, का हाल चाल है?
0: सब बहुत बेसी। और बताओ घर बटे और गांव घर बटे कैसन हाल चाल है?
1: गांव घर बटे भी सब बढ़िया है। और देखो अपन तो हमें अखन स्वास्थ्य में भी खूब ध्यान देवे लाएगी।
0: हाँ
1: काले की आज एक तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है नहीं? हाँ तो आज कर दिन ही हमें मनाई ला, का चीज मनाई ला? योगा दिवस मनाई ला। और से ले कहल जाएला कि करू योग और रहू निरोग।
0: एकदम सही बात कहली। और देखो कि स्वच्छ शरीर रहब तभी हमरे कोनो काम कर सकीला। और खास करके तो हमरे मन किसान भाई बहिन मन से ही जुड़ल ही, और वह खेतिहार से ही हमरे

0: मन कर जीविका चलेला, तो सील है कि हमारे मन के एकदम स्वच्छ रहे है तभी हमारे मन खेत में उतरबे, अपन फसल के उगाबे, अपन खेत के हरियाली बनाबे। तो खेत से ही तो याद आवत है दीदी कि देखो ने कि अखन तो मानसून तो ऐसा गिरा था कि एक बेला धूप और एक बेला
1: पानी पता नहीं तो, चला था कखन पानी आई कि कखन का हुई है।
0: हाँ, तो देखो तो बगरा पानी भी हो जाए से फसल मन तो बेस नहीं होएला, तो रारे का तरिया थी खेती बाड़ी मन करीला।
1: देखो हम इन जे झारखंड कर पठारी भूमि में रहीला तो ये पानी कर उपलब्धता सालों भर बढ़िया नहीं रहेला है नी, सेले ज्यादातर तो हम इनके जे मानसून वाला बारिश होएला उकरे उपरे आधारित हम इनकर फसल खेती मन रहेला। लेकिन अबरी हम तनी जानकारी कह रही तब पता चलक हमके एक ठो बहुत सुंदर विधि कर जेकर नाम है टपक सिंचाई।
0: अच्छा,
1: और अब हम इन और देखिला कि हमर गांव कर आसपास कर भी जते गांव मन है सैकड़ो में टपक सिंचाई एहे वाला व्यवस्था से बहुत किसान भाई बहन मन अपन पैदावार के बहुत बढ़िया तरीका से बढ़ाए लायक है।
0: नगद बात कहली देखो, और टपक है टपक सिंचाई व्यवस्था ये है कि पानी कर एकदम अच्छा से अच्छा बचत करेला, और इकर में है कि जे हमरे मन दवाई मन छिड़कीला उकरे संगे घुलल रहेला, तो इकर में है कि बगरा उर्वरक मन भी खर्चा नहीं होवेला, और देखो कि उत्पादन है कि एकदम जड़ में ही पानी पहुंचेला, पानी कर बगरा बहाव इधर उधर नहीं होवे से खरपतवार मन भी नहीं होवेला। इकर से है कि फसल है एकदम बेस से उकर उत्पादन होवेला, और देखो कि इकर में है कि अतिरिक्त जो मजदूरी हम इनके लागे लोकर में
1: भी नहीं लागे,
0: नहीं लागे लोकर में भी हमारे मन के बचत होएला। तो बहुत तरह से है कि टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत ही ये आधुनिक एखन हो जा है, और हमारे कर सभे जिकर इकर ले सक्षम है उ मन करे लायक है, और नखन उ मन भी इकर व्यवस्था के तनिकुन देखे लायक है कि कातरी करब
1: करल जाए। सही बात कह थी, और देखो इकर से एक ठो और हमें बहुत बढ़िया चीज लागेला कि आसपास कर जे हम इनकर वातावरण है चाहे जल संसाधन मन है हुआ प्रदूषण हो जात रहे, काले की जे हम इन बेसी उर्वरक यूज करत रही कर प्रयोग करत रही चाहे कीटनाशक कर प्रयोग करत रही से हम इन जे सिंचाई कर पानी रहत रहे उगर संगे घुल मिल के जाए के नदी में तालाब मन में पोखरा मन के सबके गंदा कर देवत रहे प्रदूषित कर देवत रहे। लेकिन टपक सिंचाई ये सब चीज के नहीं होवे देवेला, सेले टपक सिंचाई तो खैर बहुत बढ़िया माध्यम है कि हमें ना पर पैदावार के।
0: और देखो नगद बात कहली कि अर माटी कर कटाव भी रुकेला, और है कि जे फसल कर है जो गुणवत्ता रहेला वो भी बेहद बहुत से बहुत अच्छा रहेला, और देखो कि जड़ में है कि पर्याप्त रावर करके कि नमी पहुंची, और जे ये फसल है कि तेजी से बढ़ेला, और फल फसल कर जो गुणवत्ता है वो भी बेहतर रहेला। तो हर तरह से है टपक सिंचाई जो विधि है बहुत अच्छा है
1: लाभदायक विधि है। और कहल जाए कि देखो बिजली कर भी ऐसा नखे कि बहुत ज्यादा उकर में उपयोग होई।
0: हाँ।
1: एक बार रौरे खाली सब जे भी हम इन पाइप मन यूज कर पाइप मन कर इस्तेमाल
0: पाइप रहेला नोजल के जरिए सीधा फसल में जाएला फसल कर जड़ में
1: एक बार लगाए दे तले उकर बादे अपन समय समय से नल मन के चालू करके बस सिंचाई हो जाए बढ़िया से।
0: तो बहिन देखो हमरे मन तो आज पहिल धा बैठा ही तो हमरे मन गोठियात रहा।
1: हाँ
0: तनी रीज रंग भी होवे चाही जे हमरे मन कर किसान भाई बहिन मन है उ मन भी आसरा कर होवे कि आज हमरे कर बहिन मन का सुनाब। तो चलू एगो रीज रंग करीला नागपुरी कृषि गीत जेके गा है बसीर अंसारी और संगी मन।

0: तो बहिन एखन हमरे मन तनिक देरी टपक सिंचाई कर हमरे मन बात करत रही। तो देखो एखन तो टपक सिंचाई से है कि हमरे कर किसान मन अच्छा से अच्छा खेती कर लेवत है। और देखो यह टपक सिंचाई के
1: कर उपयोग कर के
0: एगो हमरे कर भी चलो आओ
1: हम इन भी जानब कि कैसे स्वीट कॉर्न कर खेती करल जाएला।
0: हाँ तो स्वीट कॉर्न कर पता है बहिन की का तरी खेती करल जाएला। इकर ले है कि जे हमरे कर एगो किसान भाई है पारस महतो, वो हमरे कर बतियाबे कि स्वीट कॉर्न का तरी खेती करल जाएला और इकर से भेज

0: गैर है
1: अरविंद कुमार मिश्रा जी। तो चलो सुनिया
2: कार्यक्रम सुनिया सो भाई बहन मन के अरविंद भाई बटले बहुत बहुत जोहार। तो भाई बहन मन जैसे की रोज दिन हमारे मन नवा नवा किसान से मन कर भेंट के हाट करवाते रही ला। तो आज देखो हम बेड़ो बटे आही तो बेड़ो बटे एक तो किसान भाई से हमारे भेंट हो है और ये बढ़िया खेती बाड़ी का काम करे ना देखा थी एखन अपन मौकी के बेचे लाई है रोड एकारा में। तो इनकर से चलो हमारे मन गोटिया ला बतिया ला कहाँ का रह के इनका नाम का होलक इनका परिचय के जान ले होती भाई जोहार।
3: जोहार
2: नाम का होलक दादा रो
3: पारस में
2: पारस भाई कहाँ कर रहे वाला हीरो जरिया।
3: हाँ,
2: बेड़ो जरिया।
3: बेड़ो जरिया
2: बहुत बढ़िया। बेड़ो आसपास कर किसान मन तो जमीन के खेती करे ना।
3: हाँ, खेती करे ना।
2: तो देखा थी एकदम ताजा ताजा रोरे मकई के बेचे के लाई है कितना आठवा में लगा है अपन मकई के
3: ये लगा ले करीब 50 डिसमिल में।
2: 50 डिसमिल में। तो कौन बरन है की हाइब्रिड है की देसी वाला है
3: वो वाला देसी है के अरी है के स्वीट कॉर्न
2: मीठा लगे ला।
3: मीठा लगे ला।
2: बगरा कौन के खोजे ना आदमी
3: खान तो देहाती कर बगरा मांग है लेकिन स्वीट कॉर्न सीजन में बहुत जोर उपरे मांग रहे है लेकिन एखन तनिक उन्हें देहाती कर मांग जाते
2: हैं तनिक इंग्लिश नाम भेजे आला तो बगरा खोजे नहीं स्वीट कॉर्न कर ले बड़ा बढ़िया से
3: गर्मी होवे लनी होले स्वीट कॉर्न बगरा भी केला।
2: अच्छा
3: पानी रोज आवेला होले दे
2: तो बगरा कौन चीज कर खेती करेला वो वाला के
3: स्वीट कॉर्न एखन स्वीट कॉर्न
2: स्वीट कॉर्न।
3: हां
2: एकर बगरा खोज होवेला नहीं
3: खोज होवेला।
2: तोरे का बतात रही कि पहिल धाव रे बेड़ो आसपास में कर रहे
3: ई एरिया में झारखंड में नहीं एकर बीजा नहीं मिलत रहे से बेरा हम के बाहर से मंगा रहे मदर डेयरी से।
2: तो कैसे रुके पता लागल जब
3: पता लागल हमारा पहले रजिस्ट्रेशन करे के पड़त रहे और माल उपजाए के उखे देवे के पड़त रहे।
2: अच्छा
3: हमरे तनी मनी के चुरा लुका के बेचत रही।
2: अच्छा
3: उखे देवे के रही
2: तो मतलब ऊपर से बाहर जब लाइन रही तो से बेरा कैसे बीज उज मिल रहे
3: हुआ 3000 रुपए किलो रहे
2: और उपज कैसन हुई रहे
3: उपज तो बढ़िया रहे
2: तो से बेरा से रूर एकदम हवाई गली नहीं
3: शुरू शुरू लेकिन बहुत दिक्कत होते रहे बेचे में।
2: हाँ
3: देहाती मकई 10 रुपए बिकत रहे और 20 रुपए बेचत रहे।
2: अच्छा
3: तो सब कोई आए कहते रहे हैं भैया सब 10 बिक रहा है और आप 20 बेच रहे हैं तो खासियत का है। तब सब कोई एक एक दो दो किलो खिया खिया समझा समझा बेच ली तो फायदा है कि 20 किलो ले गए
2: माने चाय चखवाली पहले ना।
3: हाँ एक एक किलो ले भैया 20 रुपया में गरीब नहीं होइएगा।
2: हाँ,
3: 1 किलो पहले खा के देखिए एक दिन खाला है तब दूसरा दिन। हाँ भैया दूसरा चीज है
2: पौष्टिकता भी कर्म लग रहा है।
3: हाँ,
2: नहीं तो खेती में कोनो अंतर होएला कैसे खेती करेला
3: नहीं इकर में तनी मेहनत ज्यादा है
2: कैसे करेला
3: इकर में ऊपर में नहीं तनी गोबर खाद मैंने कम लगे इकर में तनी उके तो स्नोह रोपले हो बिना गोबरो कर लेकिन ये नहीं हुई।
2: अच्छा इकर में क्या क्या लगाई ला
3: गोबर खाद डीएपी यूरिया सब है।
2: अच्छा
3: इकर में ऊपर में दवाई भी कम लगे इकर में तनी बगरा लगे।
2: अब कौन बेरा में रोपले बढ़िया खेती हो
3: ये तो सालों भर हो स्वीट कॉर्न।
2: अच्छा माने खेत रोर आतर नहीं रहे
3: नहीं सालो भाई
2: लगातार खेती होते रहे।
3: हाँ
2: कितना दिन में तैयार हो जाए
3: ये सीजन के अनुसार ठंडा समय में 5-6 महीना खींच लेवेला और एखन बरसात में तो 3 महीना में तैयार।
2: अच्छा
3: 3 महीना से पहले हो तैयार हो जाए लेकिन ठंडा सीजन में 5 महीना ले भी।
2: अब बढ़िया दाम भी मिलेला बढ़िया
3: ज्यादा गर्मी मारी नहीं दाना तनी कम हो गया।
2: अच्छा
3: 5 गोटिया ज्यादा हो गया
2: लेकिन तो हम देखिए एकदम पूरा गदराल रहे नहीं
3: 5 गोटिया ज्यादा होल गर्मी बेरा में।
2: अच्छा
3: एखन गर्म में नहीं रही
2: तो सब जब जरूरी के खेती करे शुरू कर ली तो सब किसान मन रुके देख के।
3: हाँ
2: मैं शुरू कर
3: खाना दुकानों में बीज मिलत है नहीं कर पहले नहीं मिलत रहे कहीं
2: जे तो शुरू धाम खेती कई रोज से बेरा
3: वहां मतलब कोड लेवे पड़त रहे।
2: अच्छा
3: तब मिलत रहे
2: और हमें ले जाके बेचत रहे
3: वो आए के ले जात रहे लेकिन हमारे रेट रहे कम 10 रुपया उकर फिक्स रहे।
2: तो अब जब इकर खेती बहुत ज्यादा हुआ थे तो कैसन रुके बुझाते
3: माने बाहर लोडिंग भी हुआ थे नहीं
2: है
3: बाहर लोडिंग भी हुआ थे कन।
2: अच्छा
3: एक खेते खेत से उठा थे माल एक।
2: अच्छा
3: अरे साल उपज कम है तो रेट बढ़िया है 27 रुपया 26 रुपया थोक में उठा थे।
2: अच्छा
3: हाँ
2: खुदरा में तो बेड़ो आसपास 30-35 बेचत।
3: हाँ 40 बेचत रहे लेकिन एखन कम्पिटिशन एखन किसे लगा दे क्या कर
2: सब बटे तो 40 से बेचा।
3: हाँ सब जगह 40 है।
2: तो कैसन खेती बाड़ी करके कैसन बुझाए लग
3: ठीक है खेती बाड़ी
2: ठीक है।
3: हाँ
2: छुआ पुता
3: से बढ़िया है
2: छुआ पुता मन के
3: पढ़ा था
2: ठीकरे में खेती बाड़ी करके
3: खेती बाड़ी में और कोनो धंधे ना के
2: वो तो बेस मोटाल किसान है
3: मोटाल ना की एकदम लटल ही एकदम इंसान।
2: हां नहीं बढ़िया लागेला किसान जब खुश रहेला नहीं तो आदमी भी खुश रहेला कहल जाएला नहीं कि हमरे कर देश के कृषि प्रधान देश कहल जाएला और खेती बढ़िया रही तबे देश आगे बढ़े। कतनो नौकरी चाकरी आदमी बड़का आदमी बन जाए खेती नहीं करे तो आदमी खाई
3: का कहां से खाई
2: नहीं सही बात। अच्छा ल और बगरा देर रो समय नहीं लेवा क्योंकि रो एखन बेचा थी और हिसाबो करब की बगरा रो से गोठिया भोले जाते जाते किसान मन के रो एक आसन देश देखो जिला रो नौजवान किसान ही अनुभवी किसान ही

0: का संदेश देवे खोजिला किसान मन के?
1: खेती कम करना चाहिए लेकिन मेहनत जाते लगाए दो, अब 10 एकड़ में और मेहनत नहीं हुई तो घर से घटा जाए।
0: एकदम बहुत बढ़िया।
1: 10 एकड़ का जगह में 1 एकड़ में आदमी खेती करे लेकिन उसे मेहनत से करे।
0: एकदम
1: पूरे में 10 एकड़ कर कमाई 1 एकड़ में आई।
0: हाँ
1: हाँ, और नहीं तो फिर 10 एकड़ के चक्कर में पता चल रहा की 1 एकड़ का नहीं आला।
0: कितना बढ़िया बात बता ली। और किसान मन के जिसे वैज्ञानिक मन से बतियाले तो मन कहे ना कि समय के अनुसार खेती करे चाहिए, रोड का अंदाजा है।
1: एखन तो हाइब्रिड का जमाना है, सीजन से बेसीजन में कमाई है, सीजन में तो सबका निकले से कमाई नहीं हो।
0: अच्छा अच्छा, चलो ठीक है।
1: जो खेती सीजन से बेसीजन है उसमें में 2 पैसा अधिक मिली।
0: चलो भाई अपन खेती बाड़ी कर काम करो, बेचू बढ़िया से है नीला तब गोठिया से कहियो।
1: ठीक,
0: जवाब
2: तो खूब नगद जानकारी हम इनके करा लें। पारस महतो जी के बतात रहे कि स्वीट कॉर्न कर खेती कैसे करल जाए, और उनकर से भेंट कर रहे हैं अरविंद कुमार मिश्रा। लेकिन ये बात तो एकदम सच है शांति बहन की, स्वीट कॉर्न सच में खाए में बहुत बढ़िया लगेला, और उनकर नवा नवा तरह तरह कर हम इन पकवान मन भी बना के खाइला।
3: और देखो ये बारह मसिया है, बारह मास भेटाएला और मुरुख मजा भी लगेला खाएले। तो जो भी हमारे किसान मन अगर करे चाहब तो सुनबे और एक अजमाबे।
2: हाँ, अजमाबे और प्रयोग करबे तो हमके भी एकदम खूब बढ़िया बढ़िया एक में जानकारी मिलक। एक चीज सबसे बढ़िया अलग अलग जाने लगा कि कहल है कि जे गर्मी कर मौसम है से बराकर पैदावार तनी कम रहला है नहीं, माने कि बढ़िया एक सिंचाई व्यवस्था होक चाही। हाँ, सेले अब इके हम इन देखू तो जे टपक सिंचाई के बारे में हम इन पहले बताए रही सैकड़ों से जुन जुड़ल है।
3: हाँ बिल्कुल,
2: एकदम ठीक है थी रोर हो। अब देखू अब एखन तो जे बारिश कर मौसम आ जाए है सकर में हम इन भी खूब बीमार पड़े लाएगी।
3: हाँ, हाँ।
2: कभी कभी होयला कि पता नहीं हम इन का जा कहीं जाही खाए लेला हिने होने से भी,
3: और हिने और होने का पानी भी पिए से भी।
2: हाँ, खूब बीमार मन पड़ जाएला। देखो एक खास करके तो जो छोट छोट हम इनकर छुआ मन है सबसे बेसी बीमारी तो वह मन में होयला। और यही तरी हमके तो लागेला कि हम इनकर जो पशुधन है उनकर में भी तरह तरह कर विषाक्तता हो जाएला। काले कि उमन भी मान लो कि कखनो चरे जात हैं तो अकवान मन हो गलक है नहीं, चाहे कि धतूरा मन हो गलक, थेथर मन हो गलक, सैकड़ों में भले उमन जानत हैं कि उके नखे खाए लेकिन गलती से कभी कवान खाए लेवेला तो उमन में भी विषाक्तता हो जाएला। जेकर चलते हम इन देखीला कि उमन कर जे उठेक बैठेक है चाहे उमन कर जे खाएक पिएक है से भी कम हो जाएला है नहीं।
3: नगद बात कहा थी कि देखो नहीं कि हमरे मन तो हो ये जाएला बार बीमार लेकिन वो तो पशु मन है अनबोलता चीज, तो मन कर हम इन चाल चलन से ही पकड़ लीला कि ये पशु आज तनिकुन बेस नहीं बुझात है कह के। और देखो उमन कर है कि उमन घास नहीं चरे लागबाए, बेस से उठेक बैठक नहीं लागबाए, उमन कर अगर हमरे मन लेढ़ी मन गोबर मन देखी ला तो समझ जाएला कि पशु के कोनो होई है। तो हमरे मन के उकर ले हमरे मन के अच्छा पशु चिकित्सक के भी बुलाए है। हाँ, हाँ। भेंट कराक है, इलाज कराक है, और है कि अधिक से अधिक अपन पास भी जानकारी रखे है कि अगर पशु के कोनो हो जात है तो का तरी हमरे मनुकर सेवा सुथुर करबाए। तो चलो इके विस्तार रूप में जानकारी करी ला कि पशु में होए वाले प्रमुख विशेषताएं जो विशेषज्ञ है डॉक्टर दीक्षा मलेठा और भेंट कर रहे कर से कृष्ण जीवन पौराणिक।
4: किसान भाइयों नमस्कार, पशुपालन हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हम अपने पशुओं को रहने और खाने पीने का इंतजाम तो रखते ही हैं लेकिन कई बार हमारी छोटी सी लापरवाही या अनजाने में हुई चूक पशुओं के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। चारा खाते समय कीटनाशकों के संपर्क में आने से या दूषित पानी पी लेने से पशुओं के शरीर में जहर फैल जाता है। सही समय पर लक्षण न पहचान पाने के कारण कई बार पशु दम तोड़ देते हैं जिसे पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, और इसी बीमारी को हम कहते हैं पशु विषाक्तता। इसी महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दीक्षा मलेठा, सहायक प्राध्यापक वेटनरी कॉलेज रांची। दीक्षा जी आपको हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार।
5: नमस्कार।
4: आप हमारे श्रोताओं हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि पशु विषाक्तता होती क्या है?
5: विषाक्तता का मतलब है विषाक्त तत्वों या पदार्थों से होने वाली समस्याएं।
4: जी।
5: जब कोई हानिकारक या विषाक्त या जहरीला पदार्थ सेवन के पश्चात हमारे शरीर में प्रवेश कर हमारी शारीरिक क्रियाओं को बाधित करता है, हमें बीमार करता है या नुकसान पहुंचाता है, तो उसे विषाक्तता कहते हैं। जिस प्रकार मनुष्यों में जहरीले पदार्थ खाने पर हानिकारक व प्रतिकूल प्रभाव दिखाई देता है, वैसे ही पशुओं में भी विषाक्त रसायन, जहरीले पौधे, सड़ा पुराना चारा खाने से गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं तथा कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है।
4: जी, तो पशुओं में विषाक्तता के प्रमुख कारण क्या हैं?
5: देखिए, पशुओं में विषाक्तता के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें कि सबसे पहले आते हैं कुछ जहरीले पौधे जो कि आपने सुना होगा, जैसे पुटुस, थेथर, कनेर, गाजर घास, अकवन, धतूरा, कटेरी आदि।
4: जी।
5: ये जहरीले पौधे जो होते हैं ये भी विषाक्तता का कारण होते हैं।
4: जी जी।
5: अगला आता है अगर हरे चारे में ऐसा हरा चारा जिसमें नाइट्रेट की मात्रा अधिक होती है, अगर उनमें आपने कीटनाशक छिड़काव किया हुआ है या फिर उर्वरक का उपयोग किया है तो उनमें नाइट्रेट की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, या फिर साथ ही पानी का अभाव हो तो ऐसा चारा देने से पशुओं में नाइट्रेट विषाक्तता देखी जाती है जो कि ऑक्सीजन को बाधित करती है। अगला आता है यूरिया का उपयोग। हम सभी जानते हैं कि आमतौर पर पशुओं में संतुलित मात्रा में प्रोटीन की आपूर्ति के लिए यूरिया हम देते हैं, लेकिन इसे अगर निर्धारित मात्रा से ज़्यादा दिया जाए तो इसके अधिक सेवन से विषाक्तता होती है।
4: जी।
5: अगला आता है कुछ सायोजनिक पौधे जैसे ज्वार, बाजरा, अलसी, बबूल, जिनमें की साइनाइड ग्लाइकोसाइड पाए जाते हैं। पशु अगर इनका सेवन कर ले, कच्चे छोटे पौधे अगर पशु खा ले, तो उनमें साइनाइड ग्लाइकोसाइड की मात्रा अधिक होती है।
4: जी।
5: वो साइनाइड विषाक्तता के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा फफूंद लगा चारा, कीटनाशक का गलती से सेवन जो कि चारे या पानी के रूप में हो सकता है, साथ ही दूषित गंदा रुका हुआ पानी तथा कुछ अन्य रसायनों का गलती से सेवन पशुओं में विषाक्तता का कारण बनता है।
4: जी, अभी आपने बताया कि क्या क्या चीज खाने से होता है।
5: जी,
4: लेकिन इसको हम कैसे पहचानेंगे, कौन कौन सी विषाक्तताएं देखी जाती हैं?
5: देखिए, पशुओं में आम तौर पर जो विषाक्तताएं देखी जाती हैं वो होती है साइनाइड विषाक्तता, नाइट्राइट विषाक्तता, ऑक्सलेट विषाक्तता, एफ्लाटोक्सिकोसिस जो कि फफूंद लगे चारे के सेवन से होती है,
4: जी,
5: यूरिया विषाक्तता, कीटनाशक विषाक्तता तथा जहरीले पौधों का सेवन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइनाइड विषाक्तता। कुछ चारा जैसे कि ज्वार, बाजरा, बबूल, अलसी आदि, इन सब में साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड मौजूद होते हैं, तो इनके कोमल फसलों में साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड की मात्रा अधिक होती है। साथ ही पानी का अभाव और अधिक मात्रा में नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग ग्लाइकोसाइड की मात्रा पौधों में बढ़ा देता है जो कि साइनाइड विषाक्तता की संभावना को बढ़ा देता है।
4: जी जी।
5: दूसरा आता है नाइट्रेट विषाक्तता। कई ऐसे नाइट्रेट युक्त पौधे होते हैं जैसे कि ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ने के पत्ते, इनमें नाइट्रेट की मात्रा अधिक होती है। अगर हम इनमें नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग करते हैं, साथ ही अगर पानी का अभाव है या सूखापन है, तो इनमें नाइट्रेट का कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है जो कि शरीर में ऑक्सीजन को बाधित करता है और श्वास संबंधित विकार करवाता है। इसके अलावा आता है ऑक्सलेट विषाक्तता जो कि ऑक्सलेट युक्त फसल के अधिक सेवन से होती है जो कि शरीर में कैल्शियम की कमी को करवाता है। फिर बात करते हैं यूरिया विषाक्तता की। अधिक मात्रा में यूरिया मिश्रित आहार तथा खाली पेट यूरिया देने से क्या होती है। फिर एफ्लाटोक्सिकोसिस की बात करें तो कई बार हम जब चारा स्टोर करते हैं तो उस दौरान नमी और अधिक गर्मी के कारण फफूंद लगने का चांसेस हो जाते हैं।
4: जी।
5: जिस वजह से एफ्लाटॉक्सिन्स नाम के जो टॉक्सिन्स होते हैं वो जनरेट होते हैं और जिस वजह से पशुओं के लीवर में और पाचन तंत्र को वो प्रभावित करते हैं।
4: जी।
5: फिर आता है कीटनाशक। हम जानते हैं कि कीटनाशक का उपयोग पशुपालक बहुत करते हैं, तो यह प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कीटनाशक के सेवन से चारे के रूप में हो या फिर दूषित पानी के रूप में पशु इनका सेवन करते हैं। इसके अलावा कई विषाक्त पौधे जैसे कि मैंने अभी बताया, थेतर हो गया, गाजर घास हो गया, अकवन हो गया, ये सब भी इनके सेवन से भी पशुओं में हानिकारक या गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं।
2: तो आजकल हम इनकर जे कार्यक्रम रहे यह बेरा समाप्त हुआ थे और खैर हम इनके कुठिया तो खूब मन रहे लेकिन अखन हमें तो नहीं करे पा रहे
3: हाँ, कहे कि बेरा हमरे के
2: सिराए लाई।

0: चाहिए। तो प्रस्तुति रहे,
1: तो बताएक देवक चाहिला कि कार्यक्रम के प्रस्तुति रहे संजीव कुमार लाल। तो बहिन देखो हमरे कर तो बतियाक तो बहुत रहे लेकिन बेरा तो सिरा है, तो चलू तब लीला विदा लगे संगे
0: जोहार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। बस थोड़ी ही देर में आप सुन सकेंगे आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मैच का सीधा प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: खो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए।
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
6: PLI है ना?
7: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
8: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक।

0: समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर झारखंड समेत देश दुनिया में सकारात्मक ऊर्जा का हुआ संचार। प्रधानमंत्री ने कहा, बेहतर भविष्य के लिए योग जरूरी। राजधानी रांची समेत राज्य के 67 केंद्रों पर नीट यूजी की परीक्षा संपन्न। केंद्रों पर दिखे कदाचार मुक्त परीक्षा के व्यापक इंतजाम। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची संसदीय क्षेत्र को सड़कों की दी सौगात। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने छतरपुर में सड़क निर्माण कार्य का किया शिलान्यास। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, SIR के प्रारूप मतदाता सूची में अनकलेक्टेबल इन्यूमरेशन फॉर्म की 5 श्रेणियां नहीं की जाएंगी शामिल। और भारत ने जीता FIH महिला हॉकी नेशंस कप का खिताब। मेजबान न्यूजीलैंड को एक तरफा मुकाबले में 2 गोल से किया पराजित। प्रधानमंत्री ने दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि बेहतर भविष्य के लिए योग जरूरी है। श्री मोदी ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोकभवन के बिरसा मंडप में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का अमूल्य उपहार है, जो शरीर और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित कर स्वस्थ तथा अनुशासित जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। योग दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आयोजित किया गया, जिसमें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी समेत कई गणमान्य लोगों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में आयोजित योग कार्यक्रम में शामिल हुई और योग को स्वस्थ जीवन के लिए बेहद जरूरी बताया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के मोरहाबादी स्थित ऑक्सीजन पार्क में बच्चों के साथ योगाभ्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिली है। श्री मरांडी ने योग को सभी से अपनाने का आग्रह किया।
2: योग से कैसे लोग निरोग हो सकते, और उसके लिए अगर आदमी सुबह को आधा घंटा एक घंटा समय देता है तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया आप इस अंगीकार किया और पूरी दुनिया में आप सार्वजनिक रूप से आप सभी योग करते हुए आपको लोग दिखाई।
0: राज्य के साहिबगंज, खूंटी, लोहरदगा, सिमडेगा, बोकारो, देवघर, जामताड़ा, गुमला, चतरा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, दुमका, धनबाद और गोड्डा सहित सभी जिलों में उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और प्रशासनिक अधिकारियों, सुरक्षा बलों, विद्यार्थियों और आम लोगों ने भी सामूहिक योगाभ्यास किया। राजधानी रांची समेत राज्यभर के 67 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा ली गई। सभी परीक्षा केंद्रों पर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था किए गए थे। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए NTA और जिला प्रशासन की ओर से व्यापक प्रबंध किए गए थे। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची संसदीय क्षेत्र के कांके में सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। 4,54,00,000 रुपए की लागत से पातगाई से बंटोली तक सड़क का निर्माण किया जाएगा। श्री सेठ ने कहा कि यह सड़क क्षेत्र के आवागमन को सुगम बनाने के साथ विकास को नई गति प्रदान करेगी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आज छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत छतरपुर और नौडीहा बाजार प्रखंड में कई महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम भी मौजूद थे। इस दौरान श्री किशोर ने कहा कि इन योजनाओं के पूर्ण होने से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा और क्षेत्र के समग्र विकास को नई गति मिलेगी। आकाशवाणी के ताजातरीन आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ रांची

0: रांची इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने स्पष्ट किया है कि SIR के प्रारूप मतदाता सूची में अनकलेक्टेबल इन्यूमरेशन फॉर्म की 5 श्रेणियां शामिल नहीं की जाएंगी। उन्होंने आज कहा कि सोशल मीडिया पर भ्रामक और गलत जानकारी फैलाई जा रही है कि मौजूदा मतदाता सूची से कुछ मतदाताओं के नाम हटा दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 23 जून से 29 जुलाई तक वर्तमान मतदाता सूची के सभी मौजूदा मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म प्रदान किया जाएगा और वे सभी मतदाता जो हस्ताक्षर इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करेंगे उन्हें SIR की प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने आज देवघर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई। इस मौके पर श्री दुबे ने बताया कि कल से उनके संसदीय क्षेत्र में निःशुल्क नमो एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा ATM के जरिए प्रत्येक परिवार को 20 लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।
1: इस लोकसभा के 14 से 15 लाख लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा और जो गांव में लगेगा उसमें सबको ATM कार्ड देंगे तो 20 लीटर से ज्यादा एक परिवार को शुद्ध पीने का पानी मिलेगा। और तीसरा हमने यह तय किया है कि यार प्रत्येक विधानसभा में निःशुल्क एम्बुलेंस मिलेगा, उसका एक टोल फ्री नंबर हम जारी करेंगे और 24 घंटे 365 दिन जब भी लोगों को आवश्यकता होगी वो एम्बुलेंस मिलेगा।
0: राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की करारी हार के बाद इंडी गठबंधन में बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा है कि कांग्रेस, माले और राजद के नेताओं द्वारा दिया जा रहा बयानबाजी उचित नहीं है। श्री पांडे ने इस मामले पर महागठबंधन के नेताओं के साथ समीक्षा की।
2: इसके तरफ से क्या बयान आ रहा है, RJD के तरफ से क्या बयान आ रहा है, माले के तरफ से क्या बयान आ रहा है, ये सभी चीजें हम लोगों के संज्ञान में। लेकिन इस तरह से गठबंधन में अगर हम लोग सार्वजनिक रूप से एक दूसरे पे आरोप लगाए तो उससे बेहतर होगा कि हम गठबंधन की बैठक करें और उस गठबंधन की बैठक में हम चर्चा कर लें और उसके बाद जो भी निर्णय हो गठबंधन में उस निर्णय को हम लागू।
0: धनबाद में आम उत्पादकों को बाजार से जोड़ने और बागवानी को बढ़ावा देने की दिशा में जिला प्रशासन ने आज आम उत्सव की शुरुआत की है। जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि स्थानीय किसानों द्वारा प्राकृतिक तरीके से उत्पादित आम लोगों द्वारा खूब पसंद किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आम बागवानी के जरिए किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
3: इस साल हम लोग टारगेट लिए हैं कि जितना हर साल आम बागवानी होता है इस साल उसका कम से कम 2 से 3 गुना आम बागवानी हम लोग करेगा से करेंगे। मेन समस्या जो झारखंड की है पठारी क्षेत्र है पानी का, तो वो हम लोग कोशिश करेंगे कि 5 एकड़ से बड़ा का पैच हो वहाँ हम लोग पानी के लिए DMFT से जिला योजना से पानी का स्रोत जो है डीप बोरिंग करके या चापाकल बना के देंगे।
0: मौसम विभाग केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक 23 जून तक राज्य के कुछ और इलाकों में मानसून प्रवेश कर सकता है। केंद्र के मुताबिक राज्य में 27 जून तक बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान धनबाद के तोपचांची में सर्वाधिक 40.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। हॉकी, भारत ने FIH महिला हॉकी नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। भारतीय टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर दूसरी बार यह प्रतियोगिता जीती है। गौरतलब है कि इस टीम में झारखंड की 3 बेटियां कप्तान सलीमा टेटे, निक्की प्रधान और दीपिका सोरेंग शामिल थी। इस खिताबी जीत के साथ ही भारत ने महिला FIH प्रो लीग में अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला हॉकी टीम को जीत के लिए बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर झारखंड समेत देश दुनिया में सकारात्मक ऊर्जा का हुआ संचार। प्रधानमंत्री ने कहा बेहतर भविष्य के लिए योग जरूरी। राजधानी रांची समेत राज्य के 67 केंद्रों पर NEET UG की परीक्षा संपन्न। केंद्रों पर दिखे कदाचार मुक्त परीक्षा के व्यापक इंतजाम। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची संसदीय क्षेत्र के सड़कों की दी सौगात। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने छतरपुर में सड़क निर्माण कार्य का किया शिलान्यास। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा SIR के प्रारूप मतदाता सूची में अनकलेक्टेबल इन्यूमरेशन फॉर्म की 5 श्रेणियां नहीं की जाएंगी शामिल। और भारत ने जीता FIH महिला हॉकी नेशंस कप का खिताब, मेजबान न्यूजीलैंड को एक तरफा मुकाबले में 2 गोल से किया पराजित, प्रधानमंत्री ने दी बधाई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निकल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
7: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
6: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
7: तो फिर सही नंबर,
6: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
7: आपने तो बचा लिया दीदी।
6: काम से नहीं।
8: RBI कहता है,
9: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
10: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे हजारीबाग जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे हजारीबाग संवाददाता।
1: भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर इसे विकास, जन कल्याण और सुशासन का एक शानदार सफर बताया है। इस अवसर पर पार्टी ने देश भर में विशेष अभियान चलाकर सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा है। रांची से पहुंचे भाजपा के मुख्य सचेतक सहटिया विधायक नवीन जायसवाल ने कहा,
2: वर्षों में जो काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ उसमें सबसे पहला विकास, विश्वास और जन कल्याण की यात्रा की प्रारंभ हुई। आप 12 वर्षों में देखे होंगे कि जनता का अटूट विश्वास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पर हुआ। जल जीवन मिशन के तहत 35 करोड़ लोगों तक शुद्ध पेयजल मिल रहा है, लेकिन झारखंड में ये सरकार जल जीवन मिशन में लूट मचाई, इसीलिए आज यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में जो दिखना चाहिए उसका लाभ हम लोगों को नहीं दिख रहा है।
1: हजारीबाग की नई पीढ़ी रक्तदान करने के लिए आगे आ रहे हैं। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था।
3: सबके माध्यम से युवाओं के बीच प्रचार प्रसार किया गया, ऐसे हर वक्त के बीच प्रचार प्रसार है, लेकिन आज जैसा कि संख्या देख रहे हैं युवाओं की संख्या ज्यादा है, तो इसे यह स्पष्ट करता है कि युवाओं में जो है समाज के प्रति सजगता आ रही है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी हजारीबाग के जो युवा है इस तरह के पुनित कार्य में आगे आएंगे।
1: जिला सैनिक कल्याण कार्यालय हजारीबाग में सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल नितेश श्रीवास्तव ने बताया,
4: ये कार्यक्रम था एक बेसिकली वेटरन्स आउटरीच बोल सकते हैं, जिसमें जो रिटायर्ड सैनिक हैं, सैनिक मतलब वो किसी भी फोर्सेस के हो सकते हैं, नेवी एयरफोर्स वाले भी होते हैं, ये कॉमन प्लेटफॉर्म है, और उनके डिपेंडेंट्स हैं या वीर नारियां हैं, वो सभी यहाँ पे जरूरी नहीं कि अपनी कोई समस्या लेने ही आए, कोई नई जानकारी है जो उनके लिए उपयोगी है या हो सकती है या वो दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, वो सब उनके साथ शेयर करने के लिए हम यहाँ आए हैं। और यदि किसी की कोई समस्या थी जो हम यहाँ निवारण कर सकते हैं तो उसके लिए हमारा स्टाफ आया हुआ है, और यदि यहाँ नहीं कर सकते हम तो हमारे पास एक मैकेनिज्म है कि उनकी जो भी समस्या है वो हमें ग्रीवांस फॉर्म में रजिस्टर करेंगे, उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स लेंगे, और यदि वो इंडियन आर्मी के किसी भी आर्म से कंसर्न हो हम उस रिकॉर्ड ऑफिस को संपर्क करेंगे और उस रिकॉर्ड ऑफिस को उनकी समस्या बताएंगे और इंश्योर करेंगे कि वो रिजॉल्व हो।
1: एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम के तहत विश्व

0: पर्यावरण दिवस के अवसर पर हजारीबाग में 1,00,000 पौधा मानसून के दौरान लगाने की तैयारी है। भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद के नेतृत्व में पौधरोपण किया जाएगा।
1: पर्यावरण दिवस के अवसर पे पूर्व के भांति भी इस बार भी एक पौधा लगाने का संकल्प किए हैं। काफी अच्छे लोग जुड़े हैं, माधव महतो जी जुड़े हुए हैं, पी शर्मा जी जुड़े हुए हैं और आज का शोभा बढ़ाने के लिए कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी के परिवार भी आए हुए हैं, माता पिता है, पद्मश्री बुलू इमाम के परिवार के लोग भी आए हुए हैं। तो हौसला मिलता है सबको आने से और जो मुहिम है उसको पूरा करने में सहयोग होता है। तो सारे लोगों की मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों को मोटिवेट करें कि जो हजारीबाग को हरा भरा करने का एक प्रयास किया जा रहा है, सारे लोग एकजुट के होंगे तभी इस मुहिम को पूरा किया जा सकता।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कार्यक्रम एक पेड़ माँ के नाम जन जन तक पहुँच रहा है। यही कारण है कि वृक्षों की संख्या में वृद्धि हो रही है। वृक्ष है तो हम है। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग।
2: अभी आप सुन रहे थे हजारीबाग जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

0: अपार्टमेंट की इंचार्ज हैं मिस पाउडर वाला।
1: गुड इवनिंग सर।
2: गुड इवनिंग। गुड इवनिंग
0: पाउडर वाला, बी टैक्टफुल, ये बहुत बड़ा कस्टमर है। मोटी मछली।
2: मछली।
1: ओके बॉस। सर आप जरा हाथ आके देंगे?
2: यू मीन मैं अपना हाथ बढ़ाऊं?
1: यस सर, ये सेंट लगा रही हूँ आपके हाथ में, जरा सुनकर देखिए कैसा खुशबू है।
2: बहुत बढ़िया खुशबू है इसका।
1: सर ये सेंट काटा माटा जैस्मिन सेंट का है।
2: काटा माटा जैस्मिन सेंट?
1: यस सर, काटा माटा जैस्मिन सेंट का खुशबू है। सर जो भी कोई इस सेंट को लगाकर बाजार में जाएगा ना, सारी दुनिया उसके पीछे पीछे पागलों की तरह भागेगा। और सर ये देखिए, रॉक एंड रोल फॉक्स ट्रॉट पाउडर। सर ये पाउडर कोई ऑर्डिनरी पाउडर नहीं है, इस पाउडर को लगाकर सारा फिल्म इंडस्ट्री महकता है सर। फिल्म का डायरेक्टर, हीरो, हीरोइन, साइड हीरो, साइड हीरोइन, सब लगाता है, सब वन टू ऑल सब लगाता है, पता सब। नॉट ओनली दैट, इधर देखिए सर, ये पाउडर जो है ना, फिल्म का डायरेक्टर तो डायरेक्टर, ड्रामा डायरेक्टर, स्टेज डायरेक्टर, यहाँ तक कि रेडियो का डायरेक्टर भी इस्तेमाल करता है सर। फिर आप क्यों नहीं यूज करेगा? करेगा ना। और सर ये देखिए, ओटो कमन शैम्पू, ये शैम्पू से आपका सर का बाल एकदम मुलायम हो जाएगा सर।
2: लेकिन ये शैम्पू,
1: समझ गया सर, बिल्कुल समझ गया। आप ये शैम्पू लेकर क्या करेगा? आई एम सॉरी सर, ये शैम्पू आपके लिए नहीं है, आपका मेम साहब के लिए है। आई नो सर, आप तो सिर का गंजा है।
0: ओ मिस पाउडर वाला,
2: बच्चे चुप रहे।
0: तुम साहब को गंजा कहती हो? डोंट यू नो ए कस्टमर इज नेवर गंजा।
1: आई एम सॉरी सर।
0: इट्स ऑल राइट
2: सर, आई एम वेरी सॉरी सर, वो मुझे बड़ा अफसोस है कि इसने आपको गंजा कहा सर। डजंट मैटर, डजंट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
0: बात क्यों नहीं सर, बात क्यों नहीं है? अगर देखा जाए सर तो आप गंजे नहीं है सर, मेरा मतलब आप गंजे लगते जरूर है मगर आप गंजे है या नहीं, लेकिन फिर भी आपके सर पे बाल है, मतलब बाल नहीं है लेकिन फिर भी बाल है, लेकिन नहीं है लेकिन है, मेरा मतलब आपके सर पर थोड़े थोड़े बाल है।
2: ओह यस
0: सर, आई थिंक नाउ यू नीड दिस शैम्पू।
2: व्हाई नॉट, व्हाई नॉट।
0: और सर इनसे मिलिए, ये हमारे म्यूजिकल डिपार्टमेंट के इंचार्ज है, मिस्टर भैरवी लाल, यानी कि मिस्टर बी लाल।
3: गुड इवनिंग सर।
2: गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।
3: ये देखिए सर, हमारे पास तरह तरह के नए से नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी हर साज यहाँ मौजूद है, हर साज यहाँ पर बिकता है। हुजूर आप कौन सा साज बजाने का शौक रखते हैं? मेरा मतलब है बेंजो, गिटार, सारंगी, तानपुरा, तबला, ढोलक।

0: आई मीन हर सांस बजाने का शौक है। इट्स माय हॉबी।
1: वंडरफुल सर, वंडरफुल। वो तो हुजूर के चेहरे से नजर आ रहा है कि हुजूर को हर सांस बजाने का शौक है। और हुजूर को रिकॉर्ड सुनने का भी तो शौक होगा।
0: व्हाई नॉट, व्हाई नॉट।
1: तो सर आप

0: ताल, कहरवा, भैरवी, पाड़ी ख्याल, मैदानी ख्याल, तीन ताल, चार ताल, नैनीताल, मल्ली ताल पसंद करेंगे या दादरा ठुमरी गजल के कॉर्ड पसंद करेंगे या फिर आप फिल्मी गाने
1: झुमका गिरा रे
0: जैसा कि कल जो मेरा चौपाटी पर
1: आग मटका होई गवा
2: अखिया मिला के जिया भर मा के चले नहीं जाना
3: मुझे आई मीन सिर्फ कथकली का रिकॉर्ड पसंद है।
0: कथकली? लेकिन सर कथकली तो नाच का नाम है किसी गवैये का नाम तो नहीं सर।
4: भैरवी लाल, डोंट यू नो ए कस्टमर इज ऑलवेज राइट, कस्टमर जो कहता है ठीक कहता है।
0: नो सर, नो सर, आई मीन यस सर, आप ठीक कहते हैं। कथकली हमारे देश की एक मशहूर गायिका है। कथकली ने सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब नाम कमाया है। उसके गले में क्या दर्द है, मेरा मतलब है गले में क्या आवाज है, आवाज में क्या दर्द है, दर्द में क्या कसक है, कसक में क्या जादू है। कथकली का गाना सुनते ही आंखों में पसीना और माथे पर आंसू, मेरा मतलब है आंखों में आंसू और माथे पर पसीना आ जाता है।
4: मिस्टर भैरवी लाल साहब हमारे स्टोर में पहली बार तशरीफ लाए हैं, इनके लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक लाओ। आप तशरीफ रखिए सर, मैं भी मंगवाता हूँ
0: कोल्ड ड्रिंक।
4: सुनो सुनो सुनो,
1: इनके
0: मैंगो जूस,
4: मैंगो जूस लाओ।
1: साहब
0: मैंगो जूस, जाओ जल्दी, जाओ जल्दी।
4: सर ये लिए सर, आप मैंगो जूस पीजिए सर।
3: मैंगो जूस या क्यों तकल्लुफ है,
4: आप तो शर्मिंदा करते हैं सर। आप जैसे वैल्यूएबल कस्टमर्स को एंटरटेन करना हमारी ड्यूटी है सर। आप ये सेब खाइए सर, सेब। आप ये नाशपाती खाइए, नाशपाती।
3: भाई आप मजबूर कट तो खाना ही पड़ेगा।
4: इट्स अ प्लेजर सर। देखा भैरवी लाल कितना बड़ा ग्राहक फंसा है आज।
0: ग्राहक ना कहिए सर, मोटी मछली।
4: भैरवी लाल आज इस ग्राहक से एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है।
0: ये सब आपके टैग का नतीजा है सर।
4: सर तो फिर आप अपना ऑर्डर नोट करा दीजिए सर।
2: ये सर
3: बात ये है कि मैंने अभी तो आपका सारा स्टोर देखा था।
2: जी
3: आपने बाहर बोर्ड लगा रखा है कि यहाँ सुई से कार तक।
4: यस सर, यू आर राइट, सुई से कार तक।
3: हाँ तो आपका वो सुइयों का डिपार्टमेंट किधर है?
2: व्हाट,
4: सुइयों का डिपार्टमेंट? सर वो तो हमने यूं ही लिख रखा था, सुइयां हमारे पास नहीं है सर। आप तो मजाक कर रहे हैं।
3: लेकिन मुझे तो सिर्फ एक पैकेट सुइयों का चाहिए।
4: जी एक पैकेट सुइयों का चाहिए, सुइयों का पैकेट।
3: आपने बेकार मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। अच्छा मैं चला।
1: अरे लेकिन साहब सुनो, अरे साहब
0: रुकिए,
2: चले गए, चले गए,
1: चले गए। मोटी मछली।
5: मोटी मछली वीएम आनंद की लिखी ये झलकी अभी आप सुन रहे थे हवा महल कार्यक्रम में। इसके निर्देशक थे जयदेव शर्मा कमल। ये थी आकाशवाणी इलाहाबाद की भेंट।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म धुरंधर द रिवेंज से। आवाज़ें खान साहब और शाहसत सचदेव की थी। गीत के बोल नुसरत फ़तेह अली खान के और संगीत शाहसत सचदेव और नुसरत फ़तेह अली खान का।

श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म सितारे ज़मीन पर से। आवाज़ें अरिजीत सिंह और शरीबा पारुलकर की थी। गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत शंकर एहसान लॉय का।

श्रोता, ये गीत आपने सुना फिल्म धड़क 2 से, आवाज अरिजीत सिंह की थी। गीत के बोल सिद्धार्थ गरिमा के और संगीत श्रेयस पुराणिक का।

श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म बागी 4 से, आवाज जोश ब्रार की थी। गीत के बोल परंपरा टंडन के, संगीत कुमार और जोश ब्रार का था।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: थोड़ी देर में समाचार प्रस्तुत किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता।

0: और भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर त्रिकोणीय राष्ट्र ए श्रृंखला अपने नाम की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे शामिल हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्धपोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: डेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों

0: बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई।
1: परीक्षा में शामिल 10,000 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर और राज्य पुलिस की मदद से दो स्तरीय तलाशी व्यवस्था लागू की गई थी। सीसीटीवी निगरानी के लिए कंट्रोल और कमांड सेंटर, एनटीए मुख्यालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 34 केंद्रीय संस्थानों, सभी राज्यों तथा जिलाधिकारी कार्यालयों में स्थापित किए गए थे। एनटीए ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7,00,000 पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
0: तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और कई रेलवे स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि देश भर में रेल अवसंरचना और सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
2: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, उसके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ये समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। आज मुंबई में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या शून्य सीमा शुल्क पर पहुंच मिलेगी और इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मुंबई स्थित एक फर्म के साझेदारों से जुड़े कई परिसरों और अन्य स्थानों पर 62,42,00,000 रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि मुंबई में इंडियन बैंक की एसएएम शाखा की शिकायत पर इस महीने की 18 तारीख को मामला दर्ज होने के बाद तलाश अभियान चलाया गया। एजेंसी ने फर्म और उसके साझेदारों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता खतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जीडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमरीका और ईरान के बीच पहले ही 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम की

0: कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। राजस्थान, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब बात खेलों की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर ही सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट UG पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सम्पन्न। तमिलनाडु के पेरिया पालियम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत, सिर्फ विविध भारती पर।

0: फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म रॉकस्टार से, आवाजें हर्षदीप कौर और साथियों की थी। गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत ए आर रहमान का।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म शहजादा से, आवाज़ें अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की थी। गीत के बोल आईपी सिंह और श्लोक लाल के, संगीत प्रीतम का।

जाने माने अभिनेता टॉम ऑल्टर का 29 सितंबर को निधन हो गया। उन पर केंद्रित विशेष आज के फनकार कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवेरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। ये बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान।
1: सदमा न पहुंचे कोई मेरे जिस्म-ए-ज़ार पर, आहिस्ता फूल डालना मेरे मजार पर। हर चंद खाक में था मगर ता फलक गया, धोखा है आसमान का मेरे गुबार पर।
0: ये थे थॉमस बीच ऑल्टर, जिनका जन्म 22 जून 1950 को मसूरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। दरअसल टॉम ऑल्टर एक अमेरिकन क्रिश्चियन मिशनरीज के बेटे थे। बचपन का उनका समय हिमालयन हिल स्टेशन लैंडोर में बीता था। वैसे आपको बता दें, टॉम ऑल्टर ने हाल ही में एक लेख में बताया था कि उनके जो परदादा थे वो ओहायो यूनाइटेड स्टेट्स से सन 1916 के जमाने में भारत में आए थे और उसके बाद भारत में उनका परिवार अलग अलग जगहों पर रहा। टॉम ऑल्टर के पिता इलाहाबाद के इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाया करते थे। इसके बाद वो सहारनपुर की एक सेमिनरी में पढ़ाने लगे थे। बाद में उनके माता पिता ने राजपुर में एक आश्रम शुरू किया था जिसका नाम था मसीही ध्यान केंद्र। फिर जबलपुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर राजपुर में रहने के बाद देहरादून और फिर वो मसूरी में जाकर बस गए।
2: मैं जल्दी से एक बात बताता हूँ, अमर प्रेम दिल्ली में लगी थी, हम मसूरी में थे उस टाइम। तो मसूरी में फिल्में बहुत बाद में लगती हैं, पहले देहरादून आती है फिर धीरे धीरे मसूरी आ जाती है। तो हम लोग रात की बस पकड़ के मसूरी से रात का सफर करके दिल्ली गए थे ये फिल्म देखने के लिए, अमर प्रेम, मुझको याद है। 3 बजे का शो देख कर फिर थोड़ा सा खाना वाना खा के वापस आकर हमने ये 6 बजे के शो देखा, फिर रात वाली बस से हम वापस आए मसूरी। तो ये अमर प्रेम से इतना हमारा अमर प्रेम था उस टाइम। तो इस फिल्म के भी गाने मतलब एक के बाद एक सब सुपर हिट थे और बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन एक जो गाना है जो जिसका इस फिल्मी दुनिया से एक खास ताल्लुक है वो मैं पेश करना चाहूँगा। उस गाने का नाम है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।

हुआ तो उनकी हिंदी बहुत ही अच्छी थी। मसूरी के वुडस्टॉक स्कूल में अपनी शुरुआती पढ़ाई करने के बाद टॉम अमेरिका चले गए थे। तब उनकी उम्र 18 साल की थी। एक साल तक वो येल यूनिवर्सिटी में रहे। 19 बरस की उम्र में टॉम टीचर बनकर आ गए जगाधरी हरियाणा में। ये वो दिन थे जब वो टीचर तो थे ही एक स्कूल में जिसका नाम सेंट थॉमस स्कूल था, लेकिन चूंकि स्पोर्ट्स से उनका गहरा लगाव था तो वो वहां बच्चों को क्रिकेट भी सिखाया करते थे। 2.5 बरस तक टॉम ऑल्टर जगाधरी में रहे। इसके बाद वो उसी स्कूल में चले गए जहां उनकी खुद पढ़ाई लिखाई हुई थी, यानी मसूरी का वुडस्टॉक स्कूल। यहां भी उन्होंने थोड़े दिन पढ़ाया। जब वो जगाधरी में रह रहे थे तब हिंदी फिल्मों से उनका ज्यादा लगाव हुआ। इसी दौरान उन्होंने आराधना फिल्म देखी।

0: ये फिल्म उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने एक हफ्ते में 3 बार इसे देख डाला। यहां से टॉम ऑल्टर की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। उन्होंने सोचा कि वो फिल्मों में काम करेंगे। इसके तकरीबन 2 बरस के बाद टॉम ऑल्टर फिल्म्स एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी पुणे में एक्टिंग का डिप्लोमा लेने के लिए आ गए। सन 1972 से 1974 तक वो पुणे में रहे।
1: मैंने सन 72 में फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था और एक्चुअली इस जगत का सफर तब शुरू हुआ था। सन 72 से 2 साल वहाँ रहा मैं पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में। बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा लिया, बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर 74 में 74 में मैं यहाँ आया था। मेरे ख्याल से मई का महीना था और मैं अपनी मोटरसाइकिल पर पुणे से बम्बई आया था। मुझको याद है, अच्छी तरह याद है। जेब में 44 रुपये थे और एक पुरानी मोटरसाइकिल थी मेरे पास। उसके अलावा सपनों के अलावा कुछ नहीं था मेरे पास। ये सपनों का सफर तब शुरू हुआ था। काफी तकलीफें भी झेलनी पड़ी, आज भी झेल रहा हूँ। बट एक संघर्ष जो है ना, ये बहुत जरूरी है हर आदमी के जीवन में। संघर्ष आज भी जारी है और एक मजेदार संघर्ष है।
0: टॉम ऑल्टर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो राजेश खन्ना बनना चाहते थे, वो एक रोमांटिक हीरो बनना चाहते थे। हालांकि फिल्मों में उनका जो करियर रहा वो बतौर हीरो नहीं बल्कि बतौर चरित्र अभिनेता रहा। सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी।
1: राज कपूर की एक बहुत ही मशहूर फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली। मैंने मंदाकिनी के ब्रदर का रोल किया था। एक पहाड़ी आदमी है, वो भी हिंदुस्तानी रोल। और ये जुनून से बहुत पहले, लेकिन जिस तरह मैंने कहा लोग जल्दी भूल जाते हैं, खैर कोई बात नहीं, कोई शिकायत नहीं है। वो रोल मुझे बहुत बहुत पसंद आया क्योंकि वो अपनी जान की कुर्बानी देता है अपनी बहन के लिए। तो वो एक रोल था। फिर एक फिल्म आई थी शतरंज के खिलाड़ी मिस्टर सत्यजीत रे की। उसमें मैंने अंग्रेज का रोल किया था ज़रूर, लेकिन उस अंग्रेज को शेर व शायरी में दिलचस्पी थी और हिंदुस्तान से बेहद प्यार था और उर्दू में बात करता था वो। तो वो बहुत एक दिलचस्प किरदार था शतरंज के खिलाड़ी में।
2: We are most grateful to His Majesty for granting us this interview.
3: इस मुलाकात के लिए हम सुल्तान आलम के बेहद शुक्रगुजार हैं।
2: We also appreciate his gesture in disarming his soldiers.
3: हम फौजियों की उनकी अच्छी कदर करते हैं।
2: We regard it, we hope rightly, as evidence of his concern to negotiate a peaceful conclusion for the treaty.
3: हम समझते हैं आलीजा ऐहदनामे के बारे में दोस्ताना बातचीत के लिए तैयार है।
2: I would like, if I may, to add a personal request to His Majesty that he please sign this treaty and formalize his abdication.
3: हमारी दरख्वास्त है सुल्तान आलम ऐहदनामे पर दस्तखत फरमा के अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबदार हो जाएं।
2: His Majesty shall have a maximum of 3 days for deliberation.
3: इस मसले पर फरमाने के लिए सुल्तान आलम को ज्यादा से ज्यादा 3 दिन की मोहलत मिलेगी।
2: After which the company will assume the administration of Oud.
3: बाद इस मुद्दत के कंपनी बहादुर अवध का सारा इंतजाम अपने हाथ में ले लेगी।
2: I hope the king has understood what I've said.
3: हमने जो कुछ कहा है उम्मीद है सुल्तान आलम समझ गए होंगे।
2: What is this? You please tell His Majesty that I have no use for that.
3: ये रेजिडेंट साहब की किसी काम की नहीं है।
4: आप हमारी दस्तार तो ले सकते हैं रेजिडेंट साहब, दस्तखत नहीं ले सकते।
1: अब जहाँ तक हिंदी या हिंदुस्तानी का सवाल है, मैं तो मेरी पैदाइश तो मसूरी के है, यूपी की है। जिस जमाने में मेरी पैदाइश हुई यूपी के उस इलाके में लोग या तो हिंदुस्तानी में बात करते थे या तो उर्दू में। हिंदी तो उस इलाके में बाद में आई। मैं वेस्टर्न यूपी की बात कर रहा हूँ, मसूरी देहरादून की बात कर रहा हूँ। बचपन में मेरे वालिद साहब उर्दू लिखते भी थे, पढ़ते भी थे, बात भी करते थे उर्दू में। तो शुरू से मेरे अंदर एक बहुत ही एक दिलचस्पी रही, एक शौक रहा उर्दू सीखने का। हिंदी तो हमने स्कूल में सीखी थी। तो मैं जब पुणे आया था सन 72 में फिल्म इंस्टीट्यूट में, मैंने कहा मैं इस शौक को अब मतलब उसको एक अंजाम भी दूँ। मेरे एक दोस्त वहाँ बने मोहम्मद रफीक, तो उन्होंने मुझको उर्दू सिखाना शुरू किया पुणे में 2 साल तक। फिर मैं यहाँ आया तो मेरी खुशनसीबी ये रही कि उस्ताद जालिब साहब से मेरी एक मुलाकात हुई। बहुत जाने माने उस्ताद थे उर्दू के, उनका इंतकाल हुआ कुछ 6-7 साल पहले। तो 5 या 6 साल तक मुसलसल मैं जालिब साहब के साथ उर्दू सीखता रहा। और जालिब साहब के बारे में इस वक्त कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत ही जज्बाती मामला है, लेकिन अगर कुछ हद तक मुझको उर्दू आती है वो सिर्फ जालिब साहब की वजह से। लेकिन उर्दू का शौक मेरे अंदर इसलिए आया क्योंकि मेरे फादर बोलते थे, लिखते थे, पढ़ते थे उर्दू।
5: अच्छा।
1: और اس جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ یو پی کے اس علاقے میں جہاں میری پرورش ہوئی اس زمانے میں اردو یا ہندوستانی زبانیں چلتی تھی، ہندی بعد میں آئی۔ شکیل بداونی کا ایک شعر ہے، اگر وہ بہت ہی جانے مانے شاعر تھے، انہوں نے لکھا کہ شکیل دل ہوں میں ہوں محبتوں کا رازداں، مجھے فخر ہے میری شاعری میری زندگی سے جدا نہیں۔ یعنی کہ شاعری اور زندگی اگر جدا یعنی کہ الگ الگ رہیں تو تب آدمی شاعری نہیں کر پاتا، شاید شاعری لکھ پاتا ہو لیکن کر نہیں پاتا ہو۔
0: آج کے اس کاریکرم میں آپ ٹام آلٹر کی جو ریکارڈنگ سن رہی ہیں وہ بہت برس پہلے وویدھ بھارتی کے ایک انٹرویو کے دوران کہی گئی باتیں ہیں۔
1: اس طرح سے ایک اور فلم کا نام لوں گا میں ضرور، اس کا نام تھا چمیلی میم صاحب، جس میں میرا ہیرو کا رول تھا، وہ بھی بہت ہی سمپتھیٹک رومانٹک بہادر انسان تھا وہ، تو مجھے وہ رول شاید سب سے زیادہ پسند ہے۔ وہ فلم بھی پسند ہے لیکن وہ رول مجھے بہت پسند ہے، اور وہ جو ہیرو کا رول تھا وہ مجھ کو اس فلم کے علاوہ بس اور ایک فلم میں ملا تھا ہیرو کا رول، جو کبھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی فلم۔ تو میری جو تمنا تھی نا، جو ایک مسوری سے لے کر جو میں تمنا لے کر یہاں بمبئی آیا تھا، اس فلم میں جا کر وہ تمنا جو ہے وہ پوری۔
0: فلم کرانتی میں انہوں نے ایک برٹش آفیسر کا رول کیا تھا۔

0: सन 1993 में उन्होंने फिल्म सरदार में काम किया।
1: आज इस मीटिंग में जो फैसले लिए जाएंगे उनका असर सिर्फ इस मुल्क ही पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर होगा। इसलिए मौजूदा हालात को देखते हुए और आप सब लीडरों के साथ बात करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हुकूमत जल्द से जल्द सौंप दी जानी चाहिए आपके हाथ में। हमें पूरी उम्मीद है कि आपके इन फैसलों से पैदा होने वाले हालात को संभालने के लिए आप सब तैयार होंगे।
0: टॉम ऑल्टर न केवल फिल्मों में सक्रिय थे बल्कि बरसों बरस तक वो टेलीविजन के लिए भी काम करते रहे।
2: प्रोफेशनली मैं सबसे पहले सिनेमा से जुड़ गया था क्योंकि उस टाइम में टेलीविजन था लेकिन बस उसकी ज्यादा अहमियत नहीं थी। तो और हम आए थे बंबई में फिल्मों में काम करने के लिए, टेलीविजन में काम करने के लिए नहीं, या नहीं तो थिएटर में काम करने के लिए। तो सिनेमा से मैं जुड़ गया था और एक सपना था हीरो बनने का फिल्मों में, और कुछ एक छोटी सी हद तक वो सपना साकार भी हुआ। लेकिन आज भी, हालांकि टीवी में बहुत काम करता हूं मैं और टीवी से मुझे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन आज भी मैं अपने आप को फिल्म आर्टिस्ट मानता हूं। प्रेफरेंस में रखना बहुत मुश्किल है। प्रोफेशनल तौर पे तो टीवी को मैं ज़्यादा पसंद इसलिए करता हूँ कि टीवी में एक मुसलसल आपको काम मिलता रहता है, और अगर आपकी सीरियल हिट हो गई तो जिस तरह जुनून हिट हो गया है, 5 या 5.5 साल तक लगातार आप एक ही किरदार को निभा रहे हैं तो बहुत उसमें मज़ा आता है। तो प्रोफेशनली आजकल मैं टीवी को ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन जो एक मज़ा आता है काम करने में, या जब आपकी पिक्चर हिट होके रिलीज हो जाती है या रिलीज होके हिट हो जाती है, वो जो मज़ा है जब आपकी पिक्चर हिट हो जाती है और लोग, मतलब बेशुमार लोग थिएटर हॉल में जाते हैं आपकी फिल्म देखने के लिए, तो वो जो मज़ा है वो सिर्फ सिनेमा में है, वो टीवी में नहीं है। तो उसका एक अलग मज़ा है फिल्मों का। और जहाँ तक थिएटर का सवाल है, वो एक नॉन प्रोफेशनल तौर पर मुझे थिएटर बेहद पसंद है क्योंकि थिएटर में आराम है, फुर्सत है, कोई जल्दी नहीं है, और एक चीज़ को आप बाकायदा 3-4 महीने तक रिहर्सल कर सकते हैं, उसके बाद आप पेश कर सकते हैं, ऑडियंस भी सामने बैठे हैं। तो हर चीज़ का एक अलग पहलू है, हर एक अलग मज़ा है। तो प्रोफेशनली जिस तरह मैंने कहा, शायद प्रेफरेंस मैं टीवी को दूँ, और जहाँ तक मज़े का सवाल है तो शायद प्रेफरेंस को मैं सिनेमा को दूँ, और जहाँ तक पर्सनल एक तसल्ली या सेटिस्फेक्शन का सवाल है तब मैं शायद प्रेफरेंस दूँ थिएटर को।
3: तो आपने उसे अपने ही साए के घटने बढ़ने से परेशान कर दिया।
4: और क्या करते हुजूर, क्या है कि वहां से निकलने का रास्ता में और कोई मिल नहीं रहा था, और वो बेचारा इतना परेशान था कि उसके दिमाग में इतनी सी भी बात नहीं आ रही थी कि हम उस लाइट को कभी आगे खिसका रहे थे तो कभी पीछे, जिससे उसका साया कभी बढ़ रहा था तो कभी घट रहा था।
5: आपने कभी अपने साये को घटते बढ़ते देखा है?
4: मैडम, हम दूसरों के सायों को नापते रहते हैं, अपनी फिक्र कहां। मिस्टर धनाज, आप इतने खामोश क्यों हो गए?
6: नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस
7: आप ये सोच रहे होंगे कि इस केशव कलसी से पहले आपकी मुलाकात क्यों नहीं हुई, क्योंकि अगर होती तो वो जमीन का टुकड़ा आपके हाथों से नहीं जाता।
8: मेरे दोस्त मुझे प्यार से के कहते हैं, काम का कलसी। आप भी मुझे के कहें तो बहुत मुसर्रत हो।
2: और शुरू में मैं ये कहूं कि मेरी मदर को ये रोल बिल्कुल पसंद नहीं आया कि वो अपने बेटे को ऐसे रूप में देखना पसंद नहीं करती थी। तो उससे मुझको एक अंदाज़ा मिला कि हाँ, शायद ऐसा हो सकता है कि कैरेक्टर या किरदार जो है वो अपनी निजी ज़िंदगी के ऊपर हावी हो जाए। लेकिन अंत में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये ज़रूर है कि आदमी जब कोई किरदार निभाता है तो वो अपनी निजी ज़िंदगी से कुछ ऐसे पहलू, कुछ ऐसी बातें निकाल कर उस किरदार के अंदर डालने की कोशिश करता है। तो ये ज़रूर है कि केशव कलसी का जो किरदार है मेरे अंदर

0: जब मैंने वो शुरू किया था कैरेक्टर, तो मेरे अंदर कुछ थोड़ा सा गुस्सा था और एक जिद थी मेरे अंदर दिखाने की कि मैं इस तरह का रोल कर सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा गुस्सा था, थोड़ी सी जिद थी, तो मैंने अपनी जिंदगी से ये चीज़ें निकाल कर उस कैरेक्टर के अंदर डाल दी। लेकिन मेरे ख्याल से वो जो कैरेक्टर है वो मेरी निजी जिंदगी के ऊपर हावी नहीं हुआ, बल्कि 5.5 साल तक इस कैरेक्टर को निभाते निभाते बीच में कभी कभार ये मुश्किल हुआ कि उस कैरेक्टर के अंदर वही गुस्सा वही जिद उसको बरकरार रखना मुश्किल हो गया था मेरे लिए 5.5 साल तक। तो बीच में एक बार मैंने उसको थोड़ा सा ढीला भी छोड़ दिया था जानबूझकर, और मुझको लगा कि कोई नोट करेगा नहीं। लेकिन 2-3 लोग मेरे पास आए थे पब्लिक में से, और उनने बाकायदा मुझको गालियां दी कि ये तुमने क्या किया, अचानक तुमने नरम क्यों बना दिया। तब वापस मुझे अपने आप को बिल्कुल कस के रखना पड़ा। तो बहुत ही दिलचस्प रहा यह सफर केशव कलसी के साथ, और मेरे ख्याल से इस सफर से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझको।
1: खेलों से टॉम ऑल्टर का बड़ा गहरा लगाव रहा। जैसे कि हमने आपको बताया, टॉम ऑल्टर जब जगाधरी के एक स्कूल में पढ़ाया करते थे, उन दिनों में बच्चों को वो क्रिकेट भी सिखाया करते थे। अगर आप YouTube पर खोजें तो आपको महान सचिन तेंदुलकर का एक बहुत पुराना, लगभग शुरुआती दौर का इंटरव्यू नजर आएगा। वो टॉम ऑल्टर ने ही लिया था। खेलों से अपने जुड़ाव के बारे में टॉम ने हमें बताया था।
0: एक्चुअली खिलाड़ी बनना चाह रहा था, खासकर क्रिकेट का, तो मैं उतना अच्छा खिलाड़ी नहीं था, तो मैं बन नहीं पाया। स्पोर्ट्स में मतलब शुरू से बचपन से स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, यूं कहना चाहिए कि एक जुनून सवार रहा मेरे ऊपर स्पोर्ट, आज भी है। स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट्स की दुनिया से, खिलाड़ियों से बहुत गहरा है मेरा एक रिश्ता रहा है शुरू से बचपन से। क्रिकेट के साथ धीरे धीरे जो है मेरा रिश्ता और गहरा होता जा रहा है, और लेकिन स्कूल में ऐसा कोई खेल, ऐसा कोई स्पोर्ट था ही नहीं जिसमें मैंने हिस्सा नहीं लिया, स्कूल और कॉलेज में दोनों। और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मैंने बास्केटबॉल में भी हिस्सा लिया, तो बास्केटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, क्रॉस कंट्री, इन सारे जो खेल हैं इन सब में मैंने हिस्सा लिया। आजकल मैं खेलता हूँ क्रिकेट, और थोड़ी बहुत रनिंग भी करता हूँ। मैं लिखता भी हूँ स्पोर्ट्स के बारे में, पेपर्स में, मैगजीन्स में स्पोर्ट्स के, मैंने कई प्रोग्राम्स भी बनाए हैं टीवी के लिए, और कमेंट्री भी मैंने दी है। तो मालूम नहीं, स्पोर्ट्स से मुझे एक हमेशा एक प्रेरणा मिलती रहती है कि स्पोर्ट्स जो है ये हमको बहुत कुछ सिखा सकता है जिंदगी के बारे में। जिंदगी का संघर्ष जो है किस तरह लड़ना चाहिए, वो आदमी स्पोर्ट्स से सीख सकता है। तो इसलिए स्पोर्ट्स ने शुरू से लेके आज तक मुझको बहुत सहारा दिया है, सुकून भी दिया है, राहत भी दी है, और मुझको सिखाया बहुत कुछ है स्पोर्ट्स ने।
1: टॉम ऑल्टर का थिएटर से गहरा लगाव रहा है, इस बारे में उन्होंने बताया।
0: थिएटर में इसलिए मैं करता हूँ, ज्यादातर पैसे के लिए तो मैं करता नहीं हूँ थिएटर। पूरा जो सिलसिला है थिएटर का, एक आपने पहले दोस्तों के साथ प्ले को आपने जांचा, फिर आपने पढ़ा, फिर उसके बाद आपने रिहर्सलें की, रिहर्सलों के अंदर इतनी तब्दीलियां आ जाती हैं हर चीज़ में, फिर आखिरकार एक परफॉर्मेंस भी होता है वो भी ऑडियंस के सामने। तो एक लंबा एक सफ़र है ये थिएटर का, तो मुझे वो सफ़र बेहद पसंद है। वो सफ़र आपको थिएटर इसमें, सिनेमा और टीवी में नहीं मिलता है, तो वो मुझे बहुत पसंद है। लोगों के साथ दोस्ती कायम करना, नए रिश्ते पैदा हो जाते हैं रिहर्सल करते करते परफॉर्मेंसेस का, और हर परफॉर्मेंस में कुछ नए रंग आ जाते हैं, तो ये मज़ा है थिएटर का कि आपको फुर्सत मिलती है, एक टाइम मिलता है आपको, एक अरसा पूरा आपको मिल जाता है। मैंने मेरे ख्याल से 15-20 प्लेस किए हैं बॉम्बे में आके। एक प्ले है जो मैं अपने दो बहुत ही अजीज दोस्तों के साथ किया करता था, नसीरुद्दीन शाह और बेंजामिन गिलानी के साथ, उस प्ले का नाम है वेटिंग फॉर गॉडो। इंग्लिश का प्ले है, बहुत ही कठिन प्ले है समझने के लिए भी और समझाने के लिए भी, लेकिन हम लोगों ने कम से कम 50-60 उसके शोज किए हैं, और वो प्ले मुझको बेहद पसंद है, वेटिंग फॉर गॉडो।
1: संगीत में अपनी दिलचस्पी के बारे में टॉम ऑल्टर ने विविध भारती को अपने एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी।
0: क्लासिकल संगीत से कोई खास मेरा रिश्ता नहीं रहा है, ना तो हिंदुस्तानी क्लासिकल ना तो इंग्लिश क्लासिकल, लेकिन हाँ पुराने, अब तो खैर पुराने हैं, उस टाइम तो नए थे हमारे लिए, पुराने फिल्मी गीत मुझे बेहद पसंद है। और जहाँ तक इंग्लिश म्यूजिक का संबंध है, तो बीटल्स के गाने, फिर ईगल्स के गाने, उससे पहले एक और फोक ग्रुप था पीटर पॉल एंड मैरी, उनके गाने, ये मुझे आज तक मतलब बेहद पसंद है। इंडियन म्यूजिक में हाल ही में कुछ पिछले मैं देख रहा हूँ 1-2 साल से, कहीं से मालूम नहीं कहाँ से मेरे अंदर एक क्लासिकल म्यूजिक में एक दिलचस्पी पैदा हुई है जो पहले बिल्कुल नहीं थी मेरे अंदर। अभी हाल ही में मैं भोपाल में था, तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का एक

0: पहली बार सुनी थी जब नया नया था वो, तो मैंने प्रोड्यूसर से कहा कि ये जो आदमी है कुमार शानू, ये बहुत सक्सेसफुल रहेगा। उस टाइम में कुमार शानू की आवाज़ मुझको बहुत अच्छी लगी। बाकी जो नए नए हैं वो अब क्या बताऊं मैं, कुछ उनकी आवाज़ को पहचानने में मुझको तकलीफ, शायद इसलिए कि मैं पुराने ज़माने में खोया रहता हूँ। ये गीत मुझे इतना पसंद है कि नाम लेते वक्त भी मज़ा आता है। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं।
1: कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हीरोइन बलों के बाद
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं विको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। अच्छा लगता है जब कोई अपना पुकारता है नाम लेकर, अपना ही नाम खास हो जाता है हमारे लिए। इंतजार करना पड़ता है उस मासूम लम्हे के लिए, पर वो लम्हा जब आता है जिंदगी में तो बीतता नहीं, वो ठहर जाता है, वो लम्हा बर्फ हो जाता है हमेशा के लिए। उस लम्हे की खुशबू महका देती है जिंदगी को। अभी तक हम उस लम्हे में जी रहे हैं जब पहली बार तुमने हमें नाम लेकर पुकारा था।

चंद लम्हों में सारी जिंदगी जी लेते हैं हम, जैसे खिड़की से बारिश देखते हैं जब, और बूंदों को महसूस करते हैं अपने चेहरे पर, जैसे समंदर के किनारे बैठकर जब बतियाते हैं लहरों से, जैसे किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर होता है एहसास कि कितना विराट है ये संसार और कितने छोटे हैं हम इन चंद लम्हों में, जैसे हम जी लेते हैं सारा जीवन चंद लम्हों वाला ये जीवन।

तस्वीरों के रंग धुंधले पड़ जाते हैं, पर लम्हों के रंग कायम रहते हैं। काली सफेद तस्वीरों के रंग भले भूरे या धूसर पड़ जाएं, पर ये तस्वीरें जब आती हैं सामने तो छपाक से हम डुबकी लगा लेते हैं बीते हुए वक्त में। पुराने एल्बमों से इसीलिए तो प्यार होता है हम सबको। किसी फुर्सत के दिन जब खोलते हैं पुराना कोई एल्बम, तो बीते वक्त के गलियारों में खूब टहलना होता है। यूं आती है बीते हुए दिनों की याद, जैसे अभी कल ही तो जिया था हमने ये सब।

जो काम पुरानी तस्वीरें करती हैं वही काम करते हैं पुरानी गाने। कोई एक गीत, कोई एक सुर, कोई एक पंक्ति हमें ले जाती है कई बरस पीछे। अंताक्षरी वाला वो दिन, वो तुमसे चुपके से नजरें मिलाना, वो फिल्मी गानों के बहाने सबके सामने अपनी बातें कहना। कितने शरारती थे ना हम हमेशा से, अब देखो ना ये बजा पुराना गाना और ये चल पड़े हम बीते वक्त की यादों के रास्ते पर।

लोग जमा करते हैं जाने कौन कौन सी महंगी चीजें, जेवर। लोग परदेश जाते हैं खूबसूरत जगहों पर। दुनिया चीजों के प्यार में मुब्तिला हो जाती है। जिंदगी वो है जिसमें चीजें नहीं जज्बात जमा किए जाएं। जिंदगी वो है जिसमें हो प्यार की रोशनी। जिंदगी वो है जिसमें दो दिल एक ही लय और ताल पर धड़कते हों, जिसमें हम एक दूसरे के लिए जीते हों।

तुम्हारे देख भर लेने से दुनिया खूबसूरत लगने लगती है हमें। जरा सोचो, एक निगाह, एक मुस्कान भी बदल सकती है किसी की दुनिया। प्यार हो जाना दुनिया की सबसे खूबसूरत घटना है, और प्यार में जीना सबसे खूबसूरत बना देता है जिंदगी को। आओ हम इस संगदिल दुनिया में प्यार के नर्म फूल खिलाएं।

0: छाया गीत में आज थे कुछ कम चर्चित संगीतकारों के नगमे, फिल्मों के नाम।
1: पुकारो मुझे नाम लेकर, पुकारो मुझे तुमसे अपनी खबर मिल।
0: फिल्म भूल न जाना, संगीतकार दान सिंह।
2: एक चमेली के मंडवे तले, एक चमेली के मंडवे तले।
0: फिल्म चा चा चा, संगीतकार इकबाल कुरैशी।
3: फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम।
0: फिल्म ये दिल किसको दूं, संगीतकार इकबाल कुरैशी।

0: फिल्म माई लव, संगीतकार दान सिंह। फिल्म ठाकुर जरनैल सिंह, संगीतकार गणेश।
1: तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार।
0: फिल्म सखी रॉबिन, संगीतकार रॉबिन बनर्जी। आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार।

एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इसमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट, INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नीट UG पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देशभर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सीफूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री C. जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति JD Vance कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर मालिक गलीवफ और विदेश मंत्री अब्बास

तानाशाही कर रहे हैं। यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मूज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। लाल रिम सियामी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।